पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह 1 केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में, छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज,
बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप

सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए करें योग रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपनी स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वस्थ
किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है। इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की, तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने
एक गली या फिर दो गली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पियेंगे और लहसुन की एक या दो गली को हम कूच के

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही, और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

89.6 FM, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन पर हो चुकी है 9:04 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना फेवरेट वाला प्रोग्राम यानी कि इस मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा। मैं हूं आपकी आरजू नति और आप सुन रहे हैं मेरे साथ आपके मॉर्निंग के इस खूबसूरत से प्रोग्राम का इतना खूबसूरत सा गाना जीना जीना। और आपने इस गाने को इन्जॉय करने के बाद भैया आप लोगों का स्वागत कर लेते हैं आपके अपने वाले शो अपने वाले प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सब की सुबह हो चुकी होगी। जो अभी तक नहीं उठे हैं वो भी उठने की ख्यालात लेकर आ चुके होंगे और बच्चे जिनकी भैया चल रही है आजकल वेकेशन से आने की छुट्टी वो कर रहे होंगे अपना एंजॉय या फिर 7 बजे वाली आदत आज भी है क्योंकि भैया मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं और मेहमानों की आदत ये है कि उनके बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं तो वो 7 बजे उठ भी जाते हैं। उनको वेकेशंस में भी रात के सुबह के 8 बजे तक नींद नहीं आती। फिलहाल आप बताइए कि आपको नींद आ रही है अभी भी या फिर आप अभी भी बिस्तर के आगोश में सो रहे हैं। वेल, जो लोग छत पर सो रहे हैं उनकी नींद तो कब की खुल चुकी होगी। तो भैया आप लोग उठ जाइए और एक कप गर्मा गर्म चाय या फिर कहें तो भाई ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए, पहले गर्म फिर ठंडा, क्योंकि आपके डाइजेशन को करना है आपको एक्टिव। और जुड़ जाइए मेरे साथ आपके अपने वाले प्रोग्राम में और आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को। मिलते हैं इस गाने के उस पार।

करके आज की बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी जो मुझे आपके साथ करनी है शेयर। लेकिन उससे पहले आप लगाइए अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस और मुझे बताइए कि भैया आप उठ चुके हैं, क्योंकि आपका उठना बहुत है ज़रूरी, इससे पहले कि पीछे से मम्मी के ताने आना शुरू हो जाए। फिलहाल के लिए इन्जॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत और रोमांटिक गाना सुबह सुबह आप एंजॉय कर रहे हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गुना में। आप सभी का एक बार वापस से वेलकम करते हैं, वापस से स्वागत करते हैं आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल वाले प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो गानास 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और वक्त हो चला है हमारे शो को स्टार्ट करने का। वैसे तो हमने आपको इंट्रो दे ही दिया था, लेकिन जो असल शुरुआत है वो अब होने वाली है, क्योंकि अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो बातें, वो किस्से, वो कहानियां, वो इंफॉर्मेशन जिनका आपको रहता है हर सुबह इंतजार। तो भाई आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं बहुत सारी कहानियां और साथ ही बहुत सारी बातें, बहुत सारे इतिहास से जुड़ी बातें, और स्पेशली आज के दिन किस किस का जन्म हुआ है और क्या कुछ हुआ है। फिलहाल आइए बता देते हैं, पहले बात कर लेते हैं इतिहास में क्या कुछ हुआ था। तो हम आपको बता दें भाई, ब्रिटिश सरकार ने 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। हालांकि उन्होंने इस उपाधि को बहुत जल्द वापस भी कर दिया था। वापस करने की वजह ये थी कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके बाद उन्होंने ये उपाधि का त्याग कर दिया था, और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा नवाजा गया रवीन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी वो उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने वापस कर दी, और उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार से उन्हें ऐसी कोई भी उपाधि नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे रवीन्द्रनाथ टैगोर लेखक जितने खूबसूरत हैं, जितना प्यारा वो लिखते हैं, उतने ही भारत को भी प्यार करते थे। और मैं आपको बता दें भाई, रवीन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ भारत में जाने माने नहीं है, वो साउथ कोरिया के देशों में भी उनका बोलबाला है, और आज भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इवन उनके कई स्टैचूज साउथ कोरिया और जापान के म्यूजियम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भैया वहाँ पर भी लोग उनकी पोएम्स को सुनकर, उनकी कविताओं को सुनकर अपने लिए लड़ा करते थे। उस वक्त जब यूथ बिल्कुल तैयार नहीं था, लोग उन्हें दबा रहे थे, साउथ कोरिया आज की तरह नहीं था, उस वक्त सिर्फ एक पोयम ही थी जो उन्हें सहारा दे रही थी, और वो पोयम किसी और ने नहीं, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। इसी वजह से आज भी साउथ कोरिया रवीन्द्रनाथ टैगोर को दिल से मानता है और उनकी इज्जत करता है। इसी के साथ हम आपको बता दें भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और पुनर्वास प्रशासन की स्थापना 1943 में की थी। ब्रिटिश राज में भारत की आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में भारत के बंटवारे का ऐलान किया था, जो कि आज हमको बहुत ख़राब भी लगता है भाई। एंड हमने अपना एक अच्छा खासा टुकड़ा 1947 के दिन इन्हीं महाशय की ऐलान करने की वजह से खो दिया था। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं, और हम आपको बता दें कि भारत सहायक क्लब का 1994 में नया नाम भारत सहायता मंच किया गया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि आज के दिन किस किस का जन्म हुआ था, यानी कि आज के दिन भारत में कौन कौन आया था। तो भाई हम आपको बता दें कि आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में आज ही के दिन हुआ था। मैसूर के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और राजनीयक के एम का जन्म आज ही के दिन 1895 में हुआ था। भारतीय राजनीतिक एम करुणानिधि का जन्म 1924 में हुआ था। इसी के साथ हम आपको बता दें कि भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही रूमा पाल का जन्म भी आज ही के दिन 1941 में हुआ था। फिल्म संगीतकार इल्ला राज का जन्म 1943 में हुआ था। वहीं पर भारतीय अभिनेत्री सारिका ठाकुर का जन्म आज ही के दिन 1962 में हुआ था। तो भाई ये वो लोग हैं जिनका जन्म आज के दिन यानी कि 3 जून को हुआ था, और मैं गारंटी से कह देती हूँ कोई ना कोई हमारा लिसनर ऐसा ज़रूर होगा जिनका जन्म भी 3 जून को हुआ है, या फिर आपके घर में ऐसा कोई मेंबर ज़रूर होगा। तो भाई जो इस गर्मी में जून में आए हैं, ज़रा उनके बारे में हमको भी बताइए, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था जो जून में आते हैं उनका दिमाग कभी शांत नहीं होता, बहुत क्रिएटिव होता है। अब आप ये बताइए ये बात सच है क्या? फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को जिसको हमने बीच में ही रोक दिया था। कबीर सिंह के फिल्म से आप सुन रहे हैं तुझे कितना चाहने लगे हम, और इसके बाद हम चलेंगे आपके अपने चैट बॉक्स में देखने के लिए कि आपने क्या पैगामात, क्या मैसेजेस भेज दिए हैं। सुनते रहिए रेडियो ज्ञान असली, अपनी आरजी उन्नति के साथ मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

और पल पल पल हां जी आपका स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गुना में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो कैनल 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आते ही चलेंगे आपके चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को पढ़ने, तो आइए देख लेते हैं कि आज के शो में सबसे पहला मैसेज किनका आया है।

तो भाई सबसे पहले मैसेज आया है अमित सिंह का, जो हमें सुनते हैं होलापुर गोंडा से, जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं हम आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। कमल नैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू। रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने थैंक यू बोला है सर को, क्योंकि भाई कल उनका शायद था बर्थडे और सर ने प्ले किया था उनके लिए गाना। थैंक यू सो मच रेखा जी, और अगर मैं होती तो कल विश करती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लेट से विश कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे। कमल नैन जी ने हमें भेजे बहुत सारे हार्ट, थैंक यू सो मच। उसके बाद जॉन हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं बढ़िया गाना, थैंक यू सो मच। सोनू निगम का बहुत कम सुना जाने वाला गाना पर उतना ही मस्त है, ओके बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सुनते हैं हथियागढ़ से, जो कि गोंडा में ही ऑफकोर्स, और है लिखा है गुड मॉर्निंग टू यू। मैं सुबह 4 बजे से जग कर घर के कामों में व्यस्त हूँ। ओ माय गॉड, आप सुबह 4 बजे उठ जा, मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ ना, ब्रश करती हूँ, चाय पीती हूँ, काम करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, क्योंकि नींद मुझे बहुत आती है। इसके बाद लिखा है गुड आफ्टरनून साहब, गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग हो रही है, एंड थैंक यू सो मच करेक्ट करने के लिए, गुड मॉर्निंग। सविता जी ने लिखा है शुभ प्रभात आपको भी, आपका भी स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड सविता जी ने पूछा है जो ठंडी में जन्म लेते हैं वो क्यों शांत नहीं रहती हैं, बताइए जरा। अरे अरे अरे भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो बस इतना कहा था कि गर्मी में लोग इसलिए गर्म रहते हैं क्योंकि गर्मी इतना तपता हुआ मौसम है, और इस मौसम में जो जन्म लेता है उसके दिमाग में भी उतनी ही आग होती है। बल्कि इसका लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं था, ये सब इलॉजिकल बातें हम आपसे करते रहते हैं कभी कभी। एंड ओके, हमारे साथ एक और लिसनर जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड सविता जी, बाय द वे आपका जवाब ये है कि क्यूरियोसिटी कोई मंथ नहीं देखती, आपकी जो कला है, आपके अंदर का जो टैलेंट है, वो कभी कोई मंथ नहीं देखता है। स्पेशली लड़कियां जो इतना कुछ सोचती हैं, उनके दिमाग में इतना कुछ चलता है, वो तो बिल्कुल भी कोई मंथ नहीं देखता। इसीलिए अपने दिमाग का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और लड़कियों का दिमाग कभी शांत नहीं रहता है, वो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। और ये बात तो भाई साइंस खुद भी कहती है कि लड़कियां ज़्यादा सोचती हैं, ज़्यादा बोलती हैं, और उनके दिमाग में लड़कों के मुताबिक शब्द भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है कि लड़के ओवरथिंक नहीं करते, वो भी हैं, बस वो बताते नहीं हैं। खैर, आइए चलते हैं भाई और बात करते हैं एक कुछ ऐसी बातों की जो आई थिंक हर किसी को पता होनी चाहिए, वो बातें जो हमें कभी सिखाई नहीं जाती हैं स्कूल के अंदर। हमें लगता है कि स्कूल में जाने के बाद हम हर एक चीज सीखते हैं, और जो कि हम सीखते भी हैं, बट कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स हैं जो आपको तब समझ में आते हैं जब आपकी एक उम्र हो जाती है, जब आप बहुत जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं, जिंदगी के सारे एग्जाम्स आप दे चुके होते हैं, तब जाकर कहीं आपको समझ में आता है भैया कि ये भी तो सीखना था, और हमारे स्कूल में ये नहीं सिखाया जा रहा है। तो आइए उन्हें हम बताते हैं कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें जो चाहे लड़का हो या हो लड़की, दोनों को पता होनी काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन वही बातें बताएंगे हम आपको इस गाने के उस पर, तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए, और आप बताइए मोहब्बत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आत्मसम्मान, चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।

हो गई। इससे पहले कि आपको आशिकी आ जाए, हम आपको बता देते हैं वो बातें जिसका हमने किया है आपसे प्रॉमिस। आप सुन रहे हैं आपका अपना कोंडा शहर की धड़कन रेडियो 89.6 FM। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं वापस से आपके अपने वाले मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोंडा में। और हमने आपसे कहा था भाई कि हम आपको लेकर जाएंगे उन चैप्टर्स की तरफ, उन बातों की तरफ जो आपको सीखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे पहले कि भैया हो जाए देरी और आपको हो जाए कि अरे मोदी भैया अब तो पछतावा हो रहा है, उम्र गुजरती जा रही है, लेकिन ये बात तो हम कभी सीखे ही नहीं रहे, ये टोन नहीं आना चाहिए। इसीलिए आइए हम आपको बता देते हैं कि भाई क्या कुछ है हमारे पास आपके लिए और क्या कुछ मैं लेकर आई हूँ ढूंढ ढांड के आपके लिए।

तो भाई आपके लिए सबसे पहली सलाह जो है वो मेरी नहीं, एक्सपर्ट्स की है ऑफ कोर्स। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नॉट एवरी फ्रेंड इज रियल। अब ये बात तो आप भी जानते होंगे कि हर एक दोस्त आपका सच्चा दोस्त नहीं होता है। तो भाई अगर आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो आपका भरोसा टूटेगा जरूर, ये बात आप लिख के ले लीजिए। फिर आप कहते फिरेंगे कि भरोसे का तो नाम ही धोखा होता है, ऐसा नहीं करना है। भरोसे का नाम धोखा नहीं होता है, अंधा भरोसे का नाम धोखा जरूर हो सकता है। जब आप अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हैं किसी को, तो भैया अगर सोचिए अगर उसने अपना पासा पलटा और वो आपका दुश्मन निकला तो कितने सारे सीक्रेट्स आपके चले जाएंगे। इसीलिए जब भी हम किसी की दोस्तों की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं हमारे पास 15 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं। और मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि 15 दोस्त 20 दोस्त तो हो कैसे सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके क्लासमेट्स हों, हो सकते हैं इनसे आपकी बातचीत अच्छी चलती हो, लेकिन दोस्त तो भैया एक ही होता है, वो जो आपकी हर मुसीबत में आपके साथ होता है, हर वक्त आपके साथ होता है, जिसे ख्याल होता है, जो आपकी सक्सेस पे तालियां बजा रहा होता है, जो आपके फेलियर पर आपके साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, वो होता है आपका एक दोस्त। बाकी जो घड़ी घड़ी कॉल करते हैं और कभी कभी काम आते हैं, एक होते हैं जो हमेशा काम आते हैं लेकिन कभी कभी कॉल करते हैं। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है मोहतरमा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर एक दोस्त आपका असल दोस्त नहीं होता, कुछ के साथ सिर्फ आप क्वालिटी वक्त गुजारते हो, लेकिन जो एक्चुअल में आपका एक रियल फ्रेंड होता है वो कोई एक ही होता है। और आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप क्वालिटी के ऊपर जाएंगे, क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्योंकि आगे जाकर क्वांटिटी आपको अकेला कर देगी लेकिन जो क्वालिटी है वो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाने आते हैं और वो कभी आपके लिए वफादार नहीं होते, बस एक्टिंग करते हैं कि वो वफादार हैं, और इसके बाद वो आपके जब रियल इंटेंशंस जान जाते हैं और आपकी हर एक बात जान जाते हैं तो उसका फायदा जरूर उठाते हैं। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई इंसान आए तो सबसे पहले उनकी इंटेंशंस को रीड करना सीखिए, उनकी एनर्जीज को रीड करना सीखिए कि कोई अचानक से क्यों इतना मेहरबान हो रहा है जिसे आप अभी तक जानते भी नहीं हैं। और अगर आप भी उनमें से हैं जो तुरंत ही झटकों में यकीन कर लेते हैं तो लास्ट में यही कहेंगे कि भैया हमारे साथ तो धोखा हो गया, जैसे आजकल मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ, क्योंकि ये गलतियां मैं अपनी लाइफ में पहले ही कर चुकी हूँ। फिलहाल तो ये तो थी एक्सपर्ट्स की सलाह। और दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं भैया कि एंगर विदाउट कंट्रोल इज वीकनेस, यानी कि लाइफ में गुस्सा बहुत जगह आने वाला है, बहुत सारे लोगों पर आने वाला है, चाहे आप ऑफिस में हों, चाहे आप कलीग्स के साथ बैठे हों, चाहे आप बॉस हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप एक टीचर हों या फिर आप एक होम मेकर हो, आपकी लाइफ के किसी भी पड़ाव पर होंगे, गुस्सा आपको हर जगह आने वाला है, लेकिन अगर उस गुस्से पर आपका काबू नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप गुस्से के कंट्रोल में है और आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। यानी कि किसी और की बात से अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो आप उनके कंट्रोल में होते हैं, ना कि अपने कंट्रोल में। तो जब भी आपको गुस्सा आए कोशिश कीजिए कि उसको कंट्रोल करना सीखिए, आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या एक्शन करने, क्या नहीं एक्शन करने हैं, इसको तर्क वितर्क जरूर कीजिए, इन पर काबू कीजिए, नहीं तो आपका गुस्सा आपको काबू करेगा और आपको आपके गुस्से को कोई और काबू करेगा, जिसका फ़ायदा ये होता है, उनका तो फ़ायदा होता है, आपका नुकसान होता है कि आप फिर अलग अलग पनिशमेंट्स को झेलते घूमते हैं अलग अलग रिग्रेट्स के साथ। तीसरा है भाई आपके लिए कि हेल्थ इज greatest asset। अभी इस बात को लेकर के यूं तो हम बचपन से सुनते आए कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ना जाने कितनी बार हमने नारे भी लगाए होंगे कि भैया स्वास्थ्य ही धन है, पर सुनता कौन है, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भैया एक्चुअल मनी कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की भागदौड़ में, आज की बदलती दुनिया में, बदलते जमाने में हमने अपने पैसों के कमाने की स्पीड तो बढ़ा रखी है, पैसों के कमाने की भूख भी बढ़ा रखी है, लेकिन जो एक्चुअल भूख होनी चाहिए खाने पीने की, सोने की, मेंटल हेल्थ की, मेंटल पीस की, उसे हम घटाते चले जा रहे हैं। और जब हमसे आकर कोई कहता है भाई कि हमारे दिमाग की शांति हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो हमें लगता है कि ये तो बकवास है, ये सब बातें ही बकवास है। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, बट ऐसा होता ही नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुझे दुखी ही होना है तो मैं अपनी फरारी में बैठ के ना दुखी हो लूँ। अब भैया ये भूल जाते हैं कि दिमाग की शांति उस फरारी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार जब आपसे कोई ऐसे सवाल करे तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो हेल्थ है, आपके मेंटल पीस से लेकर आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो ज़्यादा बड़ा धन है, वो ज़्यादा बड़ा एसेट है आपके लिए, जिसको आपको संभालना है। तो इसलिए टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, अच्छे से खाना खाना है, क्योंकि आपका शरीर एक मंदिर की तरह है,
इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर अंदर से आपकी खूबसूरती फेड होती है तो उसका असर आपको सामने भी नजर आता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं टाइम की। लोगों को तोहफा देना है तो आप उन्हें अपना वक्त तोहफे में दे दीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं भाई टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी जो कि कभी वापस नहीं मिलने वाली। अगर आप किसी पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस दुनिया की सबसे महंगी चीज किसी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन अगर आप खुद के लिए भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने लिए क्वालिटी टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज आपका वक्त है और इसीलिए रिलेशंस में अक्सर वक्त की डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है और वक्त ना मिलने पर ही रिलेशंस टूट भी जाते हैं। तो अगली बार जब आपसे कोई सवाल करे तो उनसे जरूर बताइएगा कि अगर आपको तोहफा ही देना है तो अपना वक्त हमें तोहफे में जरूर दें, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी। खामोशी को हम लोग अक्सर धुएं में उड़ा देते हैं ये कह करके कि भैया खामोश रहना मतलब कमजोरी का एक निशानी है, बट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो लोग खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, वो उनका पावर होता है, वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, क्योंकि वो चुप रहकर हर एक चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, वो हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और बेहतर तरीके से जवाब देते हैं। हर एक इंसल्ट पर यानी कि हर एक बेइज्जती पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। यूं तो हमारे अंदर का जो कीड़ा होता है वो यही कहता रहता है कि इसने मेरे को ऐसा बोला, इसका तो मुंह तोड़ूंगा। होता है हमारे अंदर ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे ईगो हमें सेटिस्फाई करवाने के लिए हमेशा कहती है कि जवाब देना सीखो। बट हर एक इंसल्ट का जवाब नहीं देना होता है, हर एक बेइज्जती का जवाब नहीं देना होता है। कभी कभी आपकी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है और सबसे पावरफुल जवाब होती है। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े सीईओज होते हैं या अच्छे बिजनेसमैन होते हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज से अगर आप मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, उनका सबसे बड़ा हथियार जो होगा वो होगा साइलेंस, यानी कि खामोश रहना, चुप रहना, हर एक सिचुएशंस में फुदक के सामने ना आ जाना, कंट्रोल करके बैठना अपने गुस्से को, अपने शब्दों को। इसी के साथ हम आपको बता दें हाउ टू वॉक अवे, यानी कि दूर कैसे जाना होता है। हमें लगता है कि भाई हर एक चीज को पकड़े रहना, थामे रहना ही एक्चुअल वफादारी की निशानी होती है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। फिर चाहे वो मोहतरमा हो, चाहे वो जनाब हो, आपको एक बाउंड्री पता होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपको कब किस चीज़ से कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, भले ही वो आपका पसंदीदा इंसान हो, पसंदीदा रिश्ता हो, पसंदीदा जगह हो, शहर हो। एक वक्त के बाद जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ज़्यादा बात बनाए तो आप वहाँ से कैसे मूव ऑन करें, कैसे वहाँ से जाएं। भले ही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है वहाँ से निकलने में, उस रिश्ते को छोड़ने में, उस जगह को छोड़ने में, क्योंकि आपने अपने इमोशंस, अपने जज्बात, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर आप हमेशा वहीं पर रहते हैं, उसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं तो आपके लिए ख़राब होता है। तो भाई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बात हर एक इंसान को सीखनी चाहिए कि किसी जगह से कैसे आगे बढ़े। अब आप बताइए कि एक्सपर्ट्स की ये बातें आप अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं या नहीं, और आप इनमें से कितनी सारी बातों को अपनी लाइफ में ऑलवेज फॉलो कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई काइंडनेस शुड नेवर मीन वीकनेस, यानी कि जो लोग दया दिखाते हैं, जो लोग आपको बहुत काइंड लगते हैं, जिनकी आवाज मीठी है, जिनके साथ आप बदतमीजी भी करते हैं और इसके बाद भी वो आपको रूडली बात नहीं करते, वो आपके साथ, आपके आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ, जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा दयावान हैं, काइंड हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं, तो भाई ये उनकी कमज़ोरी नहीं है, उनका फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि आजकल की दुनिया में जो लोग बदतमीजी करते हैं या फिर पलट के बहुत रूडली किसी से बात कर लेते हैं, उन्हें हम कूल की कैटेगरी में डाल देते हैं और कहते हैं भैया ये तो फ्लैक्स कर रहे हैं, ये तो बहुत कूल है, ये तो इनका तो ह्यूमर बहुत डार्क है, बट ये नहीं होता है। एक्चुअल पॉइंट ये है कि ह्यूमन का नेचर ही काइंड नेचर होना चाहिए और काइंडनेस सबसे बड़ी पावर होती है। तो इन्हें कमजोरी समझना और इसका फायदा उठाना बंद कीजिए, प्लस इनको सपोर्ट कीजिए, इनको अप्रिशिएट कीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन कुछ नहीं है, भाई एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है,
कि हमने आज PhD कर ली है, हमने MA कर लिया है, हमने ये कर लिया है, ना ये बिल्कुल नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है उन बातों से, उन नॉलेज से जो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, जो आपके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है, जो आपको बताता है सही गलत क्या है, जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, जो आपको बोलने पर मजबूर करता है, जो आपके पूरे कैरेक्टर को बदल कर रख देता है, वो होता है एजुकेशन। और एजुकेशन इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एजुकेशन है, तो आप इस दुनिया में हर एक चीज, हर एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो सोचने वाली बात है। यूं तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन को हवा में उड़ा रखे हैं, जिन्हें लगता है कि सिर्फ डिग्री लेना एक एजुकेशन है। बट भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनके अंदर एजुकेशन और ह्यूमैनिटी दोनों कई गुना ज्यादा है। फिलहाल आप बताइए इनमें से आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है और आप किस बात से ज्यादा एग्री करते हैं। और हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि वक्त हो गया है एक प्यारे से ब्रेक का, एक प्यारे से छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक का। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

ख्याल आता है ना कि काश काश काश ये अलार्म यहीं रुक जाए, काश ये पल यहीं ठहर जाए, काश कल कभी ना आए, काश आलस खत्म करने की कोई गोली हो जाए। और इसमें हम डिमांड लगाते हैं, भैया एक कप चाय मिल जाए, और कई बार चाय से भी आलस नहीं जाता है। समझ सकते हैं हम आपकी बात। फिलहाल के लिए जापान वाले हैं काफ़ी ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। वहाँ पर आलस को समझा जाता है बीमारी। अगर आप आलसी हैं इसका मतलब आप बीमार हैं। तो उन्होंने इसको ठीक करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, तो आइए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और अब बात कर लेते हैं उन ट्रिक्स की, उन टिप्स की जो फॉलो करते हैं जापनीज़ टू किल देयर लेजीनेस। क्योंकि आलस आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है जो उसे आलसी बना रहा होता है। लेकिन इस आलस को ठीक कैसे करना है ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये जापनीज़ ट्रिक बताते हैं आपको हम आपकी मॉर्निंग वाले शो में।

अब ये तो आप भी मानते होंगे कि जो जापानीज हैं वो बहुत आगे हैं और हमसे बहुत ज़्यादा फ्रेश भी रहते हैं। उनका काम हर वक्त होता है, वो हर वक्त काम करते हैं। यूँ तो जापान में नैप टाइम भी माना जाता है, यानी कि सोना बहुत अच्छा माना जाता है। सोने का मतलब आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन अगर आपका काम करने का मन नहीं करता, काम करने की इच्छा नहीं करती है, तब आपको आलसी नहीं बीमारी कहा जाता है कि आप बीमार हैं, आप पेशेंट हैं, आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। क्योंकि आलस को वहाँ पर एक हॉबी की तरह नहीं, एक आदत की तरह नहीं, वो देखते हैं उसे एक बीमारी की तरह और उसको ठीक करना ले लेते हैं अपने कंधों पर उनकी जिम्मेदारी। तो भाई कुछ ट्रिक्स हैं जो जापानीज फॉलो कर रहे हैं और आई थिंक आपको भी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले वो बात करते हैं काइजेन की। काइजेन का मतलब है द 1 मिनट रूल। आप जो भी कर रहे हैं उसे 1 मिनट के अंदर करें, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। हम जब भी कुछ करने बैठते हैं पूरा का पूरा ब्लेंडर लेके बैठ जाते हैं कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। दिमाग हमारा सोच सोच के पहले ही थक जाता है कि अरे मोरी मैया इतना कैसे हो जाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और हमको लगता है यार हम आलसी हैं। ना, हम आलसी नहीं है, हमारे दिमाग को कुछ ज़्यादा ही काम मिल चुका है और दिमाग सोच रहा है इतना तो नहीं हो पाएगा, इतना तो दिन में टाइम भी नहीं होता है जितना तुमने मुझे काम बता दिया है, और इसी वजह से हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो भैया जापानीज कहते हैं कि जो भी काम आप करना चाहते हैं और आपका ब्रेन आपको रीसेट नहीं कर रहा है, आपके ब्रेन को आपको रीसेट करना है क्योंकि आपका ब्रेन आपको रेजिस्ट कर रहा है, तो हर एक चीज़ 1 मिनट के लिए कीजिए। पहला, या तो अगर आपको वर्कआउट करना है और आपका करने का मन नहीं है तो सबसे पहले 1 पुशअप लगाइए, यानी कि 1 पुशअप लगा लीजिए। लिखने का मन है तो सिर्फ 1 सेंटेंस लिख लीजिए, और ये सब कीजिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। दिमाग को लगना चाहिए कि आप 1 मिनट का खेल खेलने वाले हैं और 1 मिनट के अंदर ही सारा काम हो जाएगा। दिमाग को लगेगा भाई वाह क्या बात है, 60 सेकंड के अंदर पूरा काम खत्म, मतलब मजे ही मजे हैं। और इसी मजे में जैसे ही आप ये काम करते हो आपका दिमाग आपको बताता है कि भाई इसमें तो मज़ा आ रहा है, और आप आगे अपने दिमाग को काम करने पर लगा सकते हो। तो जैसे ही आप काम की स्टार्टिंग कर देते हो आपका दिमाग पहले से ही तैयार होता है, बट स्टार्टिंग में जब आप कुछ नहीं करते हो, बहुत सारी चीज़ें उसे एक साथ पकड़ा देते हो, सारा सिलेबस पकड़ा देते हो, तब वो बेचारा हो जाता है थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है रेजिस्ट करने के लायक। फिलहाल हम आपको बता दें हार्वर्ड के रिसर्च ने भी शो किया है ये 1 मिनट की जो रूल होता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर ही किया जाने वाला काम, ये आपके दिमाग को ठीक करता है, रीसेट करता है, आलस को ख़त्म करता है और आपके कामों को और भी ज़्यादा बेहतर करता है, प्लस आपके फोकस को बढ़ाता है। तो ये आदत आपके लिए हो सकती है काफ़ी अच्छी अगर आप भी हैं आलसी और आपको भी आलस बहुत ज़्यादा आता है, सुबह उठ के काम करने का मन नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो ट्राई 1 मिनट रूल, जिसके अंदर आपको कोई एक काम करना है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। पढ़ाई भी करनी है तो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन वो भी 1 मिनट के अंदर, और उसके बाद आपका दिमाग खुद धीरे धीरे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आता है इकीगाई, अ रीजन टू वेक अप। जब हमारे पास कोई वजह होती है उठने की तो हम कितनी जल्दी उठते हैं ना, जब हमें पता होता है कि यार नानी के घर जाना है और उस रात पूरी रात नींद नहीं आती है, हमें पता होता है कि अरे भैया परसों नैनीताल की ट्रिप है, हमें फिर भी नींद नहीं आती है, हमें पता होता है कि सुबह हमारा एग्जाम है तो भी हमारी नींद कहीं ना कहीं गायब होने लग जाती है, क्योंकि हमें डर रहता है कि भाई अगर हम सो गए तो सुबह सुबह का एग्जाम छूट जाएगा, और यही एक वजह है जो हमें जगाती है। जब आप रात में सोते हैं और आपके पास मॉर्निंग

में उठने के लिए कोई वजह नहीं होती, कुछ करने की कोई वजह नहीं होती है, तो आपका दिमाग कहता है कि हटाओ या छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, कोई काम तो है ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा, एक घंटा और लेते हैं। और एक घंटा कर करके आपका 4-5 घंटे निकल जाते हैं और आपको बाद में रिग्रेट होता है कि यार आज तो कुछ प्रोडक्टिव हमने किया ही नहीं। तो वहीं पर जापानीज का इकिगाई कहता है कि हमेशा आपके पास एक रीजन होना चाहिए उठने के लिए, कुछ करने के लिए, आपके लाइफ का पर्पस होना चाहिए कि हर सुबह आपको क्यों उठना है, हर सुबह उठकर आपको क्यों कुछ करना है। आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप अच्छा खाना खा रहे हो तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो जो एक पर्पस है आपकी लाइफ का वो क्या है। जब आप इस पर्पस को ढूंढ लेते हैं, जब आप उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं जिसकी तलाश आपके दिमाग को होती है, उसके बाद आपके अंदर का आलस भी छूम अंतर हो जाता है। फिलहाल आइए चलते हैं अगली पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हारा हाइचबू, यानी कि स्टॉप एट 80%। हमारे भारत में खाने को लेकर के बड़ी सारी बातें हैं और यूं तो हम खाने के शौकीन भी बहुत होते हैं, लेकिन हम जब भी अपनी मम्मियों से कहते हैं मम्मी बस एक रोटी, मम्मी देती है हमको 2 रोटी और हम खा जाते हैं 3 रोटी, फिर कहते हैं यार आज तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया, नाक तक भर के खा लिया। इसको कहते हैं ओवर ईटिंग। फिर ना आपका वेट कम होता है, ना आपका पढ़ाई में ध्यान लगता है, ना किसी और काम में। तो भाई जापनीज कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाना, यानी कि ओवर ईटिंग करना, हद से ज़्यादा खाना खाना जितना आपके वो भूख नहीं है, यह आपके फोकस को ख़त्म करता है, आपके मूड को किल करता है और आपके काम करने की इच्छा को भी मार देता है। इसीलिए जितने भी जापनीज हैं या फिर जितने भी एक सीनियर जापनीज हैं जो उम्र में बड़े हैं, वो ये बताते हैं कि जब भी आप खाना खाने बैठो हमेशा 80% ही खाना खाओ, 100% खाने की ज़रूरत नहीं है और 110 तो बिल्कुल भी नहीं, हमेशा 80% खाना खाइए, पेट को राहत दीजिए, जगह दीजिए ताकि आपके पेट में जो खाना है वो अच्छे से प्रोसेस हो चुके, आपको आलस ना आए, आपका मूड खराब ना हो, आपको थकान ना लगे और आप अपने काम में वापस जा सको। क्योंकि जितना आराम से आपका खाना पचेगा उतनी ही अच्छी आपकी एनर्जी होगी, आपकी मेंटल क्लियरिटी होगी और यही है जो आपके लेजीनेस को भी ख़त्म करता है। अब आप बताइए आप ऐसा करते हैं क्या, 80% पे खाना खाना छोड़ते हैं? फिलहाल अगर आप 1 मिनट रूल को फॉलो कर चुके हैं तो अब आपके लिए आती है एक एंकर्ड फोकस। उसमें बात होती है कि 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक और ये रिचुअल होता है। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक सांस लेनी है, एक ग्लास पानी पीना है या किसी आवाज़ को सुनना है, यानी कि म्यूजिक को सुनना है। 25 मिनट आपको काम करना है, 5 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर 25 मिनट काम करना है, फिर 5 मिनट का रेस्ट लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लगातार 3 घंटे पढ़ने वाला हूं और आप 3 घंटे पढ़ने बैठ गए तो आप 30 मिनट भी नहीं पढ़ पाएंगे। वहीं आप अपने दिमाग को जब ये बताते हैं कि सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक है, तो आपका दिमाग कहता है कि अरे वाह ये तो हम कर सकते हैं। 25 मिनट क्योंकि सुनने में भी छोटा लगता है और होता भी है, इसीलिए जब भी आप 25 मिनट का टारगेट रखते हैं आपका दिमाग उसे पूरा करता है। जब उसे मिलता है रिवॉर्ड में वो 5 मिनट का फ्री ब्रेक जिसमें आप अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनते हैं या फिर पानी पीते हैं, टहलते हैं, वॉक करते हैं, जो भी आप करते हैं, तो आपके दिमाग में रिलीज होते हैं डोपामिन और आप आगे से फिर से अपने काम को उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही फोकस के साथ करते हैं। बट लगातार अगर आप करते हैं तो ये नहीं हो पाता है। इसके बाद आता है क्लियर स्पेस। जी हाँ, यूं तो कहा जाता है कि जितने भी होशियार लोग हैं, इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग हैं, उनके रूम बड़े गंदे रहते हैं क्योंकि वो हर एक चीज़ को बिखरा के रखते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि टॉपर्स के रूम भैया ऐसे ही फैले पड़े होते हैं, उनको मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। बट एक्चुअल सीन ये नहीं है, एक्चुअल सीन ये होता है कि आप जहाँ भी काम करने बैठें उस टेबल को, उस जगह को, उस रूम को सबसे पहले क्लीन करें, क्योंकि आपका एक मैसी रूम जो होता है वो आपके दिमाग पर एक अनचाहा लोड, एक अनचाही आवाज डालता है जिसमें आपको लगता है कि पहले कमरा साफ करना है कि पहले काम करना है, कमरा साफ, काम, कमरा साफ, काम, और इसी आप सोच में पड़े रहते हैं। फिर ना आपका पूरा ध्यान काम में लगता है ना सफाई में। तो जहां भी आप कुछ काम करने बैठे, जिस भी टेबल पर आप बैठे, सबसे पहले उसे ऑर्गेनाइज करें, उसको ठीक से करें, उसका जो मेस है उसे खत्म करें और उसके बाद ही अपने काम की शुरुआत करें। और उससे भी बड़ी बात कि लेजीनेस एक चीज़ के पीछे छुपा होता है, वो होता है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि अगर हम कुछ करेंगे तो हार जाएंगे। तो भाई जापानीज कहते हैं कि जो भी काम आप शुरू करते हो उसे ख़त्म भी किया करो, उसको बीच में छोड़ने वाली आदत बहुत ख़राब होती है।
अगर आप चीज़ों को यूं ही छोड़ देते हैं तो आपको परेशानी होती है। और चीज़ें ख़राब हो भी गई हैं, अगर कोई चीज़ आपसे नहीं अच्छी बनी है तो ये उसकी खूबसूरती है। हर एक टूटी हुई चीज़, हर एक बेकार चीज़ बेकार नहीं होती है, बस उसका नज़रिया बदलना होता है और आप उस टूटी हुई चीज़ में भी खूबसूरती ढूंढ सकते हैं। तो भाई ये वो चीज़ें हैं, ये वो ट्रिक्स है जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ का लेजीनेस हटा सकते हैं, आप अपनी डेली लाइफ का लेजीनेस हटा सकते हैं, आप अपने आलस को मार सकते हैं। और आलस को मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी नींद को भी पूरा करेंगे। नींद को लेकर के भारत में बहुत स्लीप शेमिंग की जाती है, यानी कि अगर कोई 8 बजे तक सो रहा है तो उसे न जाने किन किन नामों से बुला लेते हैं। अगर आप अच्छे से सोते हैं तो ये आपकी खूबी है, ना कि आपकी कोई बुराई, आपकी गंदी आदत नहीं है, इट्स नॉट योर बैड हैबिट, ये आपकी एक अच्छी आदत है, इसे आप फॉलो ज़रूर करते रहें। फिलहाल आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भाई, क्या आपका भी सपना है अपने जिंदगी में कुछ अच्छा करने का? हीरोइन बनने का, एक्ट्रेस बनने का, मॉडलिंग करने का, या फिर कुछ और भी करने का? लेकिन सोसाइटी आपको जज करती है आपके कलर से और आपको कहती है कि ब्रो, यू आर नॉट हीरोइन टाइप। या फिर आपके घर वाले जब भी आप मॉडलिंग करने जाते हो तो आपसे कह देते हैं, पड़ोस वाले, रिलेटिव्स की, हाँ हाँ ठीक है, बहुत ऐश्वर्य राय हो, पता है मुझे। इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक मोहतरमा है जो फिलहाल के लिए जामावंती का रोल अदा कर रही है एक बिग स्क्रीन पर, कृष्णाज वाइफ, यानी कि श्री कृष्णा की पत्नी का रोल उन्हें मिला है। तानों में उनसे कहा जाता था, तुम बहुत काली हो, तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी, क्योंकि काले लोग हीरोइन नहीं बनते हैं, सिर्फ गोरे चिट्टे बनते हैं। जो सफ़ेद होते हैं, जो वाइट कलर होता है, वो होता है परफेक्ट फॉर हीरोइंस, परफेक्ट फॉर एक्ट्रेस। तुम्हारा कलर बहुत काला है और तुम बहुत बदसूरत दिखती हो, तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी। ये लाइन्स उनसे हमेशा बचपन से कही जाती थी, लेकिन उन्होंने इस लाइन को कभी अपने दिल पर नहीं लिया। फिलहाल आप सभी का एक बार वापस स्वागत करते हैं आपके अपने शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर बात कर रहे हैं आज हम उनकी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार ताने सुने होंगे, लेकिन आज कॉन्फिडेंस उनका उन्हें यहां तक लेकर आया है। नाम बताते हैं उनका।

अब भाई जो भी लड़कियां या जो भी लड़के मॉडलिंग की तरफ गए होंगे या मॉडल्स बनने का ख्वाब रखते होंगे, उन्हें पता है कि मॉडलिंग का रास्ता कितना ज्यादा टफ होता है। हर एक चीज पर आपकी नजर होती है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स और बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरा होता है। भाई हम आपको बता दें, जब भी कोई इंसान मॉडलिंग के लिए उतरता है तो सिर्फ उसकी बॉडी ही परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसकी बहुत सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है कि आपके सोचने की क्षमता क्या है, आप किस तरह से बिहेव करते हो। हर एक चीज़ पर जज आपकी नज़र रखता है, आपकी वॉक, आपका टोन, आपका हाइट, आपका वेट, हर एक चीज़ आपकी नोटिस की जाती है। वहीं पर जब किसी का रंग दबा होता है या फिर कहें तो काला होता है, तो भाई भारतीयों के अंदर से पता नहीं कहां से एक टिप्पणी निकलती है, रंग बहुत काला है। और ये सुनकर न जाने कितनी ही लड़के कितनी ही लड़कियों का दिल टूट जाता है, न जाने वो कितने ही फेस मास्क, कितने उपटर्न्स, कितने न जाने हल्दी, बेसन, चावल, दुनिया भर की चीजों का वो अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर डालते कि कैसे भी तो गोरा हो जाए, क्योंकि गोरा होने की जो भूख है वो भारतीयों से ज्यादा इस दुनिया में कहीं नहीं है। और हम आपको बता दें भाई, भारतीयों का जो ये खूबसूरत सा ब्लैक ब्राउन गोल्डन रंग है, जिसको हम व्हिटिश कलर कहते हैं, यानी कि गेहुआ रंग है, सांवला कलर है, इसके दीवाने फॉरेनर्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि विदेशी लोग काफी ज्यादा भारतीय के रंगों के दीवाने हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भारतीयों के यही रंग उनके फीचर्स को उभार कर सामने रखते हैं, उनके काले लंबे बाल, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उनकी आईब्रोज जो ब्लैक होती हैं, बड़ी होती हैं, उनके लिप्स जो पूरी तरह से फिल होते हैं, उनका कलर बहुत खूबसूरत होता है। और इसके लिए वो न जाने कितनी महंगी महंगी सर्जरी करवा लेते हैं, कितने महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो सेम कलर वो पा सकें जो इंडियंस के पास है। और इंडियंस के अंदर होता है कि भाई गोरा चिट्टा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो अपने बच्चियों को न जाने क्या कुछ खिलाते रहते हैं। और यहीं पर एक मोहतरमा जिनका नाम है जयंती, जी हाँ, हम आपको बता दें इनका नाम कुछ और नहीं है, इनका नाम है जयंती हजारिका। और ये बचपन से ब्लैक थी, यानी कि इनका जो टोन था वो डार्क शेड था। काले रंग की होने की वजह से बचपन से हजारों ताने झेले हैं कि भाई तुम बहुत काली हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे शादी कौन करेगा, तुम तो बहुत बदसूरत दिखती हो, तुम तो किसी का घर भी नहीं बसा पाओगी, लड़कियों को ऐसे पसंद नहीं किया जाता है, ना जाने कितने ही जजमेंट वाले सेंटेंस इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सुने हैं। इसके बाद भी इन्होंने अपनी मॉडलिंग का सपना नहीं छोड़ा, आज भी ये मॉडलिंग करती हैं। और हम आपको बता दें भाई, इनके ब्यूटी को मॉडल्स ने समझा और इनसे लोग कहते थे कि जो बहुत काले होते हैं या जो बहुत डार्क होते हैं वो कभी फिल्म स्टार नहीं बन पाते। उनकी बात को पीछे छोड़ते हुए ये उनकी बात के लिए एक तमाचा है कि अब वो जामवंती यानी कि कृष्णा की वाइफ का रोल अदा करने जा रही हैं एक बिग स्क्रीन पर, यानी कि एक बड़े पर्दे पर। और ये उनके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, काफ़ी बड़ी या फिर कहें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक हम बचपन से ताने सुनते आते होते हैं ना, और जब भी हम अपना ऑडिशन देने जाते हैं और हर कोई हमारे रंग के बेसिस पे हमारे टैलेंट को नहीं देखता तो बुरा बहुत लगता है। बट मेहनत और ईमानदारी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो उन चीज़ों को भी सच कर देती हैं जो लगता है कि कभी सच नहीं हो सकती। इसीलिए भैया जयंती हजारिका ने ये बात साबित कर दी है कि फॉल्ट कुछ भी हो, आपका रंग दबा हो सकता है, डार्क हो सकता है कि आपको लोग पसंद ना करते हो सकता है चीज़ें आपकी बिल्कुल सही ना हो, चीज़ें बचपन से आपकी सही ना हो, बट एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है कि जब आपकी मेहनत आपको फल देती है, रंग लेकर आती है, और जब वो रंग चमकता है तब दूसरा रंग नहीं दिखता। फिलहाल ये तो थी कहानी जयंती हजारिका की, जो अब प्ले करने जा रही हैं श्री कृष्णा की वाइफ का रोल एक बड़ी स्क्रीन पर, जो उनके लिए है काफ़ी बड़ा मौका। अब आप बताइए, आपको भी कभी ऐसे ताने मिलते हैं? ऑफकोर्स मिलते होंगे, क्योंकि हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ का ताना ज़रूर मिलता है, कभी कुकिंग का, कभी फैशन का, कभी काम का, कभी रंग का, कभी वेट का। बट इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आपको अपने सपनों की उड़ान भरनी है, अपने सपनों को पंख लगाना है। सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोडा अपनी आरजे ज्योति के साथ। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

हाँ जी, दिल पे अपना कम लेना, लोगों के ताने, लोगों की बातें, छड्डो जी क्या ही रखा है इन सब में। फिलहाल के लिए आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आरजीमती के साथ, और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। आपका मॉर्निंग वाला प्रोग्राम चल रहा है आपकी मॉर्निंग की स्पेशल वाली होस्ट के साथ, और आप इंजॉय कर रहे थे खूबसूरत से गाने को। ओके जानू यार रहमान का म्यूजिक था। फिलहाल वैसे तो घड़ी इशारा कर रही है कि वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बता जा रही हूँ जो शायद आज से आप अपनी हैबिट में डालने वाले हो, जो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट करने वाला है। पहला, रीड यानी कि पढ़ना। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए जनाब, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना, सिलेबस की बुक्स नहीं, नॉवल्स को, बुक्स को, जो भी कहीं से भी मिले, हर बार रटने के लिए नहीं, समझने के लिए, और बस पढ़िए। दिन में 10 पेज पढ़िए, प्लस उसे मिक्स कीजिए अपनी इमेजिनेशंस के साथ, नोट्स बनाइए फिर पढ़िए, और ये आपको सोचने का मौका देता है। किताबें पूरा आसमान एक बार और खोल देती हैं जो हम जानते भी नहीं। दूसरा आता है, अगर आप अपने दिमाग को शार्प करना चाहते हैं तो भाई किसी ना किसी चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख लीजिए। गिटार हो सकता है, पियानो हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका दिमाग ज़्यादा फोकस करता है, आपकी उंगलियाँ कोऑर्डिनेट करती हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग फोकस करने लगता है, और जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो आप खुद को स्मार्ट ही पाते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना मेमोरी और फोकस को बढ़ाता है, आपके दोनों ब्रेन के साइट को एक्टिव करता है, ट्रेंड करता है, डिसिप्लिन सिखाता है, रेपिटेशन को, जो हम कहते हैं दोबारा बार बार करना खराब होता है, इंस्ट्रूमेंट आपको ये भी सिखाता है और आपको एक अच्छा इंसान भी बनाता है। प्ले चेस, आप चेस खेल सकते हैं, चेस खेलना सीख सकते हैं, ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं वो अक्सर चेस बोर्ड पर बैठकर बनाते हैं, क्योंकि चेस आपको सोचने पर मजबूर करता है, वो रास्ते भी जो आपने शायद कभी ना सोचे होंगे। चेस आपको हमेशा 3 कदम आगे ले जाने पर मजबूर करता है, आपके अंदर सब्र बनाता है, और किस तरह से आप अपनी हर एक मूव को एनालाइज कर सकते हो ये आप चेस से सीखते हो। एक नई भाषा को सीखना, अब आपको बता दें आपका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की क्रेविंग में रहता है, और अगर आप उसकी इस क्रेविंग को पूरा नहीं करते हैं तो आप हमेशा आलसी रहते हैं। तो भैया अपने दिमाग की इस क्रेविंग को ठीक कीजिए, रिवायर्स लगाइए अपने दिमाग के, और सीखिए, पढ़िए, और नई भाषा बोलने की कोशिश कीजिए। नई भाषा बोलने से आपके दिमाग की मेमोरी तेज होती है और आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, प्लस आप जिस भी देश में जाना चाहते हैं वहाँ पे घूमने के मौके भी खुल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी तो आप मुझे स्पेनिश बोल के दिखाना। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें, स्टार्ट राइटिंग, आप लिखना शुरू कर सकते हैं, और ये वो स्किल्स हैं जो जिनकी इम्पोर्टेंस आज की दुनिया में, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। अगर आप जॉब की तलाश भी कर रहे हैं तो लिखना, पढ़ना, एनालाइज करना, प्लानिंग करना, आपके दिमाग के दोनों साइड का इस्तेमाल करना, मूव्स बनाना, और बहुत सारी भाषाओं को बोलना, ये आजकल की डिमांड में है। आपको जॉब्स की ऑफर बहुत इजीली मिल सकते हैं। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आप कोडिंग सीख सकते हैं, क्योंकि भाई आज हर कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, और आप एक कोडिंग एक्सपर्ट के नाम पर भी अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। फोटोग्राफी सीखिए, फोटोग्राफी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली चीज़ होती है फोटोग्राफी से कि आप हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, हर एक डिटेल को अलग एंगल से देखते हो। एक फोटोग्राफर जो चीज़ किसी और नज़रिए से देखता है, वही एक आम इंसान किसी और नज़रिए से देखता है, तो हर एक एंगल से आपका दिमाग सोचता है, आपकी अटेंशन जो होती है वो बहुत शार्प हो जाती है। पेशेंस सिखाता है, क्योंकि आप एक फ़ोटो के लिए न जाने कितने वक्त तक रुके रहते हैं। तो फोटोग्राफी आप सीख सकते हैं, पजल्स सॉल्व कर सकते हैं, पजल्स में मैथ के क्रॉसवर्ड्स आ सकते हैं, लॉजिक आ सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपका दिमाग और भी ज़्यादा तेज चलता है। ये वो सारी आदतें हैं जिन्हें आप सीखते रहोगे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है हर एक चीज़ से। कई बार होता है कि हम जो जॉब करते हैं उसमें
हमें मज़ा नहीं आता और लोग जॉब की तलाश में ढूंढते हैं। आजकल जॉब्स को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं और जॉब्स में अब डिग्री से ज़्यादा स्किल्स मैटर करती हैं। तो आप अपनी स्किल्स बनाइए, स्किल्स इम्प्रूव कीजिए, अपने टैलेंट को निखारिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। फिलहाल ये तो था आज का पूरा सेशन हमारे गुड मॉर्निंग गोडा के प्रोग्राम में। एंड एक बार चैट बॉक्स में और वापस चलेंगे क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुष्का जी, जो मैं सुनती हैं श्रावस्ती से, लिख रही हैं गुड मॉर्निंग डियर राजे मैम जी, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोडा में। धर्मेंद्र मोहन जी, जो मैं सुन रहे हैं आवाज़ विकास से, हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं उन्नति जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग गोडा में सभी को मेरा नमस्कार पहुँचे। नमस्ते आपको भी और आपका नमस्कार हमने सब तक पहुंचा भी दिया है। सविता जी लिख रही हैं फिर से बरेली वाली गुड़िया हमें जापानी गुड़िया बना दिया, जानकारी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत करते हैं हम। और सविता जी लिख रहे हैं काले गोरे कुछ मायने नहीं रखता, मन में जैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, रंग कभी भी मायने नहीं रखता है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये मायने रखता है। धर्मेंद्र मोहन जी कहते हैं कि हमारे काले हीरो तो हमारे कृष्ण भगवान थे, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे सांवले खूबसूरत और हमारे हीरो भगवान कृष्ण, अब हमें ये बात ज़रूर सिखाते हैं कि रंग कभी भी मैटर नहीं करता। और वैसे भी इंडिया में आप देख सकते हैं इतिहास के पन्नों को पलट कर के जो बहुत खूबसूरत है उनका रंग बहुत गोरा नहीं है, वो सांवले है। इसीलिए अगर किसी का रंग थोड़ा डार्क हो तो आप उन्हें जज ना करें, उनकी खूबसूरती की तारीफ करें, क्योंकि अक्सर यही लोग सूरज की धूप में सुनहरे चमकते हैं। जब तक जीते रहो तब तक सीखते रहो, बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक लाइफ है, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपका दिमाग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहता है और आप उसे कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते रहे। मिश्रा ऑप्टिकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख ले रहे हैं गुड मॉर्निंग गोडा, गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी ने लिखा है कलयुग और कयामत के दौड़ में आजकल कारीगरों का इज्जत है, बहुत ही बेहतरीन बात लिखी है आपने। फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है बाप से विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे थे अपनी मॉर्निंग रेडियो चौकी के साथ गुड मॉर्निंग गोडा, आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। छोड़ के जाते हैं हम आपको इस गाने के साथ, माय जिगर द टुकड़ा, स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें

0: 5883546।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
1: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब?
7: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
10: समता, ओ समता, अरे कुछ तो बोलो, ये क्यों गोलगप्पे की तरह मुंह फुलाकर बैठी हो? देखो कितना सुंदर रास्ता है और बारिश के बाद पेड़ कितने सुंदर लगते हैं और कितनी हरियाली है।
11: अरे आज समता दी का मौन व्रत है, उन्होंने बोला है कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तभी ये बात करेंगी।
12: बना लो मजाक, खूब बना लो, हमको सब पता है कि सबकी मिली भगत है, सबको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हमको बताया जा रहा है कि गीता दीदी सरप्राइज दे रही है। ठीक है, कर लो मजाक।
13: अरे मेरी मुन्नी, रूठो ना। अरे भाई रूठो नहीं समता, बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, तब पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक किरण, हमारी समता रानी को एक प्यारा सा लोकगीत सुनाओ, देखना अभी गुस्सा उतर जाएगा इसका।

0: देखो देखो, हमारी समता दी के चेहरे पर हंसी आ गई। मुंह छिपाकर कैसे हंस रही हैं? अरे अब चेहरा दिखा भी दीजिए, ऐसे मुंह छिपा के तो नहीं हंसा जाता।
1: सही कहा आपने, आपके गीत इतने मजेदार होते ही हैं, जो लोक गीत होते हैं तो हंसी तो आएगी ही। और एक बात, इतने सुंदर गीत आप लाती कहाँ से हैं?
2: यह गांव-गांव घूमने और वहाँ के सुंदर शीतल वातावरण से मन में भाव आ जाते हैं। गांव की मिट्टी इतनी मोहक होती है, गांव की गूंज की टीम के कारण एक बार फिर से गांव से जुड़ने का मौका जो मिला है।
3: सही कह रही हो किरण, गांव की गूंज की हमारी टीम की ये कोशिश रहती है कि आप सब चाहे जहां पर भी जाकर बस गए हो अपनी किसी भी मजबूरी के कारण, पर अपने गांव की मिट्टी से जुड़े रहिए, उसे ना भूलिए।
1: अपने बच्चों को और अपने परिवार को कोशिश कीजिए कि तीज त्योहार में गांव लाइए, वहां के संस्कारों से, वहां के लोगों से मिलवाइए। देखिएगा आपके इस छोटे से प्रयास से आपके बच्चों के व्यक्तित्व का कितना विकास होगा।
0: आप लोग जब वापस अपनी मिट्टी, अपने गांव से जुड़ेंगे, तभी जानेंगे कि गांव की ताजी हवा और बिना प्रदूषित पानी में कितना फायदा होता है।
2: हम ये जरूर मानते हैं कि गांव में आपको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, पर आप हमसे शेयर करिए, हमारी गांव की गूंज की पूरी टीम आपके गांव को और सुंदर बनाने में सहयोग करेगी।
3: और अगर आपका गांव बहुत सुंदर है तो इसकी बातें हमसे साझा कीजिए, उसकी फोटो हमें साझा कीजिए और हम उसे दूसरे गांव को सुंदर बनाने में आपके सुझाव का उपयोग करेंगे।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6393316429। एक बार फिर से नोट कर लें, 6393316429। और मेल आईडी है gyanasthaliradio@gmail.com। पर अपनी बात हमें बताइएगा जरूर।
0: किरण दी, चलिए आपके प्यारे से लोकगीत के साथ सबसे अपील करते हैं, आपके लोकगीत लोगों के दिल तक जाते हैं।
4: हमरे तो, अरे हमरे तो बड़का मोबाइल हमार पिया दिल्ली से लाए हैं।

0: ये हम कहाँ आ गए? यह पेड़ कितना सुंदर है, जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी छाया कितनी ठंडी है। जया, एक अच्छी सी फोटो लेना। थोड़ा रुको, हम और जड़ों के अंदर चले जाएं।
1: समता, यह सेमल का वृक्ष है और गांव वाले मानते हैं कि इस पेड़ की उम्र पर दादा के उम्र के बराबर है। देखो इस पेड़ को। जब यहाँ की डीएम नेहा शर्मा जी ने देखा तो इसे संरक्षित कर दिया, तभी चारों तरफ से घेर दिया गया है।
2: अरे जरा ध्यान से इसकी गोल गोल जड़ें तो देखिए, और जड़ों के बीच में कितनी जगह है। कहते हैं कि 25 मीटर में इसकी गोलाई है, और ये भी बताते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें खूब सारे लाल सुर्ख फूल निकलते हैं, और फिर 4-5 किलोमीटर इसकी रुई उड़ कर जाती है। पर इधर 4-5 सालों से इसमें फूल आने बंद हो गए हैं।
3: देखिए कितने लोग आ गए हमारी गांव की गूंज की टीम को देखकर। चलिए सब चलते हैं, पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते हैं, कितनी ठंडी हवा आ रही है।
0: देवी प्रसाद पांडे इसी गांव के हैं, बता रहे हैं दूर दूर से लोग आकर कह रहे हैं कि पेड़ पर सेल्फी लेते हैं। सरकार 100 साल से अधिक उम्र के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित करती है, जिसमें यह हमारे गोंडा का विरासत वृक्ष भी है।
3: किरण दी हो और ढोलक ना आए, यह तो हो ही नहीं सकता। देखिए कितने लोग आ गए और खट्टे खट्टे करौंदे भी लेकर आए हैं। पर किरण दी, ये हमको आपके गाने के बाद ही मिलेगा।
4: ससुरिया बड़ी चंचल चमचा से मारे, ससुरिया

0: किरण एक और हो जाए। देखो ये लोग हमारे लिए करौंदे का खट्टा मीठा अचार भी लाए हैं। देखो कंडे में बिरजू भैया खेत से लाए हुए ताजे भुट्टो को भी सेकने में लगे हुए हैं।
1: अरे तुहार को

0: जानते हो तुम लोग, यह विरासत का पेड़ है। हमारी इतिहास और संस्कृति गवाह होते हैं और अपनी सुंदरता के कारण टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं, इसीलिए तो दूर दूर से लोग देखने आते हैं।
1: हाँ देखो, पास में टेटी नदी है, वहाँ पुराना रामपुर किला है जिसे लोग देखते हैं, बोटिंग करते हैं और पुराना शिव जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन भी करते हैं।
2: ओ, अब समझे, इससे नाव वाले की, फूल वालों की, भुट्टे बेचने वालों की आमदनी होती होगी और इस गांव के बारे में लोग जानने लगे हैं, या सब इस सेमल के वृक्ष के कारण है।
3: अरे भाई, ये तो देखो कि हमारी जया कितनी सयानी जैसी बातें कर रही है। देखो यहाँ की सब्जियों की दुकानें कितनी सारी लगी हैं और रामपुर के बाजार में लोग कितनी सब्जियां खरीद रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विरासत के पेड़ों का पर्यावरण में बहुत योगदान है।
1: किरण दीदी, हम एक बात बताएंगे कि ये भुट्टा खत्म करने तक एक किरण दीदी का गीत तो हो जाना चाहिए।

0: विरासत के वृक्ष बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वायुमंडल को साफ करते हैं, ढेर सारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गांव के लोग बता रहे हैं, ढेरों पक्षियों को यहां घोंसला बनाते हुए देखा है और बहुत सारे चमगादड़ों का घर भी। सोचो कितने लोगों का घर और कितना खाना दे रहा है यह सेमल का पेड़।
1: सही कह रही हो समता। और एक बात तुम लोगों ने देखी है क्या, इसकी जड़ें कितनी विशाल हैं, इसीलिए यह कितनी मिट्टी को बांधे हुए है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है।
2: पर हमारे शहरों में तो ऐसा कोई विशाल वृक्ष है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को बड़े घर, हाईवे, मॉल चाहिए, इसीलिए हम पेड़ काटते जाते हैं, किसी भी पेड़ को बड़ा ही नहीं होने देते हैं।
0: इतने सालों तक इन लोगों ने इस सेमल के पेड़ की रक्षा की और हम सब शहरी लोग तो बोंजार लगाते हैं और शान से बताते हैं कि यह 10 साल पुराना है और यह 8 साल।
2: समता दी, एक मजेदार बात और है, हर साल हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, फोटो फेसबुक पर डालते हैं और फिर पलट कर नहीं देखते कि वह पेड़ कहाँ गया, बच गया तो उसकी किस्मत।
1: इतने सब दुखी दुखी बातें क्यों करने लगे, कितनी अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं यहाँ से। और तुम लोगों को पता है सेमल के पेड़ को साइलेंट डॉक्टर भी कहते हैं। सेमल की छाल, त्वचा की झाइयां, मुहासे, काले धब्बे, खुजली, जलन सब दूर करते हैं। इसका उपयोग दस्त, अस्थमा, एक्जिमा, घावों को भरने में काम करते हैं।
3: सबसे विदा लेने से पहले क्या तुम लोगों ने कबीर दास का ये दोहा सुना है कि ये ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन दस के व्यवहार से झूठे रंग न भूल। मालूम है इसका मतलब क्या है, यानी कि मानव जीवन सेमल के फूल की ही तरह है। जिस तरह सेमल का फूल रुई बनकर सब जगह उड़ जाता है, मानव जीवन भी इसी प्रकार का क्षण भंगुर का है। इसीलिए इसे इस जीवन के झूठे रंग में रंग कर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं।

आज का सरप्राइज जिंदगी भर याद रहेगा, हम कभी भी मुंह नहीं फुलाएंगे, जहां कहिएगा चुपचाप चल देंगे, प्रॉमिस करते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कसम से, सब हंसते हुए।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
4: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
5: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
4: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें?
5: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
4: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं

0: घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहां स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच कम है वहां जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज ताकि फैलाव रोका जा सके।
1: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
0: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: जी,
0: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांव में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
0: आकांक्षा जी यह बहुत गंभीर खतरा है।
1: जी,
0: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पर सुन्न हो सकते हैं।
1: जी,
0: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
1: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
0: जी जरूर।
1: जी, अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
0: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया।
1: जी,
0: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं। आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं।
1: जी,
0: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं।
1: जी,
0: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता।
1: जी,
0: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
1: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
0: आकांक्षा जी उनकी भूमिका सबसे अहम है।
1: जी,
0: यही बहनें त्वचा पर सुन दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं।
1: जी,
0: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
1: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
0: देखिए खानसा जी,
1: जी
0: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा।
1: जी,
0: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं।
1: जी,
0: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारे समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
0: आकांक्षा जी बहुत सही सवाल है आपका।
1: जी,
0: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
1: बिल्कुल,
0: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
1: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
0: जी आकांक्षा जी।
1: जी मैम आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
0: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
1: जी,
0: दवाइयां डर खत्म करती हैं लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
0: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलत

0: हामी है जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है।
1: जी, अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
0: देखिए आकांक्षा जी,
1: जी
0: मेरा संदेश बहुत साफ है
1: जी।
0: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
1: जी,
0: और सबसे जरूरी इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
0: जी धन्यवाद मैम आप।
1: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: नमस्कार, आदाब। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। शो चल रहा है आपका अपना स्वास्थ्य संगनी, सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी पहल को, जो कि स्मार्ट NGO और रेडियो ज्ञानस्थली की है, जिसमें बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मैं हूं आपकी RJ उन्नति और इसी स्वास्थ्य की कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में होने वाले इन्फेक्शन की, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में लंबे समय तक धूप में, गर्मी में और बाहरी गतिविधियों का आनंद तो मिलता ही है, लेकिन इससे त्वचा के संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है। गर्मी और नमी वाले वातावरण में बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस बहुत तेजी से पनपते हैं, जिसके कारण त्वचा संक्रमण बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। ये संक्रमण हल्के से गंभीर तक हो सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें एक बार फंगल इन्फेक्शन हो चुका होता है, या फिर कहें तो उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो चुका होता है, और जैसे ही गर्मियाँ वापस आती हैं, पसीना स्टार्ट होता है, वैसे ही उन्हें वो इन्फेक्शन वापस आ जाता है। कुछ लोग जो दवाइयाँ तो करते हैं लेकिन सिर्फ 15 दिन की, जब तक वो फंगल इन्फेक्शन या फिर वो स्किन इन्फेक्शन ठीक नहीं होता तब तक तो वो दवाई खाते हैं, लेकिन इसके बाद वो अपनी दवाई बंद कर देते हैं। कोर्स ना कंप्लीट होने की वजह से एक बार वापस से जैसे ही गर्मी आती है या फिर कोई ऐसा मौसम आता है जिसमें नमी हो, चिपचिपाहट हो, तो वो स्किन इन्फेक्शन वापस आ जाते हैं। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं इससे ही रिलेटेड बहुत सारी बातों के बारे में, यानी कि स्किन इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है और बहुत आम कौन सा है, और जो आप लोगों को या फिर अधिकतर लोगों को दांत की दिक्कत हो जाती है वो क्या होता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या इसका कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है या फिर ये वापस आ सकता है, बताते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी अपनी RJ उन्नति आपके अपने FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के साथ।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
8: अरे सुना
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
10: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
1: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
10: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
1: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
10: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है, और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
1: अच्छा।
10: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
1: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
10: बहुत सारी,
1: जैसे?
10: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक के करके बताता हूँ।
1: जी।
10: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
1: और बाकी?
10: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना, और तीसरा फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
9: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
10: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, एनबीएसयू पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर एसएनसीयू को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
9: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत एनबीएसयू ले जाना चाहिए?
10: देखिए आकांक्षा जी, नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
9: जी
10: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है, या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा एनबीएसयू। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी
9: जी।
10: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर एनबीएसयू दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
9: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा एनबीएसयू से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
10: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, केएमसी यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाए, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े, तो तुरंत वापस एनबीएसयू।
9: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
10: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ईएनसी हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
9: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
10: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
9: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
10: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
9: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
11: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
12: मतलब?
11: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
13: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की खूबसूरत पहल के तहत लेकर आए हम आपके लिए इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। बात करते हैं आपकी अपने स्वास्थ्य की। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में स्किन इन्फेक्शन, जो कि गर्मियों में बहुत तेजी से फैलता है। गर्मियों के मौसम में त्वचा संक्रमण का खतरा बढ़ क्यों जाता है, ये सवाल आई थिंक हर किसी के दिमाग में आता है। तो हम आपको बता दें भाई, गर्मियों के मौसम में नमी रहती है। अब जब बारिश का मौसम आता है तो हवा में भी नमी रहती है और गर्मी के कारण हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीना हमारे कपड़ों को गीला करता है, जिसकी वजह से उन गीले कपड़ों को लगातार पहने रहना, धूल मिट्टी में रहना, धूप में रहना और गर्म मौसम में रहना, इसके कारण ही कई लोगों को अलग अलग तरह के स्किन इन्फेक्शन देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना आना, पसीने से नमी मिलती है जो कि फफूंद और बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देती है। इसके बाद आता है घर्षण या फिर रगड़। तंग कपड़े या फिर त्वचा की जो सिलवटें होती हैं उनमें पसीना जाकर फंस जाता है और जलन पैदा करता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो पसीना उनमें बहुत आराम से एक जगह पर आके रुक जाता है और उसका कारण ये होता है कि भाई आपको स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलता है। धूप का संपर्क अगर बहुत ज़्यादा रहता है, लंबे समय तक अगर आप धूप में रहते हैं, जिससे त्वचा की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको नुकसान पहुंच सकता है, जिससे त्वचा का संक्रमण और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। या फिर अगर आप किसी बाहरी गतिविधि में शामिल हुए हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल में जाना या फिर बीच पर जाना, जिम में जाना, भीड़ भाड़ वाली इलाकों में बहुत ज़्यादा रहना, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको संक्रमण हो गया हो। फिलहाल आइए बात कर लेते हैं गर्मियों में होने वाले एक सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा आम स्किन इन्फेक्शन के बारे में, जिसे आम भाषा में हम दाद कहते हैं। आपको पता है कि दाद क्या होता है? आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर हो सकता है कि दाद किसी कीड़े के कारण नहीं होता, या किसी कीड़े के काटने से, या फिर किसी कीड़े के बैठने से नहीं होता, बल्कि कवक के कारण होता है। गर्म और नमी वाले स्थानों जैसे लॉकर रूम और सार्वजनिक स्नान घरों में पनपते हैं। त्वचा पर ये आम और संक्रामक संक्रमण लाल खुजलीदार गोलकार चकत्ते और पपड़ीदार दाने के कारण दाद कहलाता है। यह आसानी से और निकट संपर्क से भी फैलता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कपड़ों को पहनते हैं जिसको पहले से दाद हुआ है, तो हो सकता है आपको भी इसका इन्फेक्शन फैल जाए। या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं जिसके दाद है और उसके संपर्क में आते हैं, या उसका पानी आपके शरीर पर कहीं लगता है, तो भी आपको दाद हो सकता है। हम आपको बता दें, दाद किसी संक्रमित व्यक्ति, जानवर या वस्तु के संपर्क में आने से होता है। दाद शरीर के जिस हिस्से को प्रभावित करता है उसके अनुसार इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। शरीर पर होने वाले दाद को टीनिया कहते हैं। इस प्रकार के दाद हाथों पर, पैरों पर, धड़ पर और चेहरे को प्रभावित करता है। दाद का इलाज एंटी फंगल दवा से किया जाता है, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी डॉक्टर आपको दे देते हैं। हम आपको बता दें, जब एक बार दाद आपको हो जाता है तो आपको इसकी पूरा कोर्स करना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं कंप्लीट करते हैं, कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो ये आगे जाकर और भी ज़्यादा परेशान कर सकता है। और अगर आपका दाद बहुत ज़्यादा पुराना है तो ये ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी दाद की समस्या को लेकर के, और जब वो आपसे कहते हैं कि भाई इसका कोर्स 3 से 4 महीने करना पड़ेगा, तो आप उनकी बातों को ध्यान दें। आप भले ही एंटीफंगल क्रीम लाकर, एंटीफंगल मेडिसिंस लाकर खुद उसकी दवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अगर दाद बार बार आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और डॉक्टर से ही इलाज करवाएं, प्लस अपनी दवाई का कोर्स कम्प्लीट करें। आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाली न जाने कितनी गर्मियों में आप सेम दिक्कत से बार बार परेशान होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दाद कितने टाइप के होते हैं और वो दिखता कैसे है। दाद आमतौर पर एक चपटे बदरंगे धब्बों के रूप में शुरू होता है, जो गोरी त्वचा में लाल या सांवली त्वचा में भूरा दिखाई पड़ता है। ये धब्बा एक अंगूठी के आकार का हो सकता है, ये गोल हो सकता है, जिसकी उभरी हुई पपड़ीदार किनारी होती है। दाद होता कैसा है और दाद किससे होता है, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। दाद किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, यानी कि आप कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के इंसान हैं, तो ये आपको बहुत जल्दी हो जाता है। कुश्ती जैसे अधिक संपर्क वाले खेलों में भाग लेने से भी आपको दाद हो सकता है। हम आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को दाद था या फिर आपको दाद है और आप ऐसे बहुत क्लोज या फिर कुश्ती जैसे किसी गेम में पार्ट लेते हैं या जिसमें बहुत ज़्यादा टचेस शामिल होते हैं और आप किसी ऐसे गेम्स में पार्ट लेते हैं तो भाई ये आपको भी फैल सकता है। बहुत ज़्यादा पसीना आना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें गर्मियों में हद से ज़्यादा पसीना आता है, अगर आप भी उनमें से शामिल हैं तो आपको भी दाद होने का खतरा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दाद हो, लेकिन अगर आपको लगातार बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपके कपड़े लगातार भीगे रहते हैं और आप उस गीले कपड़े को लेकर के हवा में या फिर धूप में रहते हैं और लंबे समय तक रहते हैं तो इससे दाद का खतरा बढ़ सकता है। जिन लोगों को पसीना बहुत कम आता है उनसे कई गुना ज़्यादा उन्हें खतरा होता है जिन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने कपड़े को चेंज करें, दिन में दो बार ज़रूर नहाएं। इसी के साथ हम आपको बता दें, जो लोग सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं या फिर सार्वजनिक स्नान घरों का उपयोग करते हैं उन्हें भी दाद होने की समस्या हो सकती है, क्योंकि भाई आप जहां जाते हैं अगर किसी को जांघों के पास दाद है और उन्होंने सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल किया है और आप भी सेम सीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो संपर्क में आने से आपको भी ये संक्रमण हो सकता है। दाद से संक्रमित होने की संभावना वाले जानवर के साथ अगर आप मिलकर रहते हैं या बहुत क्लोज रहते हैं तो हो सकता है आपको भी उससे दाद ट्रांसफर हो जाए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। लोगों को लगता है कि सिर्फ इंसानों से ही ट्रांसफर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी जानवर के साथ रहते हैं जिसको पहले से फंगल इन्फेक्शन या फिर रिंग वॉर्म, जिसको हम दाद भी कहते हैं, वो नज़र आता है या फिर उसके है तो आपको भी हो सकता है। भाई हम आपको बता दें, दांत एक ऐसा संक्रमण है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये किसी भी समय विश्व के 20-25% आबादी को प्रभावित कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके आसपास रहने वाले लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें दांत की प्रॉब्लम होती है। भाई कुछ लोग दांत को छुपाना पसंद करते हैं, जो उसकी वजह भी लाजिम है। लोग सोचते हैं कि अगर हम दांत को दूसरों को बताएंगे तो लोग उनसे दूरी बना लेते हैं, और ऐसा हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलता है। दांत हो, कोढ़ हो, जब भी कोई ऐसी बीमारी जो हमें स्किन से जुड़ी हुई दिखती है तो हम उसके साथ भेदभाव, छुआछूत जैसी प्रथा को बनाने लग जाते हैं, उसे अपने साथ नहीं बैठाते हैं, आम इंसान की तरह उनसे बात करना बंद कर देते हैं। बीमारी को बीमारी की तरह ट्रीट ना करके हम उन्हें एक अनटचेबल पर्सन बना देते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें छुएंगे तो न जाने कौन सा पाप हो जाएगा, और इसी के चलते लोग अपनी बीमारी को बीमारी नहीं समझते हैं, उन्हें पाप समझने लग जाते हैं और छुपाते हैं। डॉक्टर्स के पास ना जा करके खुद ही मेडिकल से या फिर फार्मेसी से मेडिसिन लाते हैं और उसका कोर्स करते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि उनका दांत ठीक हो गया है या फिर उनका स्किन इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो गया है या फिर वो सूख गया है तो तुरंत ही दवा बंद कर दी जाती है, ये बिना जाने कि इसके बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर अभी भी मौजूद हैं, और जैसे ही आप दवा बंद करते हैं ये वापस से उभर आते हैं। और लगातार अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बता दें, एक दवा असर भी करना बंद कर देती है। फिलहाल आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि दांत कितने प्रकार का होता है और इसका उपचार कैसे किया जाता है। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी अपनी आरशी नदी और रेडियो ज्ञान असली पे।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। स्मार्ट एनर्जी और रेडियो ज्ञान असली की खूबसूरत सी पहल सेहत सही लाभकारी बैनर के तले लेकर आए हम आपका अपना स्वास्थ्य का कार्यक्रम। मैं हूं आपकी आरजी नदी और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। बात कर रहे हैं आज स्किन इन्फेक्शन की, और अभी तक हम जान रहे थे दांत के बारे में। आइए बात कर लेते हैं कि दांत कितने प्रकार का होता है। दांत शरीर के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने के आधार पर उसके अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि पहला इसे टीनिया पेडिस भी कहा जाता है। ये फंगल संक्रमण पैर की उंगलियों के बीच और तलवों पर खुजली और जलन पैदा करने वाले दाने का कारण बनता है। अगर आपने कभी अपने अंगूठों के बीच में और अंगूठे और उंगली के बीच में कभी खुजली वाला जलन पैदा करने वाला संक्रमण देखा है तो उसे इसी नाम से जाना जाता है। ये एक फंगल संक्रमण होता है। आपकी त्वचा इसमें पपड़ीदार और फटी हुई हो सकती है। ये उसमें छाले पड़ सकते हैं। कभी कभी आपके पैरों से गंदी स्मेल यानी कि दुर्गंध भी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी। तो भाई दूसरी जो बहुत आम है और जो हर एक उम्र में प्लस हर एक जेंडर में देखा जाता है उसे कहते हैं भाई जांग की खुजली। हम आपको बता दें जब जांघों के बीच के हिस्से या फिर ऊपरी जांघों या गूदा में लाल खुजलीदार दाने पैदा करने वाला संक्रमण होता है। कुछ लोगों में ये छाले के रूप में भी देखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे थाइस में यानी कि हमारे जांघों में गर्मियों में स्पेशली पसीना बहुत ज्यादा रुकता है, जिसके कारण अधिकतर लोगों को जो दाद होता है वो उनके जांघों के आसपास ही होता है, उनके प्राइवेट एरिया के आसपास होता है, जिसमें काफी ज्यादा ईचिंग होती है और बहुत अनकंफर्टेबल होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं स्कैल्प रिंग वॉर्म की। इससे सिर की त्वचा पर पपड़ीदार, लाल, खुजलीदार और गंजे धब्बे हो सकते हैं। अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये गंजे धब्बे बड़े होकर स्थायी भी हो सकते हैं। हाथों का दाद। हाथों पर दाद के लक्षणों में सूखी फटी हथेलियां और छल्ले जैसे धब्बे शामिल होते हैं। लड़कों में जो खास तौर पर देखा जाता है वो होता है दाढ़ी का संक्रमण। गर्दन, थोड़ी और गालों पर दाद दिखाई देता है। ये दाने पपड़ीदार हो सकते हैं और उनमें मवाद भी भर सकता है। हम आपको बता दें कि पैरों के नाखून और हाथ के नाखून के बीच में भी दाद हो सकता है। तो भाई ये तो थे दाद के प्रकार की दाद आपको कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है और इसके कारणों में हमने जाना कि अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो भाई दाद आपको हो सकता है, या फिर आपको कभी पहले दाद हुआ होगा और आपने इसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो भी आपको दाद हो सकता है। भाई कई लोगों के दाद हो जाते हैं बहुत ज्यादा पुराने और वो कोशिश तो करते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं, लेकिन काफी टाइम के बाद, जिसके कारण उनका दाद फिर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, गर्मी आते ही वापस आ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं लक्षणों की। दांत के लक्षण आखिरकार क्या होते हैं? दांत पैदा करने वाले कवक के संपर्क में आने से 4 या 14 दिन के भीतर आमतौर पर आपको कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आपको खुजलीदार, दानेदार, आपके शरीर पर लाल चकत्ते नजर आते हैं, गोल गोल चकत्ते जो पपड़ीदार भी हो सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, उभरी हुई गोल किनारी वाले समतल भाग, खुजली वाली त्वचा, प्रभावित क्षेत्र में बालों का बहुत तेजी से झड़ना, गंजेपन के धब्बे दिखाई पड़ना, ये सारे कारण होते हैं दांत के। दांत से पीड़ित व्यक्ति के साथ त्वचा का सीधा संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपको दांत हो सकता है। किसी संक्रमित कुत्ते बिल्ली की या फिर किसी अन्य जानवर के संपर्क में आते हैं तो उससे भी आपको दांत हो सकता है। तो ये तो थी दांत की बात और किस तरह से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या इसका निदान है, क्या इसको ठीक भी किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दें आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी त्वचा की जांच और लक्षणों का आकलन करके दांत का निदान कर सकता है। वे त्वचा की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उसमें पता करते हैं भाई कि क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद ही वो आपको बताते हैं कि ये दाद है या नहीं है। अगर दाद होता है तो उसका इलाज एंटी फंगल दवाइयों के साथ किया जाता है। हालांकि अगर आप चाहें तो बिना प्रिस्क्रिप्शन भी आप एंटी फंगल दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दाद बहुत पुराना है या बार बार उभर कर आता है तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, सबसे पहले अपना स्किन टेस्ट कराएं और उसके बाद जाकर आप दवा लें। कई बार हमें जो चीजें लगती हैं वो वैसी होती नहीं, ना वो इतनी आसान होती है और ना वो बीमारी ही होती है। कई बार हमें दाद लग तो रहा होता है लेकिन बीमारी कुछ और होती है, संक्रमण किसी और चीज का होता है और दवा हम किसी और चीज का कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी दवा हम पर असर नहीं करती और बार बार हमें सेम दिक्कत, सेम प्रॉब्लम नजर आती है। फिलहाल आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बताते हैं और स्किन इन्फेक्शन के बारे में कि भाई स्किन इन्फेक्शन और कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से इन गर्मियों में आपको हो सकते हैं, कैसे कैसे अपना ख्याल रखना है। ये तो था सेगमेंट छोटा सा जो था दांत के बारे में। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना स्वास्थ्य संगिनी, स्टे ट्यून्ड।
3: नमस्कार, नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
5: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
3: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
5: जी हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
3: जी,
5: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
5: जी हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
3: जी,
5: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
3: जी तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
5: जी जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
3: जी,
5: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
3: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
5: जी आज दीदी
3: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
5: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
3: जी।
5: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
3: जी,
5: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
3: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
5: जी दीदी
3: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीवी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
5: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीवी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
3: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।

0: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरची उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो क्या असली 9.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए मैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम को, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं स्किन इन्फेक्शन की। और अभी तक हमने जाना स्किन इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा कॉमन एक इन्फेक्शन, जिसको हम आम भाषा में दाद कहते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसका उपचार कराना है, इन सब के बारे में हमने जान लिया। और अब बात करते हैं दूसरे इन्फेक्शन के बारे में, दूसरे संक्रमण के बारे में, जिसे हम आम भाषा में जीवाणिक संक्रमण कहते हैं। पसीने, मामूली कटने या कीड़े के काटने से त्वचा की अखंडता कमजोर होने पर त्वचा में जीवाणिक संक्रमण बढ़ जाता है। चेहरे पर या हाथ पैरों में होने वाले लाल घाव या छाले, जिनमें कभी कभी रिसाव भी हो सकता है, फोड़े और मवाद भरे फोड़े, बालों के रोमों में जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक मवाद से भरी गांठें निकल आ सकती हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं भाई कि फोड़ा निकल आया है। हम आपको बता दें, लोगों को लगता है कि गर्मियों में बालों को रोज रोज धोने की जरूरत नहीं होती और कई लोग हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बाल को अपने धोते हैं। बट यहीं पर होती है सबसे बड़ी मुसीबत। जब भी आप अपने बालों को हफ्ते में सिर्फ एक बार धोते हैं तो आपका स्कैल्प खुद को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाता। प्लस क्योंकि गर्मियों में आता है बहुत ज्यादा पसीना और पसीने आपके छिद्रों को कर देते हैं बंद, जिसकी वजह से संक्रमण होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि लड़कों को कम से कम 3 से 4 बार और लड़कियों को हफ्ते में 2 बार बाल जरूर धोने चाहिए। बाल धोने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बालों को गीला करके, सिर्फ शैम्पू लगा करके, कंडीशनर लगा करके उन्हें छोड़ दें या फिर अपने बालों को सिल्की स्मूथ कर लें। बाल धोने का असली मतलब ये होता है कि जो आपके स्कैल्प में जमा तेल, पसीना, गंदगी है, उसे ठीक तरह से निकालना। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी बाल धोते हैं और कहते हैं कि लो भाई बाल तो हम 2 मिनट के अंदर धो लेते हैं। कई लोगों को वही बाल धोने में 10 मिनट लगते हैं। तो भाई आपको अपने बालों को 2 बार जरूर वॉश करना चाहिए, 2 बार शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए और शैम्पू का इस्तेमाल केमिकल फ्री रखना चाहिए। इससे आपका स्कैल्प क्लीन होता है और जब आपका स्कैल्प क्लीन होता है तो आपको सर में इन्फेक्शन नहीं होता या फिर सर में फोड़े नहीं पड़ते। हम आपको बता दें, बालों के रोमों में सूजन, जो अक्सर पसीना आने या फिर घर्षण के कारण होता है, क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बालों में तो अक्सर बहुत सारा पसीना होता है, जिसकी वजह से ही बालों में बहुत सारे, यानी कि हमारे स्कैल्प में बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि गर्मियों में ये जो समस्या होती है, इससे बचना कैसे है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम आपको बता दें, गर्मी के मौसम में बहुत सारे संक्रमण जो त्वचा से जुड़े होते हैं, उनके बचाव के उपाय बड़े ही छोटे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है स्वच्छता, यानी कि अगर आप अपने हाइजीन को प्राथमिकता देते हैं, आप साफ सफाई को प्राथमिकता देते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों को बचा सकते हैं। सफाई हर एक बीमारी का सबसे बड़ा उपाय होता है, फिर चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, चिकन पॉक्स हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, फूड पॉइजनिंग हो, हर कहीं पर कहीं ना कहीं, या फिर आप अपनी स्वस्थ भी हों तो भी सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और स्किन इन्फेक्शन के लिए तो साफ सफाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपको दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर नहाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पसीना आने के बाद, तैरने के बाद, हमेशा आपको स्नान करना चाहिए। हम आपको बता दें भाई कि अगर आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं या फिर किसी भी जगह पर नहाने जाते हैं, भले ही वो स्विमिंग पूल हो, भले ही वो बीच हो, समंदर हो, कहीं भी अगर आप स्विमिंग करने गए हैं, आप तैरने गए हैं और वहाँ से आकर आपको ज़रूर नहाना चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है या फिर जो लोग जिम में जाकर भारी भरकम वर्कआउट करते हैं, अगर आपने 2 घंटे पसीना लगातार जिम के अंदर बहाया है और अगर आप लौटकर नहीं नहाते हैं, तो मुबारक हो, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए ख्याल रखें कि जब भी आपने बहुत ज़्यादा पसीने वाला काम किया हो, किचन में खड़े हो, लगातार पसीने में भीग रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो या फिर वॉक करने गए हो या फिर कुछ भी आप काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसीना आया है, या फिर आप अभी अभी स्विमिंग पूल से निकल कर आए हैं, तो सबसे पहले आपको नहाना है, खुद को साफ करना है, खुद की साफ सफाई का ख्याल रखना है। और अब बात कर लेते हैं आपकी आदतों की। रोजाना आपने तौलिए को और अपने कपड़ों को साफ करना है। जी हाँ, हम आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महीने दर महीने अपने तौलिए को साफ नहीं करते, उन्हें धोना जरूरी नहीं समझते, और यही होता है स्किन इन्फेक्शन का सबसे बड़ा खतरा। आपको गर्मियों में स्पेशली अपने तौलिए को 2 दिन के अंतराल में धो देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भाई आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। गर्मियों में साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए नहीं क्योंकि उनमें से स्मेल आती है, इसलिए क्योंकि बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, नमी बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली अगर आप अपने अंडरगार्मेंट्स को रिपीट करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको जांघों के पास या फिर आपको स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। भाई अगर आपको स्किन इन्फेक्शन जांघों के आसपास है तो कोशिश करें कि जो भी आपके अंडरगार्मेंट्स हैं पहले उन्हें गर्म पानी से जरूर धोएं, उन्हें गर्म पानी में भिगोकर रखें और उसके बाद उन्हें सादा पानी से धो दें। सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं होता है, इसीलिए अच्छे तरीके से जो भी आप निरमा वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल से अपने कपड़ों को साफ करें, उन्हें धूप में सुखाएं और आयरन करने के बाद ही उन कपड़ों को पहनें। और अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल चीजों की, जो कि है आपके रेजर, जूते, चप्पल जैसी निजी वस्तुओं का साझा ना करें। लड़कों के लिए स्पेशली ये कहा जाता है भाई कि शेयरिंग इज केयरिंग। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शेयर करना तो केयर करना होता है, बट ऐसा नहीं है। आप अपने निजी चीजों का आदान प्रदान ना करें, यानी कि शेयर ना करें। लड़के स्पेशली जब आप अपने दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो अपनी शेविंग ब्रश को, अपने रेजर को किसी और को ना दें। वो जो ब्रो कोड होता है आपके बीच में कि भाई हम तो अपने भाई के साथ सबको साझा कर लेते हैं, यही वो कारण होता है जिसके कारण से आपके दाढ़ी के आसपास, आपके गले के आसपास आपको स्किन इन्फेक्शन और दाँत देखने को मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि भाई जो भी चीज़ें आप अपने इस्तेमाल कर रहे हो शेविंग करने के लिए, उसका आदान प्रदान ना करें। जैसा कि हमने पहले जाना कि जो जूते चप्पल होते हैं उनके कारण भी पैरों में और पैरों के आसपास की उंगलियों में दाद हो जाता है, तो भैया कोशिश करें कि आप किसी और के जूते चप्पल भी ना पहने, ना प्लस अपने जूते चप्पल किसी को दें। इसको आपकी बुरी आदत नहीं माना जाएगा, इसको आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आपके निजी दृष्टि से भी। अपनी पर्सनल चीज़ों का आदान प्रदान ना करें, बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। ख्याल रखें कि आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके स्किन के टच में बहुत ज़्यादा हैं, आपके स्किन के संपर्क में बहुत ज़्यादा आती हैं, उनका आदान प्रदान थोड़ा कम करें। और अब बात कर लेते हैं आपके हाथों की साफ सफाई की, खास तौर पर जब आप जाते हैं किसी पब्लिक प्लेस में। अगर आप पब्लिक वॉशरूम, पब्लिक बाथरूम या फिर पब्लिक सीटों का इस्तेमाल करते हैं तो अपने हाथों को जरूर धोएं, क्योंकि हमारे हाथ ही वो एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के अलग अलग कोनों तक जाते हैं, और जब भी हम अपने हाथों को साफ सुथरा नहीं रखते तो बहुत सारी बीमारियां हमारे हाथों से ही होती हैं। और अब बात करते हैं आपके कपड़ों की। भाई गर्मियों में कपड़े बहुत टाइट नहीं पहनने चाहिए, ये लाइन तो आपने हर किसी से सुनी होगी। चलिए हम आपको बता दें कि गर्मियों में कपड़े पहनने कैसे हैं। यूं तो आप भी जानते हैं कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि सूती, जो ढीले हो, हवादार हो। यानी कि अगर आप ओवरसाइज्ड कपड़े भी पहन के घूमते हैं और आपको मम्मी के 4 ताने भी मिल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता है कि ये सूती कपड़े और हवादार कपड़े से ही आपके स्किन इन्फेक्शन का खतरा रुक सकता है। इसी के साथ व्यायाम जरूर करें, और जब आप योगा करने जाते हैं तो उस दौरान भी वही कपड़े पहने जो नमी सोख सकते हैं। यानी कि आप वर्कआउट करने जाएं तो वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए कपड़े पहनने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा चिपके कपड़े, बहुत ज़्यादा पसीने वाले कपड़े। कई बार हमें लगता तो है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो हमने जो जिम में जाके बॉडी बनाई है उसको फ्लेक्स कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जब भी हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो स्किन इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। धूप से होने वाले सनबर्न और त्वचा से संक्रमण से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं त्वचा की देखभाल और नमी की। त्वचा को साफ और सूखा रखें, खास तौर पर अगर वहाँ पर जहाँ पर त्वचा की सिलवटें होती हैं, एग्जाम्पल आपके गले के आसपास, आपके चेस्ट के आसपास और आपके थाइस के आसपास, ये वो इलाके होते हैं जहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा रुकता है और इन्हीं की वजह से लगातार नमी बनी रहती है, और नमी और पसीने की वजह से ही आपको स्किन इन्फेक्शन ज़्यादातर देखने को इन्हीं एरियाज में ज़्यादा मिलता है। तो कोशिश करें कि आपके कपड़े लगातार सूखे रहे, और अगर आपको पसीना आता है तो आप जाके नहा लें, साफ सुथरे दोबारा से कपड़े पहने, खुद को बहुत देर तक नमी वाले इलाकों में या फिर नमी में ना रखें। बहुत ज़्यादा तेल और नमी को रोकने वाले उत्पादों का उपयोग करने से बचें। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें गर्मियों में ऑयलिंग करने का शौक है और हमारे घर वाले भी कहते हैं तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा तेल लगा लो, तेल लगाने से बाल एकदम चकाचक हो जाएंगे। और इसका उल्टा हो जाता है, बाल ठीक तो नहीं होते लेकिन सर में छाले और फबोले और पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि भाई ये क्यों हो रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि तेल और पसीना मिलकर आपके सेल्स के बीच में जो जगह होती है उन्हें बंद कर देता है और गंदगी आकर लगातार वहां पर जमा होती रहती है, जिसकी वजह से ही आपको स्किन इन्फेक्शन और भी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप ड्राई स्किन के नहीं है तो कोशिश करें कि आप बहुत ज्यादा ऑयल वाली क्रीम भी इस्तेमाल ना करें। गर्मियों में जितना मुमकिन हो सके उतना जेल बेस्ड या फिर बहुत लाइट वेट क्रीम्स और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाएं, स्विमिंग पूल में एंजॉय भी करें, लेकिन घर आकर या फिर वहीं पर वॉशरूम में ज़रूर खुद को साफ करें, ज़रूर नहाएं। गीली सतहों पर, सार्वजनिक स्नान घरों में जब भी आप एंट्री करें तो अपने हमेशा जूते या फिर चप्पल पहनकर करें। दूषित या रुके हुए पानी में तैरने से बचें, यानी कि वो पानी जो लगातार रुका हुआ है, जिसे हम स्टिल वाटर भी कहते हैं। स्टिल वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और बहुत ज़्यादा बीमारी पैदा करने वाले हर प्रकार के जीवाणु मौजूद होते हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ पर पानी का ठहराव है, भले ही वो देखने में कितना ही शांत क्यों ना लग रहा हो, शांत पानी हमेशा खतरनाक होता है, तो उससे दूरी बनाकर रखें। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर से अब आपको कब मिलना है। यदि संक्रमण में सुधार ना हो या स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाए तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। लगातार लालिमा, सूजन या मवाद का होना, त्वचा संक्रमण के साथ साथ बुखार का होना, तेजी से फैलने वाले दाने या बहुत तीव्र दर्द का होना, कुछ दिनों बाद घरेलू उपचार आपके लिए प्रभावी नहीं रहते हैं। आप एंटीफंगल दवाई तो ले रहे हैं लेकिन उनका असर आप पर नहीं हो रहा, क्योंकि आपने या तो दवाई बार बार ली है या फिर आप दवाई गलत ले रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं और अपना इलाज वहां से कराएं। फिलहाल आज हमने बात की आपसे स्किन इन्फेक्शन के बारे में, वो इन्फेक्शन जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आमतौर पर हर इंसान कभी न कभी इससे ज़रूर परेशान रहता है, तो कोशिश कीजिए अगर किसी और को स्किन इन्फेक्शन होता है तो भाई उनकी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और अपनी चीज़ें उनसे साझा ना करें। इससे आप अपनी भी सुरक्षा करते हैं और दूसरों की भी सुरक्षा करते हैं, और साथ ही साथ बीमारी को बीमारी की तरह ट्रीट करना सीख लें। आप बीमारी को बीमारी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं बल्कि बीमारी को छोड़कर रोगी को दूर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि भाई उनके लिए तो कोई है ही नहीं, वो अकेले पड़ चुके हैं और न जाने कितनी बीमारियों से वो लड़ने में फिर असक्षम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही बीमारियां और भी ज्यादा फैलती हैं। तो बीमारी को बीमारी की तरह ट्रीट करें, गर्मियों में खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, छोटी छोटी आदतों का बदलाव करें, पानी पीते रहें। बस यही कहना था आपसे आज के लिए, और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं अपनी आरजीवंती के साथ स्वास्थ्य संगिनी, आपके अपने FM रेडियो 89.6 FM पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
1: स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार जो है वो घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं तो कुछ देरी कर देते हैं, कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसीलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव-गांव की ज्ञान की पिटारी, हमारी टीकन भाभी को। स्वागत है एक बार आपका वापस से इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई।
2: धन्यवाद आरजे भैया, और धन्यवाद रेडियो के सभी श्रोताओं को। बहुत ही जरूरी विषय उठाया आज आपने, नवजात बच्चा जो जैसे कि कच्ची मिट्टी होता है और उसको जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत ही विशेषज्ञ इलाज की जरूरत भी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे SNCU पर। यानी SNCU ये है क्या और क्यों जरूरी है, शायद ये हमारे श्रोताओं को नहीं पता, लेकिन ये आज हमारी टीकन भाभी जरूर बताएंगी।
2: बिल्कुल भैया, SNCU का पूरा नाम है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये एक खास यूनिट है जो जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्स, खास मशीनें और बच्चों की निगरानी की सुविधा होती है। ये यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हों और कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों, पीलिया, संक्रमण, दौरा या तेज बुखार से ग्रसित हों, दूध ना पी पा रहे हों या बहुत ज़्यादा ठंड या गर्म हों। SNCU को ऐसे समझो जैसे नवजात बच्चों की ICU।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा फैक्ट्री

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप
5: जी? नमस्ते, मैं बहुत

0: जानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
1: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
0: जी,
1: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
0: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
1: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
0: जी,
1: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
0: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं
1: जी। आज दीदी
0: है? क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
1: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
0: जी।
1: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है, उसकी उनको जानकारी देती हूँ
0: जी,
1: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
0: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
1: जी दीदी
0: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
1: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
0: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं?
2: ये तो सुजाता जी, अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं, उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
2: देखिए ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख

0: इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
1: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं सर?
0: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
1: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
0: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
0: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जाँच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
0: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, लेना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
0: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरीनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है, और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हेंदु सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCH UP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
3: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
1: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
3: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
1: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
3: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए, डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जो अब काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने JE का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
3: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
3: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, और उस खून जितना ही बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
3: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
3: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हज़ार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हज़ार की आबादी पे हमारी आशाएँ होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1,000 की आबादी पर जो होती हैं, जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
3: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफ़ी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पर दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीज़ों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज़ हमें समझाने की ज़रूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों के भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीज़ों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1,000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
3: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं, और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
3: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्ठे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है, और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
1: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली में। तो सुन सहेली और वही टाइम हो गया है 1:41, यानी कि आपके अपने प्रोग्राम सुन सहेली का। और हम आ गए हैं, हमसे मेरा मतलब है मैं और आपकी बहुत ही प्यारी सी, स्वीट सी और हर बात को बहुत ही प्यार से बताती हैं, जो कि अपनी मस्ती से 4 चांद भी लगाती हैं। और वो आज भी अपनी मस्ती से, अपनी बातों से हमें हमारे शो में 4 चांद लगाएंगी और बहुत सारी बातें भी हम उनसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए वेलकम कर लेते हैं और इंट्रोड्यूस करा देते हैं आप सभी से कि आज हमारी सखी कौन सी हैं हमारे साथ।
1: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर, और कह सकते हैं कि लिसनर नहीं, हमारे दोस्तों को। भाई देखिए, आज थोड़ी सी राहत तो है गर्मी से, क्योंकि भाई देखिए गर्मियां तो एकदम सर चढ़ के तांडव कर रही हैं। अगर आप घर से 7 मिनट भी बाहर निकलते हैं तो आपको मैं बता दूं कि भाई आपको स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगा रखा है तो ये थोड़ा सा और दिक्कत आपको कर सकता है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं तो हम इतना जानते हैं कि भाई हम इस धरती पर रहते हैं, और इस धरती में फ़िलहाल हम जिस देश में रह रहे हैं यानी कि भारत में चल रहे हैं समर, और समर में सूर्य देवता तो हमें भूनने पे लगे हुए हैं। आज कुछ राहत है लेकिन ये कब तक रहेगी हमें खुद भी नहीं पता। वेल, फिलहाल इन सभी को छोड़ के हम आते हैं अपने शो यानी कि सुन सहेली में। मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी, लेके आई हूँ, मैं नहीं लाई हूँ भाई, लाई तो अंशिका ही है, अंशिका के साथ मैं आपके साथ आई हूँ।
0: बिल्कुल, और जब हम साथ आए हैं यानी कि भाई दोस्त जब साथ आते हैं तो कहते हैं ना कि अच्छी खासी एक पूरी मतलब महफिल हम अगर कह लें कि बिल्कुल जम जाती है, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत हम एंजॉय करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी भी जानते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: और आज तो है भाई बुधवार, बुधवार यानी कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल दिन हमने निर्धारित किया है, विच इज़ वेडनेसडे, क्योंकि डब्ल्यू से वेडनेसडे और डब्ल्यू से ही वुमेन होती है। अब देखिए, महिलाओं की बात हो रही है और भारत में आजकल महिलाओं के पे बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए मेल्स पे कुछ नहीं होता, उनके साथ क्राइम नहीं होते, इवन कितने ऐसे मेल हैं जो महिलाओं द्वारा प्रताड़ित होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में महिलाओं पे महिलाओं को परेशान करने का जो मसला है, जो मामले हैं, वो और ज़्यादा बढ़ते हैं। हर दिन हज़ारों महिलाएं ऐसी होती हैं भारत में जिनको प्रताड़ित किया जाता है, जिनको पीटा जाता है, उनके साथ रेप होते हैं, हत्या होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, और न जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक महिला सफ़र करती है। वेल, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी किसी भी तरह से प्रताड़ित की जा रही है, चाहे अगर हम एक एक चीज़ की बात करें, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, फेक आईडीज़ बना के आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या फिर आपको फेक कॉल्स आ रहे हैं, स्पैम कॉल्स ज़्यादा आ रहे हैं, कोई आपको बार बार कह सकते हैं कि सुकून से जीने नहीं दे रहा, क्योंकि जब आपको कोई परेशान करता है तो आप सुकून से नहीं जी पाते हैं, तो इसमें आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। बल्कि गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ साइट्स लॉन्च की हुई हैं, ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिस पे आप इन क्राइम्स को रिपोर्ट कर सकती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 1090 जो एक नंबर है, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकती हैं। एक महिला जो है पुलिस वाली आपको आपसे बात करेगी, आप उसे अपनी सारी समस्या खुल के बताएं और अपनी ज़िंदगी से इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंके। और आपको मैं बताऊं कि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ की भी नहीं होती, इसमें कुछ पैसे नहीं खर्च होते, बस सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि आपकी समस्या को हल करना है। उसके बाद अगर आपको घर में भी अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर हो, आपका हस्बैंड हो, या फिर कोई भी चीज़, कोई आपके वर्क प्लेस पर आपका बॉस हो, या कोई भी आपको सुकून से जीने नहीं दे रहा, परेशान कर रहा है, तो भी आप इस नंबर पर जा कर के अपनी सेफ्टी का एक कह सकते हैं कि अपनी सलामती के लिए एक स्टेप आप और उठा सकती हैं।
0: बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि महिलाओं के साथ क्राइम होता है, लेकिन क्राइम ज़्यादा तब बढ़ता है जब हम बर्दाश्त करते हैं। महिलाओं में स्पेशली घरेलू हिंसा जब उनके साथ होती है या कोई भी क्राइम होता है तो वो उसे सह लेते हैं।
1: जी,
0: तो सहना नहीं है यहाँ अपने हक के लिए आपको आवाज़
1: उठा। अगर हम बात करें अंशिका, तो रिसेंटली हमें 2 केसेस देखने को मिले, हालांकि 2 हमें देखने को मिले, और कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं कराए जाते। बिल्कुल रिपोर्ट नहीं होते कि क्या महिलाओं के खिलाफ हो रहा है या क्या उन पे जुल्म हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जो है हमें ऐसे ही केस जो चीज़ सामने आते हैं, जब बहुत देर हो चुकी होती है और तभी ये मामले हमारे सामने आते हैं, जैसे कि त्रिशा शर्मा हो गई जो कि भोपाल से थी और दीपिका हो गई जो कि हरियाणा की थी। अब इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो एक ऐसी जैसे जो हमारी इंडियन सोसाइटी का एक कह सकते हैं कि ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देंगे तो वो बच्चे सुखी रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो मामला सामने आया है और कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी ये आया है कि जो दीपिका जो मरी हैं, जिनको कहा जा रहा है सुसाइड की हैं, कोई कह रहा है मर्डर की है, इसमें भी उनके पेरेंट्स ने लगभग 1 करोड़ रुपए का दहेज दिया था। अब आप समझ सकती हैं कि 1 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, और इस पे भी अगर बच्चे नहीं सेफ हैं तो हम आपको बता दें कि ये दहेज देना तो ऑलरेडी एक अपराध है ही, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये ज़्यादा है कि इंसान से बेहतर दहेज है, आप जितना दहेज देंगे उससे इंसान का बिहेवियर भी अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, आपको दहेज नहीं देना है, दहेज के खिलाफ रहना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, पाला पोसा है, और इंसान से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई धन हो सकता है। इंसान बल्कि धन को कमाता है, धन से इंसान नहीं खरीदा जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद अगर आप ये सोचें कि अगर आपकी बेटी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा कमा रही है, या आप एक ऐसी फैमिली में अपनी बेटी को बेटी की शादी कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, वहाँ पे भी लड़कियाँ मारी जा रही हैं, वहाँ पे भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है। यही सेम केस हमें नज़र आया है त्रिशा शर्मा की, जो उनका मर्डर केस है, जिसके अभी उनके पति ने सरेंडर कर दिया, उनकी सास ने जो है वो भी, अभी सीबीआई की जांच चल रही है इसमें। लेकिन आप देखें कि हमारे सोसाइटी में ये क्या फैल गया। आखिर आप बताएं कि लड़कियाँ सेफ है कहाँ?
0: कहीं भी नहीं, क्योंकि जैसा अभी आपने बताया आयुष जी कि अच्छे खासे वेल एजुकेटेड घरों में ये चीज़ें हो रही हैं। अभी अगर हम उनके प्रिशा का ही केस ले लें तो देखिए आपकी मतलब इतनी फेमस वो और इतने अच्छे से सब कुछ था, लेकिन फिर भी आखिर एक केस हुआ। तो कहीं ना कहीं एक महिला कहीं पर भी सेफ नहीं है। हम कहते हैं ना कि अरे आप सेल्फ डिफेंस सिखा दीजिए और लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक महिला घरेलू हिंसा से लेकर के हर तरह के क्राइम का शिकार होती है।
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी अंशिका कि देखिए, जो हमारे भारत में जब भी शादी होती है तो एक बाप है, एक घर वाले हैं जो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ें, और आज ही नहीं बल्कि बहुत पहले से चली आ रही हैं, कि कन्यादान की जगह लड़कियों का पिंड दान कर दिया जा रहा है। मेरा इसका मतलब ये है कहने का कि तुरंत बोल दिया जाता है कि अब से तुम्हारा घर वही है, ये घर में मेहमान बन के आना, 2 दिन के बाद चली जाना, और जहाँ को तुम्हारी डोली गई है वहाँ से ही तुम्हारी अर्थी भी उठेगी।
0: बिल्कुल।
1: और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगह पे बोली जाती हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि एडजस्टमेंट और शादी जो है, शादी के बाद आप वापस नहीं आ सकती, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको एडजस्ट करना है, पति देवता है, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती है। अगर कोई आपको थोड़ा सा भी प्रताड़ित कर रहा है, आपने एक बार अपने पेरेंट्स को बताया, 2 बार बताया, और पेरेंट्स की भी ये गलती है, जैसा कि कई जगह पे ये सामने आ रहा है और कई इन्फ्लुएंसर्स, कई सारे पॉलिटिशियंस और कई सारे न्यूज़ चैनल पे भी ये बात हो रही है कि जैसा कि त्रिशा शर्मा के केस में आया कि उनके चैट में आया कि वो अपने पेरेंट्स को बता रही हैं कि मैं यहाँ पे नहीं सुख से रह पा रही हूँ। और जब भी आपके बच्चियाँ या आपके घर वाले आपको ये साइन दे रहे हों कि सामने वाला उसके साथ बहुत गलत कर रहा है, तो कोशिश करें कि अपने बच्चे को अपने पास वापस ले आए। आपने सिर्फ कन्यादान किया है, पिंडदान नहीं, और सोसाइटी के पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है कि ये 4 लोग क्या कहेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि 4 लोग, अगर माँ बाप ये सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी मानसिकता यही है तो उन 4 में से 2 लोग तो आप खुद हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी कि देखिए हम हमेशा बात करते हैं ना कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, सोसाइटी वैसी होनी चाहिए, समाज स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये समाज जो बना हुआ है, ये जो भी रिचुअल्स बने हुए हैं, वो हमसे बने हुए हैं। समाज हमसे बनता है, और कहा जाता है ना कि अपना सुधार जग का सुधार। अगर एक घर से एक व्यक्ति, एक लड़का पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड आज के जमाने का, और वो डिसाइड करता है कि मैं दहेज नहीं लूंगा और ना अपनी फैमिली को लेने दूंगा, तो ये एक चेंज है शुरुआत हमेशा एक घर से ही होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि गांधी जी अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए और इतना ज्यादा मतलब उनके साथ जुड़े कि वो देश को आजाद तक कराने में कामयाब रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो कहीं ना कहीं सबसे पहले खुद को सुधारिए।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये दिन मुझे लगा कि ये चीज को ज्यादा आपको बताना चाहिए, क्योंकि आज एक तो वुमेन सेंट्रिक डे है हमारा, हम इसी पे प्रोग्राम करते हैं और ये हमें जानना पड़ेगा कि, और ये लड़कियों की भी जिम्मेदारी है कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। अगर आपको आपको ये सेंस हो रहा है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, चाहे वो आपके घर वाले हो, पति हो, भाई हो या कोई भी इंसान हो, तो आप सबसे पहले कानून का सहारा लें, अपनों को बताएं जो आपके भरोसेमंद इंसान हो, और अपनी सेफ्टी आपके हाथ में। अगर घर वाले आपको नहीं भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी आप एटलीस्ट गवर्नमेंट का सहारा ले सकती हैं। काफ़ी सारी ऐसी NGOs चलते हैं जो हेल्प करते हैं, पुलिस आपके लिए आपकी मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। और इन सब मामले के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि सुसाइड एक कोई ऑप्शन नहीं होता है, और मुझे ये लगता है और कई लोग ये भी समझते होंगे कि सुसाइड सबसे लीस्ट ऑप्शन होता है, सबसे मतलब कह सकते हैं आपके लिए यहाँ आपको देखना ही नहीं कि सुसाइड आपको करना है, सुसाइड की तरफ आप सोच के नहीं, बल्कि उससे पहले ही कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी की। देखिए सुसाइड वाकई में किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता है। देखिए जब भी अच्छा हम ये सोचते हैं कि चलो यार बहुत प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि चलो सुसाइड कर लेते हैं, आपने कर लिया आप तो चले गए, पर आप अपने पीछे जिनको छोड़ गए, आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा, वो कैसे जिएंगे? एक बार उनके बारे में सोचें, क्योंकि हमारी लाइफ पे हमारा हक नहीं होता है, हम कहीं ना कहीं अपने अपनों के लिए जी रहे हैं, तो उनका हक सबसे पहला होता है हमारे ऊपर, हमारा उसके बाद होता है। हम अपने अपने साथ कुछ भी करने से पहले, यहाँ तक कि खुद को एक खरोच पहुँचाने से पहले भी ये सोचिए कि उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उस पिता के दिल पे क्या बीतेगी जो मन में ये इच्छा रखता है कि हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। हर किसी के मन में ये चीजें होती हैं।
1: तो बिल्कुल देखिए, अगर इन सब मामले में अगर आप अपने घर वाले का भी, मान लीजिए कोई घर से ही प्रताड़ित हो, तो भी मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि भाई आपकी जो लाइफ है वो आपकी है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप किसी पे भी यकीन कर रहे हो, भगवान अल्लाह या किसी पे भी, अगर ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी है तो आपको खुद को दी है, ना कि आपके घर वालों में, आपको दोस्तों में, आपके सब में किसी का हिस्सा नहीं, आपकी ज़िंदगी आपकी है। लेकिन ज़िंदगी से ये हार मान के सुसाइड करना कोई एक ऑप्शन नहीं होता। अभी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें देखने की बाकी है, और ये तो बहुत छोटी मोटी समस्या है, और एज अ वुमेन आपके लिए ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी होनी चाहिए। अपनी करियर पर फोकस करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें और ज़िंदगी को सुखद बनाएं।
0: बिल्कुल, ज़िंदगी को सुखद बनाएं। और आज ये बताने का मोटिव हमारा जो था वो सिर्फ इतना ही था कि न्यूज़ में आए दिन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि लड़की थी इतने, मतलब अभी जल्दी एक लड़की का न्यूज़ में आया था कि उसने सुसाइड कर लिया, और उसकी उम्र बहुत कम थी, सिर्फ 16 साल की उम्र थी। तो सोचिए 16 साल की उम्र में आप सुसाइड कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक हम देखें। जैसे हम कहते हैं ना कि यूथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी आने वाली लाइफ के लिए, तो कहीं ना कहीं इन यूथ्स को ये भी होना चाहिए कि इतनी जल्दी आप अपने विल पावर को नहीं हार सकते हैं, लड़िए, क्योंकि जो लड़ते हैं वो जीतते हैं।
1: बिल्कुल। चलिए फिलहाल इन सभी को थोड़ा सा साइड रखते हैं, हालांकि ये बहुत जरूरी है, पर क्योंकि हमारी शो की थीम है दोस्तों से बात करना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था, इसीलिए हमने इसको रखा। और आप भी जरूर से आगे चैट बॉक्स में अपनी राय रखें कि इन सब विषय के मामले में आपका आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार है, इस पर जरूर से आगे चैट बॉक्स में रखें। और साथ ही साथ चलते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। अब देखिए अंशिका, एक मुद्दा को, इस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक बहुत बेहतर चीज़ है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी जो कि एक रियल स्टोरी है।
0: बिल्कुल सुनाइए।
1: देखिए एक मेरे गांव में एक लोग थे
0: जी,
1: उन्होंने जस्ट छोटी सी बात पे कि उनकी जो बहू है उनका करती नहीं है, उनको खाना टाइम पे नहीं देती है, और उनका ये मन था कि उन्हें 56 भोग मिले, पर उनके बेटे की इतनी कमाई नहीं थी कि वो उन्हें बस जैसे वो रहते थे वैसे ही वो अपने पिता को भी रखते थे
0: जी।
1: तो वो इन चीजों के लिए वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए। अब आपको मैं बता दूं, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट तो किया, उन्होंने जो है अपने घर पे रखा एक पदार्थ लिया और उसको खा लिया
0: जी।
1: और उन्होंने सोचा कि अब तो लाइफ ख़त्म हो गई, अब तो ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो खाने के बाद वो जस्ट बेहोश हुए थे और उस केमिकल ने उनकी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स को फेल कर दिया था और उसके बाद एक हंसता खेलता चलता कूदता इंसान बेड पे लेट गया। जिंदा बच गए लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि मरते दम तक वो इंसान बेड पे ही था। और इस जो है इस कदम से ना तो सिर्फ उनकी खुद की प्रॉब्लम बढ़ी बल्कि उनके घर वालों की भी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो याद रखें कि हमेशा जो आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही हो। तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखें, हट्टा कट्टा रखें, और ये कोई ऑप्शन नहीं होता है।
0: बिल्कुल, हार जाना कोई ऑप्शन नहीं होता है। कहते हैं ना कि जब नदी में उतरोगे तो तैरना खुद ब खुद आ जाएगा। जब कोई बच्चा तैरना नहीं जानता है और उसे सीखना होता है तो हम उससे कहते हैं कि बेटा पानी में जाओ पहले। अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में कूदना होगा, बिना कूदे बाहर से हम कैसे जानेंगे कि कितनी गहराई है। और जहाँ तक हम जब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कि सुसाइड करने को बहुत आसान समझते हैं लोग, कि अरे यार कुछ कर लिया और मतलब लोगों को लगता है लाइफ ख़त्म तो प्रॉब्लम ख़त्म, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ वहाँ ख़त्म हो गई, आप अपने पीछे अपनी फैमिली को कितनी तकलीफ में छोड़ कर जा रहे हैं वो आपको क्या मालूम। तो इसलिए हमेशा लाइफ से जीना सीखिए, बहुत कुछ है। अच्छा ठीक है, हम एक्सपेंसिव हमारे पास जूते नहीं होते, कपड़े नहीं होते, चीज़ें नहीं होती हैं तो हम उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं कि यार मेरे पास एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं, या ज़रूरत की चीज़ें जो हमें डेली यूज़ में चाहिए कई बार नहीं हमें मिल पाती हैं कुछ कंडीशन की वजह से। तो आपके पैर में जूते नहीं हैं, आप उनके बारे में सोचिए जिनको पैर ही नहीं है। आपके पास आप मान लीजिए बहुत आप दिक्कत में हैं, आप ये सोचिए उनके बारे में सोचिए जिनको कि सर पे छत तक नहीं होती है लेकिन फिर भी वो जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो हारते नहीं हैं। इसलिए हमेशा आपके पास जो है जितना है, हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी मैं, हाँ प्रॉब्लम लाइफ में होती है लेकिन कोई भी प्रॉब्लम लाइफ से बड़ी नहीं होती है।
1: बिल्कुल, और हमारी लाइफ भाई, अपनी लाइफ चाहे जैसी है उसको बनाए बिल्कुल माउंटेन ड्यू की तरह, कि भाई डर के आगे जीत है। तो चलिए इसी हैप्पी नोट के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज आरजे अंशिका क्या लाई है। भाई मैं भी बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ लेकिन पहले अंशिका से निकलवाते हैं।
0: अच्छा तो निकलवाते हैं, तो चलिए निकालते हैं। और जो सबसे पहली चीज़ मैं निकालने जा रही हूँ वो है पोइट्री, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग सेगमेंट जो होता है वो पोइट्री का ही होता है। लेकिन आज ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन्हें आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए आप पोइट्री को पढ़ते हैं और इस पोइट्री के बाद हम एक प्यारा सा सॉन्ग सुनेंगे और फिर आपसे मिलने आएंगे। लेकिन पहले आइए ये पोयम सुनते हैं और आप सभी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तुम केवल कोमल नहीं, सृष्टि का सुंदर आधार हो, मुश्किल राहों में जो ना रुके तुम वो अदम्य साहस हो, घर की चौखट से अंबर तक हर रूप तुम्हारा पावन है, ममता की शीतल छांव हो तुम, तुमसे ही महकता घर आंगन है, सपनों का को पंख लगा कर तुम अब ऊंची उड़ान भरती हो, हिम्मत और अपनी मेहनत से जग का कल्याण करती हो, तुम प्रेम त्याग की मूरत हो, स्वाभिमान की वो ज्वाला हो, पहचान तुम्हारी खुद से है, तुम इस जग का उजाला हो।
1: वाह भाई, क्या आपने लाइंस बोली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ी लाइन है कि तुम ही जग का उजाला हो। अपना कह सकते हैं कि हमारे उसमें जो है महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है।
0: बिल्कुल भी कम नहीं है।
1: जहां आज हमारे भारत देश में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने संविधान संभाल रखा है, जो स्पेस तक गई हैं, जो आज मेडिकल फील्ड में हैं, इवन हमारे आर्मी में भी जो है वो अपना योगदान दे रही हैं, हमारे बॉर्डर पे वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो करती हैं हमारे हित के लिए, हम इंडियंस के लिए। और वहीं कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा समाज के चक्कर में या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परिस्थितियों को सोच के अपने आप को दबा ले जाती है। लेकिन मैं यही कहूँगी भाई, हम इतने स्ट्रांग हैं। आप इतना जानिए कि जहाँ एक पुरुष के बिना ये जो है हमारे, देखिए हमारे सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि जो महिलाएं होती थीं, जो देवियां होती थीं, वो हमेशा देवों से श्रेष्ठ होती थीं।
0: बिल्कुल।
1: और जो महिलाएं होती हैं वो आज भी उतना ही सम्मानित हैं जितना पहले हुआ करती थी, जितना देवियों की जो है कह सकते हैं इनकी रिस्पेक्ट होती थी, उनकी पावर होती थी, वो बस आज भी है। लेकिन आपको याद होगा एक कहानी अंशिका कि जब माता सती जो हैं, जो माता पार्वती बाद में जो है उनका पुनर्जन्म हुआ, उनको उनकी पावर नहीं पता थी। वो हमेशा ये सोचती थी कि शिव तो एक देव है, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ उनसे शादी। और शादी जब हो गई उनकी, क्योंकि उनका तो लगाव था, उनका प्रेम था, उनका संबंध था उनसे, उसके बाद जब वो उनकी पत्नी बन गई, उनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी बन गई, उसके बाद भी जब उन्हें इनके मन में ये चीज़ हमेशा खटकती रहती थी कि मैं मनुष्य और मेरे हस्बैंड जो है, मेरे पति जो है, वो एक देवता है, तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम स्त्री हो, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, बस तुम अभी अपने आप को कम इसलिए आंक रही हो क्योंकि तुम्हें अभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ है कि तुम हो कौन। तो अपने अंदर के पावर को हमें भी पहचानना चाहिए और अपने अंदर की शक्ति को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने सुना होगा लिसनर्स और सभी सुनते आते हैं कि जब भी कोई भजन होता है और उसमें हमेशा कहा जाता है प्रभु श्री राम, कभी केवल राम नहीं कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है प्रभु श्री राम। तो इस राम में जो श्री लगा है वो श्री यानी कि लक्ष्मी माता और लक्ष्मी यानी कि सीता माता का रूप। आपने देखा होगा कि जब भी कहा जाता है तो हमेशा कभी कृष्ण और राधा कहते हुए आपने किसी बहुत कम सुना होगा, हमेशा राधा कृष्ण कहते हैं। कृष्ण से पहले राधा का नाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि हमेशा से ये बात चली आ रही है कि जो महिलाएं हैं उन्हें एक पूरा मतलब कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट, वो प्यार एक युग से मिलता आ रहा है और ज़रूरी है आज भी हमारे लिए कि हम उस रिस्पेक्ट को, उस प्यार को बनाए रखें। तो आज का हमारे, आपने अभी पोयम सुनी और पोयम के साथ में जैसा कि हम रोज़ आपको एक रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी बताते हैं, वो अभी अभी आयुषी ने आपको बताया कि अपने अंदर की पावर को हमेशा फील करना चाहिए और जब वक्त आए तो उसे जगाना भी।
1: और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ अंशिका, जैसे अभी आपने श्री राम की बात की, सिया राम की बात की, लेकिन आपको पता है आज कई सारे जो पुरुष हैं, हमारे जो मित्र हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे भैया आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है आज, आज सिर्फ महिलाओं के लिए। लेकिन आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें, आपने ये नोटिस तो किया होगा कि भाई सिया राम है, श्री राम है, राधा कृष्ण है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है अंशिका कि शिव शक्ति शंकर पार्वती क्यों है, पार्वती शिव के पीछे क्यों आती है?
0: क्यों?
1: क्योंकि शिव ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से पार्वती उनके समर्थन में हमेशा रहती हैं, उनको हमेशा आगे रखती हैं। आपको पता है क्या?
0: क्या?
1: सभी देवों ने अपनी जो पत्नी है, अपनी अर्धांगिनी है, उनको अपने साथ रखा है, अपने बराबर का दर्जा दिया है, लेकिन एक अकेले शिव ही ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं को अपनी जो स्पेशली अपनी जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी पत्नी थी माता पार्वती, उनको ना तो सिर्फ एक अपनी इन अंदर की जो पावर है उसे मतलब आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने हमेशा पार्वती माता को अपने से आगे रखा। इसीलिए जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए एक

भी अपने घर की महिलाओं को वही सम्मान दे। तो चलिए, आई थिंक बातें बहुत हो गई हैं आयुषी, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, और बातें करेंगे, और आज टॉपिक्स भी हैं हमारे पास, उन पर हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग कर रहा है इंतज़ार, तो मैं तो कहती हूँ चलिए सुन लेते हैं और आते हैं सॉन्ग के उस पार आपसे बातें करने के लिए। आप भी हमारा इंतज़ार करें।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। 88403395 84। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM,
2: 89.6 FM,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
3: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आज की होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम सुन सहेली, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए। भाई महिलाएं जो कि घर की कह सकते हैं मान मर्यादा, घर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली और इस पूरे देश को चलाने तक का काम हमारी महिलाओं के कंधे पे है। मुझे लगता है कि हम महिलाओं को हर दिन एक
5: बिल्कुल सही कह रही थी आयुषी कि कहीं ना कहीं देश को चलाने तक का काम महिलाओं पे होता है,
4: और मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन जो है शोल्डर मसाज जो है ज़रूर मिलनी चाहिए। भाई हमारे कंधों पे इतना सारा काम होता है सुबह से, देखिए हमारी मम्मी को आप देखिए कि सुबह से जो है उठते ही काम शुरू हो जाता है और रात में सोते तक का एक काम होता है, बल्कि वो अगले दिन की प्लानिंग करके सोती हैं। और वहीं अगर हम एक ऐसी महिला जो संविधान में बैठ के पूरा देश चला रही हो, उसकी कंधों पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों का हाथ मजबूत होता है लेकिन महिलाओं के कंधे ज़्यादा मजबूत होते हैं।
5: ये तो बात कहीं ना कहीं तक हम इत्तेफाक रख सकते हैं इससे कि वाकई घर की जो महिलाएं होती हैं भाई, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियों को फेस करना होता है, बहुत कुछ उनके छोटे से दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। और एक दिन अगर आपके घर में मम्मी ना हो या कोई फीमेल ना हो तो समझ में आता है कि घर की हालत क्या होती है।
4: अगर घर की महिलाएं जो होती हैं वो अगर अपने मायके चली जाएं, कहीं घूमने चली जाएं और घर में सिर्फ और सिर्फ पुरुष रह रहे हों, तो आप यकीन माने मेरा हर तीसरे या चौथे दिन आप जो है देखेंगे कि वो पूरा घर एक भूत बंगले में तब्दील हो चुका है।
5: ये बात तो कन्फर्म है और ये मतलब मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ये होते हुए देखा है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि वाकई में जब महिलाएं घर में नहीं होती हैं तो जो हाल किचन का होता है, बेडरूम का होता है और मतलब पूरे घर का होता है, फिर ये लगता है कि अभी अभी इसमें चोरी हुई है।
4: बिल्कुल। अब देखिए पहले के ज़माने में कहते थे कि जो पुरुष होता है वो हमेशा एक प्रोवाइडर होता है, वो देता है, वो आपके लिए कमा के लाएगा, आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, और जो महिला होती है उसको घर का काम होता है, आप घर को देखो, बच्चों को देखो, अच्छी परवरिश दो और यही सारा काम करो। इन शॉर्ट आपको एक पूरा होम मैनेजर बना के रख दिया जाता है। लेकिन आज के युग में भाई इसका पूरा उल्टा हो रखा है। आजकल की महिलाएं कमा भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, घर भी देख रही हैं और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि हम महिलाओं को कुछ ऐसी खासा ज़रूरत है नहीं आदमियों की।
5: ज़रूरत तो मुझे लगता है कि हाँ किस लेकिन नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर घर के मेल जो होते हैं वो फीमेल के लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे होते हैं, क्योंकि जब कभी ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है तो वो भी हेल्प करते हैं, वो भी बहुत काम आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि
4: देखिए आज हम महिलाओं की तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है विमेन सेंट्रिक डे। हम कह सकते हैं कि आज के दिन हम महिलाओं को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करें।
5: बिल्कुल मोटिवेशन तो देंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे मेल लिसनर्स को और जो भी हमें मेल्स सुन रहे हैं उन्हें नहीं देंगे मोटिवेशन।
4: हम मेल को एक आइडिया भी दे रहे हैं कि आप अपने घर की महिलाओं को और भी ज़्यादा मोटिवेट करें अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए, अगर वो नहीं भी पढ़ी हैं। देखिए पढ़ाई कमाना सिर्फ यही चीज़ काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना, निडर होके जीना, ये एक महिला के लिए, ये एक हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इनफैक्ट करियर बनाना और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे करवाने से बहुत आगे यही एक चीज़ होती है। तो पूरी समाज, पूरी दुनिया आपको डराएगी, दबाएगी, लेकिन आप क्योंकि उनके साथी हैं, उनके भाई हैं, उनके पिता हैं, तो आपको आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनके सपोर्ट में हमेशा रहें।
5: बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है ये सपोर्ट सिस्टम होना। तो आइए अब बात करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है जो कि महिलाओं के लिए है, ये तो हम बताएंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम हम बताने वाले हैं कई बार ये मेल में भी होती है। तो इसलिए भाई एक तीर से दो शिकार हैं और शिकार कोई नहीं है, मतलब टॉपिक एक ही है लेकिन उसके जो हम आपको चीज़ें बताएंगे वो दोनों तरफ हो सकती हैं, यानी मेल के लिए भी हो सकती हैं और फीमेल के लिए भी हो सकती हैं। तो फटाफट से आ जाइए और सुनिए कि आज हम क्या बताने वाले हैं।
4: लेकिन मैं एक बहुत ही स्पेशल इनविटेशन भी देना चाहूँगी हमारे मेल फ्रेंड्स को, क्योंकि भाई जो आज का विषय अब हम शुरू करने वाले हैं वो आपके लिए महिलाओं से ज़्यादा लाभदायी है। बताइए कैसे?
5: कैसे?
4: देखो, इमेजिन करो कि घर में एक बेटा है, चलो दो बेटे हैं, ठीक है,
5: अच्छा।
4: और एक पिता है और एक मम्मी है। अब अगर मम्मी का मूड घूमा तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी?
5: पापा को
4: होगी, बच्चों को होगी, क्योंकि अगर मम्मी गुस्सा होती हैं तो आपके जन्म से लेकर के अभी तक के जितने कांड हुए होंगे
5: सब गिना देती हैं।
4: और मम्मी एक ऐसी इंसान है जो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ दिमाग रखती है, उन्हें सब पूरी डिटेल में याद होता है कि आपने कब क्या कैसे कहा था क्या किया था। तो आपको ये जो है ये लिंक, ये जो आज का शो है वो और भी ज़्यादा डबल फोकस से सुनना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में मोस्टली झगड़े इस कारण होते हों, मोस्टली आपके बीच में बहस इस कारण हो और आप समझ नहीं पाते कि अचानक से ये कहाँ से तूफान आ गया। देखिए, महिलाओं के अंदर होता है एक झूला, पता है कैसा झूला?
5: कैसा झूला?
4: आपने कभी झूला को देखा है? जब आप उस पर झूलते हैं तो ये आगे पीछे आगे पीछे होता रहता है, ऐसे ही महिलाओं में मूड्स भी होते रहते हैं, यानी जो उनका मूड होता है वो भी आगे पीछे होता रहता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को या इस कंडीशन को हम कहते हैं मूड स्विंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे झूले की जो महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही होता है, स्पेशली जब उनके पीरियड्स आने वाले होते हैं।
5: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी, कि कहीं ना कहीं मूड स्विंग महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है और उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे पहला जो कारण है जैसा कि आयुषी ने भी आपको बता दिया कि किस वजह से होता है, और कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा, जैसे हम किसी को कहते हैं ना अरे उन्हें मूड स्विंग है, तो लोग इसे बहुत बड़ी चीज़ समझ लेते हैं, बट ये बहुत बड़ी एक चीज़ नहीं है, ये बस मूड का फेरबदल है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम बहुत खुश होते हैं और कुछ लोगों को देखा होगा कि अचानक खुश हैं फिर अचानक मूड बदल गया।
4: लेकिन दोस्तों याद रहे कि इन चीज़ों को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि अगर मूड स्विंग्स कम है हल्के हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये आपके लिए एक अलर्ट का साइन है कि आपको डॉक्टर से, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने की ज़रूरत है।
5: बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मूड स्विंग की अगर हम बात करें तो ये जब एक पर्टिकुलर वे में जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल बैलेंस को भी बिगाड़ सकता है। मेंटल बैलेंस को बिगाड़ने का मतलब होता है कि जब आपका मूड बार बार बदलता है, चेंज होता है, तो आप एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं, और हमारा एक जगह स्थिर रहना हमारे माइंड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी आपको मूड स्विंग लगे, मूड स्विंग का मतलब लोग हमेशा कहते हैं ये है क्या, तो सबसे पहले कि ये एक हार्मोनल चेंज की वजह से होता है, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन चीज़ों को, कभी भी अपने मूड को सीधी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम अपने मूड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे मूड स्विंग जो है वो कम हो जाती है। मूड स्विंग का मतलब सीधे सीधे आपके मूड का बदल जाना। मान लीजिए मैं अभी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, 10 मिनट बाद हो सकता है मुझे उदासी फील हो या गुस्सा फील हो अचानक से, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती हैं यही है मूड स्विंग, यानी कि आपके कहीं ना कहीं बिहेवियर का तुरंत बदल जाना, इसे ही हम मूड स्विंग कहते हैं।
4: और आपको मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं ये जो है एक कंडीशन है, लेकिन इसमें हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ ऐसे मेंटल काउंसलर हैं, सॉरी ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ ऐसे साइंस के जो ज्ञाता होते हैं जो पढ़ते हैं, वो उनका ही ये मानना है कि आजकल, देखिए आजकल हर एक एक इंसान एक चीज़ ज़रूर यूज़ करता है, और वो यूज़ करना एक नॉर्मल चीज़ भी है, वो है गानों का। हम अगर खाना बना रहे हैं हमें गाने चाहिए, हमें ईयरबड्स चाहिए, हमें सॉन्ग सुनना है, हमें, हम कुछ भी कर रहे हैं हमें गाने ही चाहिए। इनफैक्ट कुछ लोग तो गाने के इतने प्रेमी होते हैं कि नहाने जाना है तो भी उन्हें गाने ही चाहिए। तो हमारा ये गानों का सिलसिला वो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई ऐसे गाने सुन रहे हैं, आपको ऐसे गाने आपके प्लेलिस्ट में हैं जो अलग अलग मूड के हैं, और आप कुछ ही देर मतलब कुछ ही मिनटों के अंतराल में आपने अलग अलग मूड्स के गाने सुन लिए, और आप एक हाईली सेंसिटिव इंसान है जो बहुत ज़्यादा फील कर लेता है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लेता है या ओवर थिंकर है, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा घातक हो सकता है। क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट होती है जो अनऑर्गेनाइज्ड होती है, सही से लगी नहीं होती है, कभी आप बहुत दुखी वाला गाना सुन रहे हैं, अगला गाना बिल्कुल पार्टी सॉन्ग होगा, उसका अगला गाना शादी ब्याह का होगा, उसके अगला गाना बच्चों का होगा, तो ये आपके मूड पे बहुत बुरा असर डालता है। आपके जो बॉडी के केमिकल्स होते हैं वो मतलब बहुत ही अजीब तरीके से कभी कुछ रिलीज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं।
5: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर मूड स्विंग हो रहा है, अगर नॉर्मली हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, अपनी केयर करें, क्योंकि केयर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो आइए लिसनर्स चैट बॉक्स में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से मित्र हैं या फिर सहेलियां हैं जिन्होंने अपनी एंट्री अपनी एंट्री जो है वो दर्ज करा ली है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हमारी बहुत ही प्यारी सी सहेली आ चुकी है, जो कि है अनुष्का जी, जो कि हमें श्रावस्ती से सुनती हैं और लिख रही हैं गुड आफ्टरनून दोनों आरजे मैम को। गुड आफ्टरनून आपको भी, कैसी हैं आप? और कमल नैन जी आ चुके हैं, लिखते हैं शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया आपको भी कमल नैन जी, और लिख रहे हैं इसलिए तो महिलाओं का नाम सबसे आगे आता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ में कमल नैन जी ने ये भी लिखा है कि जैसे कि भगवान में सबसे पहले नाम देवियों का आता है, जैसे सीता राम और राधा कृष्ण। बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाई देखिए, देवी देवताओं की बात करें या हम नॉर्मल इंसान की बात करें, बस बात होती है एक रिस्पेक्ट देने की। तो चलिए लिसनर्स, चलते हैं इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे, और बस यूं गए यूं आए नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, मतलब ये सॉन्ग तो हमारे चैट बॉक्स में बिल्कुल छा गया है। उसी सभी को इस सॉन्ग पे ही डिस्कस करना है और बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं और बहुत सारी महीनों ने मस्ती भरी बातें भी की हैं। तो चलिए जानते हैं कि सॉन्ग के पीछे की कहानी क्या। आपको जानना है?
5: बताइए।
4: क्योंकि गीता जी ने बहुत प्यारी सी एक लिखी है, वो मैं पढ़ती हूँ। और साथ ही साथ में दरक्षा जी भी आ चुकी हैं जो कि लिखती हैं, गुड आफ्टरनून डियर मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी दरक्षा। और गीता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, शुभ दोपहरिया दोनों आरजे मैम को, शुभ दोपहरिया आपको भी। और साथ ही लिख रही हैं, मैं सुन रही हूँ आप दोनों को और घर का काम भी कर रही हूँ, गाने अच्छे सुना रही हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू आपको भी गीता जी। और साथ में लिख रही हैं, मैम इस गाने से जुड़ी एक घटना बताती हूँ। जब हम टीवी पर चित्रहार में ये सॉन्ग सुनते थे तो सोचते थे ये तो जवान हैं, फिर ये क्यों गा रहे हैं। फिर मूवी देखी तब जाना कि ये बचपन में ये सॉन्ग गा रहे होते हैं।
5: हमारी गीता जी देखिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है, ये पता चल गया उनके इसी ऑब्जर्विंग स्किल से कि भाई इस वीडियो में जो इस गाने का ऑफिशियल वीडियो है उसमें तो ये दोनों यंग ही लग रहे थे। देखिए पहले के ज़माने में जो यंग एज थी, आपने वो वाला गाना सुना होगा जिसमें जो है रेखा जी का एक गाना है जिसमें वो 16 बरस की बताती हैं अपने आप को, लेकिन एक्चुअल में ये वो उस वीडियो में किसी 20 से 25 साल की महिला जो है वो लग रही होती है। लेकिन पहले के ज़माने में जो बाली उम्र होती है जिसे हम कहते हैं, जैसे 16 साल हो गई, 17 साल हो गई, 17 बरस सॉरी ऐसी काफ़ी सारी, मुझे गाने एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बट ये 16-17 जो है पहले के ज़माने के गाने देखें तो वो और छोटी उम्र को ग्लोरीफाई करते थे। जैसे माली अवस्थी का एक गाना है, 12 बरस की मैं गौने पे आई, है ना, तो वो पहले 12 बरस को पहले बहुत ज़्यादा मानने लग गए। फिर हम बॉलीवुड की तरफ उतरे तो 16 बरस 17 बरस और न जाने कैसे अब आ गए हैं हम लोग नए यंग एज में जहाँ हम 21 और 22 की उम्र को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं।
4: बिल्कुल। तो चलिए भाई, बहुत ही प्यारा मैसेज था गीता जी, थैंक यू। और इसी के साथ नागेश्वर जी ने लिख रहा है, गुड आफ्टरनून अंशिका मैम, नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आयुषी आपको भी लिख रहे हैं।
5: नमस्कार नागेश्वर जी, और हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि भाई आज का जो प्रोग्राम है वो वुमेन सेंट्रिक तो है ही है, लेकिन मैं बता दूं कि जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो हम उनके हेल्थ को कैसे भूल जाएं। अभी हमने मेंटल हेल्थ की बात की, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उनके और फिजिकल हेल्थ के बारे में।
4: फिजिकल हेल्थ के बारे में आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं हम, वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है, तो ये महिलाओं में एक ऐसी फिजिकल हम कह लें कि बीमारी है, कि क्या होता है ना कि लंबे समय तक अगर आपको ब्लड शुगर है और वो अगर कंट्रोल नहीं रहता है तो उसकी वजह से आपकी नसों में खिंचाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे खून में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी में अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, यानी अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे डायबिटिक न्यूरोपैथी बन जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं महिलाओं को हो जो कि डायबिटिक हैं, ये कई बार उन्हें भी होता है जिनकी बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा होता है। शुगर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, या आपने किसी किसी को देखा होगा कि बेकार में ही चीनी खाते हैं। मतलब मैंने तो महिलाओं को क्या पुरुषों को भी देखा है कि वही चीनी खाते हैं, मतलब कोई उसकी नीड नहीं है लेकिन फिर भी। तो हमें अपनी बॉडी में शुगर को कम लेना चाहिए। कुछ इसके सिम्टम्स भी बताना चाहूँगी कि कैसे आप जान सकते हैं स्पेशली महिलाएं कि उन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है, या फिर ये कि उनकी बॉडी में शुगर की जो एक क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले है कि आपके पैर के तलवे में और हाथों में कुछ महसूस ना होना, या फिर अचानक से जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना टांस लग रही है, अचानक से झुनझुनाहट होने लगती है, पैर में दर्द होने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बॉडी में शुगर की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा हो गई है। दूसरा आता है कि तेज़ दर्द हो आपको, अगर आपकी मांसपेशियों में, नसों में, यानी कि गर्दन पे, कमर पे आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से हो सकता है। साथ आता है कि हमारे पैर की मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना। पैर की मांसपेशियों का कमज़ोर होने का मतलब होता है कि बहुत लोगों को आपने शिकायत करते हुए सुना होगा कि पैर की पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, वो कब होता है? वो तभी होता है जब डायबिटिक न्यूरोपैथी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपको ये बार बार अगर आप इसको इग्नोर करते रहेंगे ना तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है।
5: अंशिका एक बात बताओ, एक ना एक दिन तो हमें मर ही जाना है।
4: हाँ,
5: और हमारी जो जुबान है जो बड़ी चटोरी है, अगर हम उसे उसके चटोरेपन का फल नहीं देंगे और उसे अच्छे अच्छे खाने नहीं देंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं है। एक ही ज़िंदगी है, उसमें भी हम कुछ खाएं पिए ना, एक दिन मर ही जाना है। यही सब शायद हमारे लिसनर्स सोचते हैं और इन सारी बीमारियों को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जो और भी ज़्यादा स्थिति जब बिगड़ जाती है तब होती है। यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपने अपने एक देखभाल नहीं की, या कोई भी बड़ी बीमारी है और आप उसका देख रेख नहीं सही से करते हैं तो फिर आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
4: बिल्कुल, कई बार आपने देखा होगा किसी किसी को, मतलब मैंने तो देखा है, अपने सामने देखा है कि अगर जैसे किसी के घर आधा किलो अगर मिठाई का डिब्बा आया है
5: जी,
4: तो कुछ लोग मीठे के इतने शौकीन होते हैं कि जब तक वो आधा किलो खत्म नहीं हो जाता तब तक वो फ्रिज खुलता रहे।
5: लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है।
4: और वो कौन सा लॉजिक है?
5: देखो, मुफ्त की चीजों का ना स्वाद बहुत बड़ा होता है।
4: अब ये क्या बात है, मतलब
5: खुद की खरीदी हुई मिठाई जो होती है वो उतनी स्वाद वाली नहीं होती है जितनी ही अगर आपको मुफ्त में कोई आपका रिलेटिव हो या कोई मिलने आ गया हो तब मिल जाए। आप नोटिस करिए कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जब हमें खुद खरीद के खाना होता है, मान लीजिए आपको चाउमीन बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, आपने खाना होता है खरीद के, तो आप कहते हैं भैया हाफ प्लेट ही चलेगा, हाफ का भी हाफ कर दीजिए, शायद 30 से 15 रुपए की हो जाए। लेकिन जब आप कहीं पार्टी में जाते हैं जहाँ आपको मुफ्त का मिल रहा होता है तो भैया हमारा फुल डिनर यही होना है, होता नहीं है ऐसा? और ऐसा होता सभी के साथ होता है कि हम लोग पहले स्नैक्स को ही डिनर के रूप में खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर वेट करते हैं कि वो खाना थोड़ा सा पच जाए तब हम मेन कोर्स की तरफ बढ़ें क्योंकि हमें मुफ्त का मिल रहा होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप चाहे शादी में हो, पार्टी में हो, घर पे हो, या मुफ्त का मिल रहा हो या खुद खरीद के खा रहे हो, हमेशा अपनी डाइट का फुल ध्यान रखें। ज़्यादा बाहर का तला भुना बिल्कुल ना खाएं, खुला ना खाएं, और साथ ही साथ अपनी देखभाल के लिए हमेशा जो है अग्रसर रहें।
4: बिल्कुल, अगर बात करें इसकी जो कि मैंने अभी आपको बताई कि डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर महिलाओं में बढ़ती है तो इसका खतरा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये सीधा आपके नसों को डैमेज करती है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी चाय में और अपनी डाइट में आप जो भी मीठा लेते हैं ना उसे थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा उससे परहेज करिए और बाकी आप खा सकते हैं वैसे कोई बड़ी बात।
5: ये मैं आपको बता दूँ, डायबिटीज पेशेंट की जब बात हो रही है तो मेरे घर में मेरे पापा भी डायबिटीज पेशेंट हैं। तो क्या होता है कि जो इंसान को ये बोल दिया जाता है ना कि आपको नहीं खाना, अब उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि मुझे तो पक्का है खाना। क्योंकि मैंने अपने पापा खुद देखा रहता है, वो खुद बेचारे बोलते भी हैं कि मेरे सामने मिठाई ना लाओ। लेकिन अगर उन्हें दिख जाए मिठाई तो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, या तो दो ही ऑप्शन है, या तो वो खुद खा के ख़त्म कर देंगे या तो उनके सामने ना आए और दूसरा बंदा खा के ख़त्म कर दे उनके घर आने से पहले। तो इसी जंग में कहीं ना कहीं कभी वो जीत जाते हैं कभी हम जीत जाते हैं। लेकिन स्वाद जो है, देखिए इन सभी छोटी मोटी नोक झोंक से, छोटी मोटी चीज़ों से घर में प्यार तो बढ़ता है, लेकिन हम प्यार से आगे एक चीज़ को रखते हैं, वो है हमारी सेहत।
4: बिल्कुल, सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए प्यार की बात अपनी है, लेकिन अगर किसी को, जैसे मैं अपनी बात ही करूँ, अपने को ही लूँ, तो मेरी बीपी हाई हो जाती है। आज ज़्यादा नमक खाते हैं तो बीपी हाई हो जाती है, कभी कभी मतलब तबीयत खराब रहती है, तो इसलिए मैं नमक से थोड़ा सा परहेज करती हूँ, मतलब हल्का नमक खाती हूँ। तो कभी किसी के यहाँ जाते हैं, जैसे मामी के यहाँ चले गए, कहीं भी चले गए, तो उन लोगों को मालूम है कि वो हल्का नमक खाती हैं, तो वो मुझे हल्का ही देती हैं, क्योंकि हमसे कहती हैं पहले तुम्हारे लिए निकाल दिया है मैंने। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना ही कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो मीठी नोक झोंक रखें अपने रिश्ते में, लेकिन उसका ख्याल भी रखें, क्योंकि अपनी सेहत को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर है तो ही स्वस्थ मन है, तो अपने शरीर को स्वस्थ ज़रूर रखिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि मैं तो कहती हूँ वर्कआउट करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह टहलने निकल जाएं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब हम सुबह की जो एक सैर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से कहीं ना कहीं आपको बहुत आपकी हेल्थ को बेनिफिट देती है। तो अब हमारा टाइम जो है वो भागा जा रहा है आयुषी, क्योंकि 2:52 हो गया है।
5: ओहो, यानी कि सुन सहेली से जाने का वक्त आ रहा है।
4: हाँ, जाने का वक्त तो आ रहा है और हमें जाना भी पड़ेगा।
5: चलिए कोई बात नहीं, हम जाएंगे, लेकिन भाई एंटरटेनमेंट का डोज कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आपने ट्यून किया हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, और भाई यहाँ पे एंटरटेनमेंट कभी नहीं खत्म होता है ना अंशिका?
4: बिल्कुल खत्म नहीं होगा, और अभी तो सिर्फ 2:52 हुए हैं, अभी हमारे पास 5 से 6 मिनट आपके लिए है। ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब बारी आती है कि देखिए हमने बहुत सारे टॉपिक बता दिए, काफी सारा ज्ञान भी दे दिया हमने,
5: बहुत सारा,
4: लेकिन एक चीज है जो अभी भी हमारे पास बाकी है।
5: क्या
4: है वो? अरे भाई मोटिवेशन, थोड़ा मोटिवेशन
5: अच्छा,
4: भी देकर जाते हैं।
5: मोटिवेशन तो देखिए, अगर हम बात महिलाओं की कर रहे हैं तो महिला के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन मैं बताऊँ क्या है?
4: क्या है?
5: कि आप एक स्त्री है और ये आप जाने कि आपको हमेशा से ऑन द टॉप रखा गया है, चाहे वो अगर हम बात कर रहे थे शिव शक्ति के बारे में और कई सारे भगवान के बारे में, अगर हम बात करें इस धरती लोक की, तो आपने रानी लक्ष्मीबाई को जाना, रानी पद्मावती को जाना, और कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एक वीरता का एक तरीके से निशानी बन गई हमारे लिए। हम उनको देखते हैं आज भी, जब भी हम चित्तौड़गढ़ जाते हैं या फिर हम ऐसे जगह जाते हैं जहाँ राजा महाराजाओं का राज है, वहाँ पे रानी की वीरता की कहानी राजा से ज्यादा होती है।
4: बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें झांसी की रानी की, तो उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं जाने दूंगी।
5: बिल्कुल,
4: और वो उन्होंने उस चीज को बिल्कुल करके दिखाया।
5: और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि भाई महिलाओं के लिए सिर्फ हम ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं कि आपको भगवान और रानियों की कहानी सुना रहे हो। आजकल के युग में महिला का सशक्त होना, महिला का इंडिपेंडेंट होना, महिला का आगे बढ़ना, अपने करियर में कुछ करना एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर कोई किसी को बचा सकता है तो वो ना आपके माँ बाप है, ना आपका भाई है, ना आपका पति है, ना कोई है, सिर्फ और सिर्फ आप खुद और आपकी एजुकेशन है, यानी कि आपकी शिक्षा है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, सशक्त नहीं हैं, आप अपने जो है अपने इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी, क्योंकि हम देखिए जब हम इंडिपेंडेंट नहीं होते, किसी पे डिपेंडेंट होते हैं ना, उसके 4 गालियां भी हमें खानी होती है, हम सोचते हैं कि बस चुपचाप सुन लें, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप किसी भी प्रकार का जुल्म नहीं सहेंगी और अपने लिए हमेशा स्टैंड लेंगी।
4: बिल्कुल, देखिए इंडिपेंडेंस को जब भी हम जोड़ते हैं कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक महिला को, तो वो सिर्फ ये पॉइंट नहीं होता है कि आप कमाएं, आपके पास पैसे होने चाहिए। जब हम कहीं जॉब करते हैं या कमाते हैं और हमारे पास हमारी फिक्स सैलरी आती है, तो वो आपको किसी से खर्च करने से पहले पूछना नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि एक देखिए एक फीमेल के लिए रिस्पेक्ट की भी बात होती है कि जब आप अर्न करके अपने घर में दे रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक आपकी रिस्पेक्ट का वो बनता है कि अरे नहीं, आपके माँ बाप ही कहते हैं अरे नहीं मेरी बेटी बहुत मेहनती है, वो तो काम भी करती है और देखो घर भी संभालती है। कहीं आप जाते हैं तो लोग बड़े फक्र से कहते हैं अरे नहीं भाई मेरी बहू तो वहाँ काम करती है। तो देखिए एक काम करने की अगर हम बात करें, अपने करियर बनाने की बात करें, तो वो सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होता है, वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी देता है, एक आपको आपकी फैमिली में एक सुरक्षित कहीं ना कहीं वातावरण भी देता है, और एक लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कुछ थोड़ा ही सही बट अपने लिए अर्न ज़रूर करे, क्योंकि वो बात होती है उसकी रिस्पेक्ट की, उसके स्वाभिमान की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
5: बिल्कुल, और साथ ही साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जो महिलाएं ऐसी हैं, जैसे हमारे घर की मम्मियाँ हो गईं और भी सारी महिलाएं जो होती हैं, जो अपने से पहले अपने घर वालों को रख दें। देखिए, एक जो है महिला जो होती है वो हमेशा पहले भी करती आई है और अभी भी, क्योंकि उसके अंदर ये जो फेमिनिज्म है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहता है, और माँ को, माँ के अंदर या फिर जो कहें स्त्री के अंदर एक ममता का जो एक रूप होता है वो हमेशा ही होता है, हर किसी के लिए होता है। अगर कहीं पे एक आदमी को चोट लगी है और कोई लड़की वहाँ पे है, तो वो लड़की उसकी देखभाल या उसे तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचाएगी और उसकी केयर इस तरीके से करेगी जैसे वो उसकी माँ हो या उसकी बहन हो। तो जब भी आप ये करें, आप हमेशा ये सोचें कि हम जितना दूसरों के लिए इतना वो रखते हैं, तो हमें खुद के लिए भी उतना रखना चाहिए। अपने लिए भी आपको जागरूक होना चाहिए, अपने लिए भी अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और हम अपनी हेल्थ को और बेहतर कैसे करें, क्योंकि आज भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें से एक सर्विकल कैंसर एक बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ स्किन की कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, वेरिकोज वेंस होती है जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक हो सकती हैं, लेकिन हम महिलाएं जो है इस पे कभी भी गौर नहीं करते, हमेशा दूसरों की चिंता में बिजी रहते हैं।
4: बिल्कुल, और दूसरों की चिंता में बिजी ना रहें, अपने आप को ध्यान दें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के लिए हम विदा चाहेंगे, क्योंकि 2:57 हो गया है। तो चलिए लिस्टनर्स, चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञान असली 9.6 FM को। और हमें आज के लिए इजाज़त दें, क्योंकि अगर आज जाएंगे नहीं तो कल कैसे आएंगे। तो कल मिलेंगे आपसे आपके अपने पसंदीदा वाले शो सुन सहेली में, तब तक के लिए बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
7: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
8: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
9: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी

0: क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: श्रोताओं तो वक्त हो चला है आपके फोनी फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा का। और आज है भैया 3 जून, तो 3 जून की रोटी आप सभी को मुबारक हो। 2 जून तो हो चुका होगा, सुबह का नाश्ता, इस टाइम का लंच और रात का डिनर। उम्मीद है आप 3 जून की रोटियां अच्छे से खा के पचा लेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आज की फरमाइशों की तरफ और आपके सदाबहार नगमों की तरफ, आपकी डिमांड्स, आपकी डेडिकेशन और कई तरह के आपके जज्बातों से भरे गीतों की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। कहना बस इतना सा है कि भाई अगर आप लोगों को भी, जो हमारे प्यारे प्यारे नए वाले लिसनर हैं जिनको पता नहीं है कि भैया कौन सा नंबर घुमाना है और जादुई वाला गाना आप तक पहुंच जाएगा, तो भाई बताते हैं नंबर क्या है। उससे पहले बता दें कि आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो ज्ञान 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और उसके स्टूडियो का नंबर वही है 6393316429 यानी 6393316429। फोन मिलाएं और अपने गानों को ट्यून कराएं। लेकिन सफर पे आगे बढ़ने से पहले आज बड़े दिनों बाद हमें कोई नजर आया है हमारे चैट बॉक्स में, तो उनके लिए स्पेशली ये गाना और आप सभी के इंतजार में भाई मैं चाहती आप सभी अपनी अपनी डिमांड हम तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आपके इंतजार में फिल्माया गया ये वाला गाना आज स्पेशली आप सभी के इंतजार के लिए बना था। मतलब ये है, सीधा साधा बता देती, इंतजार अगर आप किसी का करते हो और उस इंतजार में अगर आप कोई गाना ट्यून करना चाहते हैं तो ये गाना बेस्ट है। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर बढ़ते हैं आज की पहली डिमांड की ओर। एंजॉय करिए जस्ट यू गए और यू आए और ये आवाज हमारी साधना सरगम जी की 90s हिट्स में से वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। एंजॉय द ट्रैक।

वैसे अगर हमें पहले पता होता ना कि हमें अगर कोई डेडिकेशन ऐसे वाले गानों की करनी पड़े आप लोगों को बुलाने के लिए, तो हम हर दिन किया करेंगे। फिलहाल आप लोग का इंतजार था और इस गाने को सुनते ही आप सभी ने चैट बॉक्स में दस्तक दी। आप सभी का दिल से स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा 3 से 4 के सफर में। और शो चल रहा है आपका फोन फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा, और अपनी डिमांड के लिए प्लीज कॉल करें 6393316429 पर। फिलहाल ये हमारी प्लेलिस्ट से हमारा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इंतजार की घड़ियों के लिए।

भाई हमें तो लगा था कि हम खाली कुछ हमारे लिसनर्स हैं जिनकी बातों पे मुस्कुराया करते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम आप सभी की बातों में पागलपन के शिकार हो चुके हैं और हमको मुस्कुराने की बीमारी हो चुकी है। भाई आपकी मोहब्बत ऐसी हो गई है कि हमें मुस्कुराना हमारा बंद ही नहीं हो रहा है। और रीना शर्मा जी में सुनती हैं, रुड़की उत्तराखंड से लिखती हैं, हमें भी आपका इंतजार था, नाइस सॉन्ग आई आपका इंतजार था। और सेम डायलॉग भेजा है हमारी नीना जी यानी चंगू जी ने। गीता शर्मा जी भी हमारे साथ में है मौजूद, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है गीतू जी। और साथ ही साथ में बहुत सारे लिसनर हमारे साथ में बने हुए हैं, उनकी ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट डिमांड लेना चाहेंगे अपनी प्यारी नीना जी का। और नीना जी इतना प्यारा सॉन्ग आप हमें कैसे भेज सकती हैं, हम तो सोच रहे हैं। फिलहाल आप भी सुनिए और सोचिए और सोचते रहिए और फिर बताइए कि इस गाने के लिए फीडबैक में हमें क्या मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच नीना जी फॉर यू दिस लवली वाला सॉन्ग। हमने ट्यून कर दिया है आपके अपने फोनी फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा में।

काश के हमारा गला साथ दे रहा होता तो मैं इस गाने को गुनगुना भी पाती। काफी फेवरेट सॉन्ग्स में से एक आपने हमसे ट्यून करवा लिया। नीना जी खाली स्पेशली आपके लिए प्ले किया मैंने, और हमारे साथ में बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, कोई रेडियो गार्डन के थ्रू, कोई अपने कार के थ्रू, कोई एप्लीकेशन के थ्रू। फिलहाल ये गाना

हाँ जी दोस्तों, और इस प्रेम पत्र को यहीं पे थोड़ा सा हम स्थगित करना चाहेंगे, वरना हमारी लिसनर हमारी तरह थोड़ा थोड़ा नहीं पूरे पूरे पागल हो जाएंगे। ही हा हु करते हुए चैट बॉक्स में जो नजर आ रहे हैं उनके घर वाले भी यही प्रश्न उनसे दोहराएंगे कि हुआ हुआ क्या हुआ, और जवाब में उन्हें यही मिलेगा, कुछ नहीं जनाब, बस प्यार हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये डिमांड आई हुई हमारे पास में हमारे प्रबल मिश्रा जी उर्फ पंडित जी की ओर से, और इसके बाद की जो नेक्स्ट वाली डिमांड होगी वो होगी हमारे आनंद प्रताप सिंह जी की फ्रॉम छेदीपुरा, अगर मैं गलत नहीं, क्योंकि हमारे आनंद प्रताप जी कई सारे हैं लेकिन हम कन्फर्मेशन नहीं कर पाते हैं, पूरा नाम बताया करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है अपने पते के साथ में। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए हमारे पंडित जी की डिमांड पर।

क्या बात है भाई, न जाने कहां से आजकल रैप का इनको लगा हुआ है, चस्का चस्का लगा है रैप का। और एक और प्यारी सी रैप को अभी आपने सुना हमारे पंडित जी की डिमांड पे। और अभी हम बढ़ते हैं आनंद प्रताप सिंह जी की डिमांड की ओर, जो कि कहां से हमें सुनते हैं वाकई मुझे बिल्कुल नहीं पता है। अगर हमारे छेदीपुरा वाले हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। और दिल्ली वाले हैं तो आपका भी स्वागत है। चलिए एंजॉय करते हैं फिलहाल इस ट्रैक को।

नमस्कार श्रोताओं, ये गाना अभी आपने एंजॉय किया है थोड़ी सी बेवफाई मूवी से, और आवाज थी लता जी और किशोर दा की। फिलहाल बढ़ेंगे आप लोगों की पैगामात की ओर और देखते हैं किस किस ने आज हमें मैसेज ड्रॉप किया है अभी तक चैट बॉक्स में। प्रबल मिश्रा जी का पहला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, उसके बाद हमारे कमल नयन जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। बबीता जी हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर है, स्वीट सी क्यूट सी, आपका भी वेलकम है। इसके अलावा नेक्स्ट पे है हमारी गीतू जी, आपका भी खैर मकदम। और रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी जो हमें इलाहाबाद से सुनते हैं, उनका भी मैसेज हमें प्राप्त हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत हार्दिक वाला स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ में जुड़ी हुई हमारी चंगू जी यानी कि नीना जी और मंगू जी का इंतजार करते हुए काफ़ी देर से आवाज़ लगा रही हैं, नेहा जी आ जाओ, नेहा जी आ जाओ। हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक हो, आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आएंगी ज़रूर, हमें मालूम है। अब्दुल मुजीम जी है हमारे साथ में अहमदाबाद से, न सरकार मेरी है ना रॉब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। आए हैं आप ना, जब मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप हिंदुस्तान के ऊपर कुछ भी लिखते हैं मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बात पे हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा तो बहती है लेकिन इस गंगा में जो खजाने पाए जाते हैं वो कितनी भी दफ़ा लूटे हो लेकिन फिर भी हम उतने ही अमीर हैं। ये बात सत्य है क्योंकि हम दिल के राजा हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मैसेज की ओर और मिस्टर बुलबुला जी आपका भी स्वागत है अपने नाम से अगर आप आएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा हमारे बीच में हैं, वैसे मैं जानती हूँ आपका नाम क्या है लेकिन मैं बताऊँगी नहीं, कोई बात नहीं, आप एंजॉय करते रहिए। और इसके अलावा हमारे साथ में जो है श्रोतागण, उन सभी ने काफ़ी फीडबैक दिया है, और मनी शर्मा जी भी हैं भाई खुरासा से, आपका भी स्वागत है। चलिए हमारे कुमार साहब ने भी दस्तक दे दी है फ्रॉम MP रीवा, और ये हमारे बैचलर महोदय हैं, मोस्ट वांटेड बैचलर महोदय हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। ओके और इनका ये कहना है कि भाई ये भी अभी ड्रॉप हो गए हैं कहाँ से, अपने आंगन से, बहुत बहुत स्वागत है। मुस्तफ़ा जी भी आ चुके हैं सऊदी अरेबिया से। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अब हम अजीज साहब की डिमांड की ओर, और ये हमें सुनते हैं मुंबई से, आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

हाँ जी, काफी सुंदर पसंद है इनकी और बड़ी सुकून वाली पसंद होती है जब भी हम इनके गानों को ट्यून करते हैं अजीत साहब के, बड़ा अच्छा सा फील होता है हमें। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नगमे की ओर और मुस्तफा जी का कहना आज अपने पसंद का गाना सुना दीजिए। आप आने में लेट हो गए हैं, हमने अपनी पसंद का गाना हमारी नीना जी के लिए बजा दिया है और काफी दमदार गाना था और इतना धमाचौकड़े, अगर आप ऊपर की रेटिंग देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। नेहा जी आ गई है बहराइच से, यानी मैं मंगू जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और बिल्कुल मैंने सही पहचाना है कुमार साहब, आपको पता है हमारी परख बहुत ही सटीक होती है। फिलहाल बढ़ते हैं अपने केस लिसनर की डिमांड की ओर, अब्दुल मुजीम साहब की डिमांड की ओर, और उसके बाद होंगे हमारे अमित कुमार जी। अमित कुमार जी का गाना थोड़ा सा आपको हिलाएगा, आप हिल जाइएगा, हमारी तरह हिले हुए हो जाइएगा, और उसके बाद आएंगे कुमार टेलर साहब की डिमांड को लेकर के। देव प्रसाद जी माफी चाहेंगे, आपकी डिमांड थी भोजपुरी इसलिए मैं उसे प्ले नहीं कर रही हूँ। एक बार फिर से बता रही हूँ, देव प्रसाद जी आपकी डिमांड थी भोजपुरी इसलिए मैं उसे प्ले नहीं कर रही हूँ। शो चला है आपका, जी हाँ, फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा, आप भी अपनी डिमांड भेज सकते हैं, कॉलिंग नंबर वही है 6393 6429। फिलहाल ये ट्रैक एंजॉय करें।

ना खुदा की राह में सदका किया करो और सजदा किया करो। सारे कष्ट आपके यूं ही दूर हो जाने हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी और से कहने से बेहतर है उससे कहें, ऊपर वाले से कहें, उस खुदा से कहें, उस ईश्वर से कहें, उस रब से कहें। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर और थोड़े से हिलने को तैयार हो जाते हैं अमित कुमार जी की इस प्यारी से डिमांड के साथ में, क्योंकि भाई इसमें कहना है हमारी बिपाशा बसु जी का। क्या कहना है आइए सुन लेते हैं।

वैसे इश्क़ की गली पड़ती किधर है? नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करिएगा अमित कुमार जी, जरूर बताइएगा क्या वहां पे आपने नो एंट्री का बोर्ड देखा है या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। आपकी आंखों दिखा हाल को जानना चाहेगी आपके लिए आरजे आकांक्षा आपके मुखार बिंदु से। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड हमारे पास में आई हुई है कुमार टेलर साहब की ओर से फ्रॉम गौरा चौकी। एंजॉय करते हैं इस ओल्ड वर्जन वाले सॉन्ग को किशोर दा और आशा भोसले जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी लावारिस।

भाई हमने अमित जी से जवाब मांगा था और यहाँ पे जवाब हमको हमारे चैट बॉक्स में ही मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बैचलर ऑफ क्या बोले हम आपको। खैर इन्होंने लिखा है, इश्क की गली प्यार प्रसाद के घर के बगल से और मोहब्बत कुमारी के घर के आगे पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, हमें पता ही नहीं था।

राजेश होता हूँ और ये काफी इमोशनल सॉन्ग था और इमोशनल होने के साथ में ये मूवी भी बड़ी ही प्यारी है। अगर आपने बचपन में, अगर आप 90s किड्स रहे हैं और अगर आपने बचपन में ये मूवी देखी होगी तो आपको पूरी तरह से एक पिक्चर गैलरी आपके आंखों से कौन गई होगी। बड़ी प्यारी सी मूवी है सच में। और एक और जवाब हम तक आ गया है, लिखते हैं, क्यों ना करें भाई हम इश्क में एंट्री, उसी के शहर में तो हम लोग रहते हैं ना, जिसको कहते हैं गोंडा और दिलों की धड़कन है शहर है गोंडा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब लिखा आपने, मजा आ गया पढ़ के। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है किसकी, ये डिमांड है हमारे प्यारे लिसनर रीतलाल जी की। चलिए रीतलाल जी की डिमांड की ओर बढ़ते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके हम रेणु तिवारी जी की, उसके बाद होंगे हमारे मनी शर्मा जी खुरासा से, फिर होंगे हमारे धर्मेंद्र मोहन जी, और एक प्यारी सी डिमांड आई है डेडिकेशन में उनकी फ्रेंड के लिए यानी मोहिनी तिवारी जी की ओर से कविता जी के लिए। वो गाना बड़ा ही खास है, आप सुनिएगा जरूर। फिलहाल इस ट्रैक को एंजॉय करिए।

हाँ जी श्रोताओं, और क्योंकि ये गाना मैंने कल ही ट्यून किया था इसलिए मैंने केवल इसका मुखड़ा प्ले किया है, माफ करिएगा रीतलाल जी, इससे ज्यादा मैं नहीं प्ले करूंगी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में है रेणु तिवारी जी की। गाना बहुत ही प्यारा है लेकिन अभी मैंने कल ही प्ले किया। डिमांड बहुत सारी हमारे पास में आई हुई है, लगातार कॉल्स आ रही है। और ध्यान किया करिए कि अगर एक दिन एक गाना हो गया हो तो कम से कम 2-3 दिन तो उसको अवॉइड किया ही करिए। फिलहाल बढ़ते हैं इस वाले डिमांड की ओर, और ये रेणु तिवारी जी सुनना चाहती हैं आपके फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कॉलर ट्यून गुंडा के साथ।

क्या बात है भाई रेनू जी, क्या खूब गाना चुन के लाई आप। आपने तो हमें बाग बाग कर दिया, बड़ी खुशी हुई गाना सुन करके। और हमारे कुमार साहब का कहना है भाई, इट्स कुमार साहब का एमपी डीवा से जो मैं सुनते हैं, कहते हैं तेरे आने की खुशी में कहीं हम पूरी पराठे ना बेलने पे तुल जाएं, इसलिए स्टे होम और हमें रहने दे सेफ। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, थोड़ा सा मजाक कर लिया है, दिल पे मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे मनीष शर्मा जी की। चलिए इसको सुनते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक लेके हम अपने धर्मेंद्र मोहन भारती जी का, जो कि हमें सुनते हैं आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से। नेक्स्ट डिमांड होगी हमारी प्यारी मोहिनी जी की, उनकी बेस्टी कविता जी के लिए। और कविता जी के लिए बहुत ही चुनिंदा नगमों से चुना इन्होंने गाना, और आई लव गोंडा जी करके एक लोग हमारे चैट बॉक्स में नजर आ रहे हैं। आपका फोन ही फरमाइश कार्यक्रम है, प्लीज कॉल करिए अगर आपको गाना ट्यून करवाना है, और अगर आपने ओल्ड गाना सुनना है तो तब तक जब तक मोहिनी जी का गाना नहीं बजता है आप वेट करिए, एंजॉय करिए फिलहाल इस गाने को।

कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो सुन के बस एक सुकून सा फील होता है, और यकीन मानिए हम इमेजिन करने लगते हैं काश हमारी जिंदगी भी इतनी खुशहाल होती। उन्हीं नगमों में से एक नगमा ये था। हमारे सभी दोस्तों के लिए यही दुआ है कि उनकी जिंदगानी ऐसे ही राजा रानी की तरह रहे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की। चले एंजॉय करते हैं 3 से 4 के सफर। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जा कांक्षा, और आप शो सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा। इसके बाद नेक्स्ट डिमांड हमारी कविता जी और आई लव गोंडा जी की। वैसे अगर आप अपने असली नाम में आएंगे, अपना नाम लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

बाजू और हमें याद आ गया कि 3:48 हो गए भाई, एक घंटा कहाँ बीत जाता है। आई स्वर मेरे को कभी आज तक इस बात का पता ही नहीं चला कि किधर को जाता है, पकड़ के मैं वापस से ले आऊं और फिर मैं बचे हुए गाने भी प्ले कर पाऊं। अगर मेरे को सच में पता चले तो मैं ऐसा ही करूंगी। फिलहाल आई लव गोंडा जी ने अपना नाम बता दिया है और कहते हैं मैं एक बालक हूँ फ्रॉम हापुड़ यूपी। वैसे जब इन्होंने ये लिखा तो मुझे एक गाना याद आ गया, वो भी माता जी की भेंटों में से, मैं बालक तू माता शेरावाली। फिलहाल इसलिए मुझे बहुत तेज हंसी भी आई। और इन्होंने अपना नाम बताया है बालक राम। वैसे मैं जानती हूँ इनका असली नाम ये है नहीं, फिर भी मैं मान लेती हूँ। और हमारे बालक राम जी के लिए और साथ ही साथ में हमारी प्यारी मोहिनी जी की बेस्टी के लिए एक प्यारा सा नगमा, क्योंकि इनको ओल्ड वर्जन सॉन्ग सुनना था तो इसलिए हमने इसमें इनको ऐड कर दिया है बालक राम जी को। वैसे तो स्पेशली डेडिकेट हमारी कविता जी को उनकी सखी यानी कि मोहिनी तिवारी जी की ओर से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक लेकर के। और नेक्स्ट ट्रैक है भैया सभी आइसक्रीम प्रेमियों के लिए, तो आइसक्रीम प्रेमियों तैयार हो जाना आइसक्रीम खाने के लिए।

0: हाँ जी, और अब चलते हैं आइसक्रीम प्रेमियों आप सभी के आइसक्रीम पार्टी के लिए, और ये डिमांड हुई हमारे पास में रविंद्र जी की ओर से। वैसे आज हमने हमारे भाई साहब से भी प्रॉमिस लिया है, हम जाने वाले हैं शाम में आइसक्रीम खाने के लिए, और ये गाना हमें उन्हीं की याद दिला रहा है। फिलहाल के लिए एंजॉय करिए इस ट्रैक को।
1: मेरे जैसा बेबी यहाँ कोई नहीं, मुझे पता है तू कल सोई नहीं, सबको पता है तुझे हो गया लव, सच्ची बता दे हो गया कब, और कहती

0: क्या किया।
1: जी हाँ हिमेश जी, और साथ ही में हमारे यो यो हनी सिंह जी, और एक फीमेल वर्जन आवाज भी आपने एक ही गाने में एंजॉय कर लिया है और आइसक्रीम खा भी लिया होगा उम्मीद है। और जेन जी का जो डिमांड कर रहे थे हमारे कुमार साहब की बड़ी देर से ओल्ड सॉन्ग सुना रहे, काश कि आप एक जेन जी वाला सॉन्ग सुना देते। फिलहाल मुझे लगता है आइसक्रीम जेन जी को कुछ ज्यादा ही पसंद है, और आप सभी की रेटिंग भी बता रही है कि आपको ये गाना काफी पसंद है। रवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बढ़ते हैं रॉबिन हुड जी और राजू सलमानी जी की सॉन्ग की डिमांड की ओर, और फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम अपनी काजल जी का, और आज की लास्ट डिमांड होगी बबीता जी की। बाकी सभी से मैं माफी चाहूंगी, माफीनामा जारी करती हूँ मोहम्मद अयूब जी के लिए, लवली सिंह जी के लिए, इसके अलावा है हमारे पास में अंबर गोयल जी, आपसे भी माफी चाहूंगी, अरमान जी आपसे भी माफी है, और ममता कसौधन जी आपसे भी माफी।

जी हाँ, रॉबिन जी की इस डिमांड को मैंने केवल मुखड़ा ही प्ले किया, माफ करिएगा रॉबिन जी, वक्त की कमी है इसलिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे पास में काजल जी की, और ये भाई हमारी प्लेलिस्ट का बहुत बढ़िया वाला सॉन्ग है और हमें काफी पसंद है, तो चलिए आप भी एंजॉय करिए, हम भी करते हैं एक दफा फिर से।

दोस्तों पुराना माफीनामा थोड़ा सा मैं उसमें अपडेशन चाहूंगी और उसमें नाम ऐड करूंगी अपने एक्स कुमार जी का फ्रॉम एमपी रीवा। और हमें लग रहा है रामकृष्ण नंदन जी भी हमें कुछ कहना चाहते हैं, वो मैं पढ़ लूंगी थोड़े वक्त बाद। लेकिन जिन जिनके सॉन्ग रह गए हैं वो हैं हमारी मोहम्मद अयूब जी, लवली सिंह जी, इसके अलावा अंबर गोयल जी, अरमान जी, बहुत लेट से आपने कॉल किया था इसलिए मैं माफी चाहूंगी, और ममता कसौधन जी, कल जरूर आपका सॉन्ग अगर आपने मुझे याद दिलाया तो मैं प्ले करना चाहूंगी क्योंकि 2-3 दिन से आपका सॉन्ग रह जा रहा है। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिएगा।

भाई रामकृष्णनंदन जी ने बोल दिया हम नहीं बोलेंगे, ठीक है आप मत बोलिए, आप महापुरुष हैं और बस हम चाहेंगे आप महापुरुष ही रहे। थैंक यू सो मच। और अभी बढ़ेंगे आज की लास्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारी बबीता जी की ओर से। और हाँ जी, कल की शाम आप लोगों ने बहुत बेहतरीन बनाई अपने फीडबैक के द्वारा, स्टोरी थी लेकिन आप लोगों के फीडबैक ने मुझे काफी प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आइएगा, आज तो भाई आप ही का दिन है, मतलब के अंताक्षरी वाला सेगमेंट होगा गोंडा मैसेज मसाला विद आरजे बीना वाला, लेकिन उसमें भी आपकी आरजे आकांक्षा होगी मौजूद। इंतजार करते हैं, शाम में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
3: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके शाम वाले स्पेशल शो में। ये शो और भी स्पेशल हो जाता है जब गोंडा की किसी एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराते हैं जो अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं और साथ ही साथ अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। सो यस ऑफ कोर्स, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन से आते हैं, ताकि हम उनकी लाइफ को सुनने के बाद उससे काफी कुछ जो है वो सीख सके, निकाल सके। तो आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद है, दरअसल उनकी मौजूदगी का एहसास वो भी खुद से कराने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गौरव पांडे, नेशनल हेड की अकाउंट्स एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं अपने इस स्पेशल शो में।
2: थैंक यू अदनान, थैंक यू सो मच, इट्स ग्रेट टू बी हियर।
1: थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज हम बता दें मिस्टर गौरव पांडे मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं बहुत अहम मसले पे। जी हाँ, जिस मसले को लेकर के आप जिंदगी भर चिंता के विषय में डूबे रहते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, ये आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। तो दरअसल हम लोग को चिंता होती है अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों की, अगर पेरेंट्स है तो बच्चों की होती है कि भाई इनका करियर का क्या होगा, करियर कैसे ये ऑप्ट करे, कौन सा करियर इनके लिए बेस्ट होगा, कौन सा ऑप्शन इनके लिए सही होगा, मेरे बच्चे की क्वालिटीज कौन सी है, क्या है, और कहाँ इनका जाना बेहतर होगा, जहाँ पे आप इनको इनके हिसाब से लाइफ जीते हुए देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, सो आज हमारी जो बातचीत होगी मिस्टर गौरव से वो होगी करियर काउंसलिंग पे, लेकिन उससे पहले चूंकि कौन है भाई मिस्टर गौरव ये हम भी तो जान लें, तो चलिए आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ सीधे और बातचीत करते हैं उनसे। मैं चाहूंगा कि अपने बारे में एक संक्षिप्त सा विवरण आप दें, जिसमें आप बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में।
2: तो अदनान, बेसिकली तो गोंडा से ही हूँ मैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोंडा, और ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई गोंडा में ही कंप्लीट करी मैंने, और उसके बाद अपने मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए मैं नोएडा गया, जहाँ एक इंस्टीट्यूट है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जहाँ से मैंने अपना MBA किया और अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत की, और उसके बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बिरला ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SC जॉनसन और ऐसी बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर किया। अभी फिलहाल मैं बतौर बाटा के साथ बतौर नेशनल हेड काम कर रहा हूँ। सो ये है मेरे बारे में एक छोटा सा परिचय।
1: क्या बात है, लेकिन ये छोटे से परिचय को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और कुछ और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, फादर आपके क्या करते हैं, और साथ ही साथ आपका एम्बिशन क्या था।
2: मेरे फादर गोंडा में ही संभागीय परिवहन अधिकारी रहे और उन्होंने अपनी सेवाएं 32 वर्षों तक यूपी गवर्नमेंट को दी और अभी वो रिटायर्ड है। मेरी चार बहनें हैं, ऑल ऑफ देम आर मैरिड, सभी मुझसे बड़ी हैं, तो ऑल ऑफ देम आर मैरिड। अभी मेरी बड़ी बहन लखनऊ और भोपाल में है, एक बहन मेरी अभी यहीं गोंडा में ही पोस्टेड है एज अ टूरिज्म ऑफिसर, एंड मेरी सबसे छोटी बहन अभी टीचर है, वो भी गोंडा में ही पोस्टेड है। एक छोटा भाई है मेरा, वो भी टीचर है और टीचर के साथ साथ एक अग्रणी किसान भी है। तो ये, और एज फार एज माई वाइफ एंड किड इज कंसर्न, तो मेरी वाइफ है शशि हो, वो अभी IIT दिल्ली से PhD है और फिलहाल डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट में एज अ साइंटिस्ट काम कर रही है, और मेरी एक 4 साल की बेटी और एक 40 दिन की बेटी है।
1: अरे क्या बात है।
2: सो ये हमारा फैमिली का बैकग्राउंड है।
1: क्या बात है, तो ये तो बड़ी अच्छी आपने बात कही, बड़ी कहते हैं ना कि वैरायटी नजर आ रही है। तो वालिद साहब आपकी यानी पिता की अगर हम बात करें, तो चूंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं, अभी स्वयं आपने बताया कि वो रिटायर्ड है, एंड दूसरी बात ये कि दो सिस्टर आपकी यहाँ पे हैं, गोंडा में हैं, दो बाहर हैं। आपने इतना अलग करियर ऑप्ट कर लिया, आप चले गए दिल्ली, इसके बारे में कुछ बताया कि अचानक से ये तब्दीलियां क्या हुई, क्योंकि मुझे जो लगता है दरअसल होता है कि अक्सर जो मैंने देखा है कि फादर जो होते हैं जिस पोजीशन पे होते हैं या जिस डिपार्टमेंट में होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी डिपार्टमेंट में आए, एक अच्छी पोजीशन हासिल करें। फादर ने कभी नहीं कहा कि गवर्नमेंट जॉब ही आपको क्रैक करनी चाहिए?
2: तो एक्चुअली अदान, मेरे साथ सिचुएशन थोड़ी रिवर्स थी। फादर ने कभी मुझे किसी चीज के लिए पुश नहीं किया, बट हाँ, मेरे सारे ड्रीम्स के लिए ही वॉज स्टैंडिंग विथ मी कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ आई एम स्टैंडिंग विद यू। सो अगर आप मेरी सपने की बात करें कि बनना क्या था मुझे जब मैं 10th क्लास 12th क्लास में था, तो मैं हमेशा से आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था। मुझे फाइटर प्लेन्स बहुत पसंद थे।
1: वाओ।
2: तो मुझे पायलट बनना था, और वो भी स्पेसिफिकली फाइटर पायलट ही बनना था।
1: ओ, क्या बात।
2: और उस चीज के लिए मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की, एनडीए क्लियर किया, इंटरव्यू

0: जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो वो सक्सीड करो। तो बिकॉज जब ये करियर नहीं था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब अगली चीज क्या करें, जो कि बहुत प्रॉब्लम का विषय है हम उस समय के, और मुझे लगता है आज भी लोगों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि करना क्या है।
1: एग्जैक्टली
0: तो स्टार्ट हुई एक्सप्लोरेशन जर्नी की करना क्या है, और क्योंकि एयरफोर्स के लिए रास्ते ऑलमोस्ट बंद थे तो देन आई सेड कि इफ दिस इज नॉट देन आई डू मैनेजमेंट। इफ यू आस्क मी कैसे डिसाइड किया, देयर वाज एब्सोल्युटली नो बेस, जस्ट आई हैड टू डू समथिंग। सो आई सेड ठीक है ये ट्राई करते हैं, लेट्स सी वेयर डू वी रीच। तो यहाँ से शुरू किया क्योंकि कभी पहले जितनी भी मेरी पढ़ाई थी, ग्रेजुएशन की रही हो या प्लस टू की रही हो, सब कुछ हिंदी मीडियम से था। एंड देन सडनली वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि अब मैं मैनेजमेंट करूंगा, मैनेजमेंट की पढ़ाई तो इंग्लिश में ही होनी।
1: एग्जैक्टली
0: तो एक अपहिल टास्क सेलेक्ट कर लिया था मैंने अपने लिए, और एंड दैट इज हाउ आई जस्ट स्विच्ड इट कि ठीक है अगर मुझे नहीं करना है, आर्म फोर्सेस इज नॉट फॉर मी, देन आई डू मैनेजमेंट। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी प्रिपेयर्ड फॉर कैट। ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आई वॉज अबव एवरेज, तो इंग्लिश पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं था, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं थी, बट बोलना हमेशा से प्रॉब्लम रहा था। तो कैट के स्कोर अच्छे आ गए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से कॉल आ गई, बट प्रॉब्लम ये थी कि जब आप MBA का एग्जाम देते हो तो रिटन के साथ आपको एक GD और एक इंटरव्यू भी देना होता है।
1: Okay.
0: और वो मेरे लिए सबसे बड़ा समस्या का विषय था क्योंकि इंग्लिश तो कभी बोली नहीं थी। और एक बड़े मजेदार किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको कि उस टाइम पे जब मैंने MBA का इंटरव्यू क्लियर किया और मुझे कॉल आया मेरे कॉलेज से, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से, तो और मैं GD के लिए वहां अपीयर हुआ, तो मेरे साथ 14 और लोग थे, वेरी वेल पॉलिश्ड स्टूडेंट्स, फ्लुएंट इन इंग्लिश, और एक मैं अकेला हिंदी भाषी जिसने पहले जीवन में कभी इंग्लिश तो नहीं बोली थी,
1: राइट।
0: तो उस कमरे में 14 लोग बात कर रहे थे और एक स्टूडेंट केवल सुन रहा था, और वो था मैं। तो उस पूरी 45 मिनट की GD में आई हैव नॉट अटर्ड अ सिंगल वर्ड। 15-20 मिनट बाद तो मुझे रियलाइज हो गया कि MBA तो मेरे लिए है ही नहीं बॉस, नहीं हो सकता मेरे से ये।
1: बस लैंग्वेज बैरियर की वजह से,
0: लैंग्वेज बैरियर की वजह से। और ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता था या मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम बोल सकते हैं, और शायद हमें वो एनवायरमेंट अभी तक नहीं मिला हुआ था जहाँ पे हम अपनी फ्लुएंसी पे काम कर पाए। आज के टाइम पे हम और आप हिंदी में क्यों इतनी अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि हम सोच भी हिंदी में रहे होते हैं और बात भी हिंदी में कर रहे होते हैं, पूरा हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ही वैसा है। सो वो एनवायरनमेंट नहीं मिला था, और हमारे लिए तो इंग्लिश को हम हवा मानते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, सो हम एक्चुअली से डरते हैं। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। आज 15 साल बाद मुझे रियलाइज हो रहा है, तब मैं भी हमारे जो अभी के स्टूडेंट होंगे वैसे ही मैं भी डरता था, वैसे मुझे भी स्ट्रेस हो रहा था कि भाई कैसे इंग्लिश बोलूंगा। और मैंने उस पूरी GD में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो मुझे तो पता था कि अब तो वैसे भी रिजेक्शन पक्का ही है, बट क्योंकि पार्ट ऑफ द प्रोसेस था, मुझे इंटरव्यू के लिए अपियर होना था। मेरे इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा कि हाउ वाज योर इंटरव्यू, आई सेड इट वाज पैथेटिक, वेरी बैड, एंड ही सेड क्यों, एंड आई टोल्ड हिम कि सर प्रॉब्लम ये है कि मैंने आज तक कभी इंग्लिश नहीं बोली, और यहाँ पे किसी को हिंदी सुननी नहीं है, एंड ही सेड मुझे सुननी है, तुम्हारा इंटरव्यू हिंदी में होगा। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स मैं और मेरे प्रोफेसर ने हिंदी में बात की, और उसका रिजल्ट ये था कि मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे थे। ऑब्वियसली GD में मेरे मार्क्स जीरो ही थे क्योंकि मैंने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया था, बट कैट का अच्छा स्कोर, इंटरव्यू का अच्छा मार्क, एंड आई गॉट एन एडमिशन इन टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज दैट टाइम फॉर मैनेजमेंट।
1: एग्जैक्टली
0: वहां से जर्नी शुरू हो गई। सो ऐसे सिलेक्शन हुआ मेरे करियर का, तो दैट्स व्हाट इट इज।
1: क्या बात है, तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपने साझा की, और मुझे लगता है ये सिर्फ आपकी इकलौती की स्टोरी नहीं है। अगर हम गोंडा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि हाँ अगर हम बाहर निकलते हैं, स्पेशली दिल्ली मुंबई के साइड जाते हैं जहाँ पे भी इंग्लिश कल्चर ज्यादा है बोलने का, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि हम अपनी बातों को बस इस वजह से नहीं रख पाते कि लैंग्वेज बैरियर है।
0: करेक्ट।
1: और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शायद हम बोल भी नहीं सकेंगे, करेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी तक जिस माहौल में रहे वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज हम इस तरह से फ्रिक्वेंटली नहीं बोलते हैं।
0: हाँ, करेक्ट।
1: तो या तो हिंदी बोलते हैं या तो अवधी मिक्स होती है हमारी, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है। एंड ये बहुत सही चीज आपने बताई, लेकिन मुझे एक बात और इसी से जहन में आ रही है कि भाई आपको एडमिशन तो मिल गया था लेकिन पढ़ाई तो जहां तक मुझे पता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं।
0: हाँ,
1: उसको कैसे आपने टेकल किया था?
0: हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बोला अदनान, क्योंकि वो तो बस शुरुआत थी, मतलब वो तो प्रॉब्लम की शुरुआत थी, मुझे एडमिशन मिलना वॉज जस्ट दी बिगिनिंग।
1: ओके।
0: समस्या ये थी कि अगले 2 साल 6-8 ट्राइमेस्टर क्लियर भी करने हैं, और उसमें बहुत सारी GDs, बहुत सारे पर्सनल इंटरव्यूज, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होनी है, एंड अनफॉर्चुनेटली सारी इंग्लिश में होनी है। तो एडमिशन ले लिया और क्लासेस

0: शुरू हुई। सो अब समस्या ये होती थी कि हमारे साथ हमें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता था, 5 to 6 पीपल इन अ ग्रुप, और हमें बोला जाता था कि आप सबको मिलके प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन करनी है, बट उसका सीक्वेंस हमारे प्रोफेसर डिसाइड करते थे। और समस्या ये होती थी कि आप का जो सीक्वेंस है, क्योंकि वो रियल टाइम पे डिसाइड होता था, तो कौन सी स्लाइड आपको मिलेगी ये पता नहीं होता था। अब मैंने अपनी स्लाइड, जो 2 स्लाइड बनाई होती थी, उसमें तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बोल दूंगा।
1: एग्जैक्टली
0: बाकी के जो 4 लोगों ने 8 स्लाइडें बना रखी थी, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं होता था। एटलीस्ट क्योंकि जब आप कुछ खुद से करते हो तो आप फिर भी बोल पाते हो, जब किसी और ने किया है आपको वो रीड करके और उसको प्रेजेंट करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब आपका लैंग्वेज स्ट्रांग पॉइंट ना हो। तो मैंने उसका एक बहुत ही नायाब तरीका निकाला। मैं अपने ग्रुप के पास जाता था और बोलता था मैं तुम्हारा काम कर दूं। लोगों को लगता था क्या बेवकूफ बच्चा है, अपने हिस्से की भी हमारे हिस्से का भी काम करना चाहता है। एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी कि ठीक है यार काम नहीं करना है, तो जैसे ठीक है कर लो, आप कर लो। तो आई यूज टू मेक एवरीबॉडीज प्रेजेंटेशन, पूरे ग्रुप की प्रेजेंटेशन मैं बना देता था, ताकि किसी भी स्लाइड से जब मुझे मेरा प्रोफेसर बोलने को कहे तो आई विल बी कॉन्फिडेंट एंड आई विल बी एबल टू डिलीवर व्हाट नीड्स टू बी डन। तो वो होता था, बट ये तो शुरुआत थी। आगे चल के आपको इंडिविजुअली भी पूरी पूरी प्रेजेंटेशन देनी होती थी, एंड इट वॉज 40 minutes, 30 minute प्रेजेंटेशन विथ इन फ्रंट ऑफ 250-300 स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट का पैनल बैठा होता था, और आपको पोडियम पे अकेले खड़े होकर प्रेजेंटेशन करना है, तो पैर कांपते थे लिटरली। आई एम बीइंग वेरी सीरियस। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि जब क्लासेस शुरू होती थी 9 बजे से, मैं पहुंचता था 7 बजे और एक प्रेजेंटेशन को मल्टीपल टाइम्स खाली रूम में ऑडिटोरियम में देता था, जिससे एक फ्लो बन जाता था, मुझे ऑलमोस्ट पूरी प्रेजेंटेशन लिटरली याद हो जाती थी। बट उस टाइम पे आई वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट, बट एक्चुअली दैट वॉज हेल्पिंग मी टू कमांड ऑन द लैंग्वेज, क्योंकि उस टाइम पे मैं बार बार, और मुझे उस टाइम पे डर नहीं लगता था कि कोई हंसेगा क्योंकि रूम तो खाली होता
1: ही नहीं था।
0: करेक्ट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे उसकी जरूरत नहीं लगने लगी, क्योंकि जब आप बार बार ये करते जाते हो अपनी धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाता है, और ग्रेजुअली फिर वो जो 7 बजे होता था वो 8 हो गया, फिर उसके बाद 8:30 हो गया, एंड देन बाय द एंड ऑफ द ईयर, सेकेंड ईयर जब हम पास आउट कर रहे थे, आई नॉट ओनली स्टार्टेड परफॉर्मिंग रियल टाइम की, अच्छा ठीक है प्रेजेंटेशन देनी है चलो चलते हैं, बट ऑल्सो आई टॉप द कॉलेज। तो जर्नी फ्रॉम समबडी जिसने कभी इंग्लिश नहीं बोली, जिसको बहुत प्रॉब्लम आती थी, उन 2 साल में जस्ट By practicing it, और ये डिसाइड करके कि बॉस डरना नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, प्रैक्टिस करेंगे मेहनत करेंगे तो ये आएगी ही आएगी। और रिजल्ट ये था कि लास्ट सेमेस्टर में मैंने टॉप किया कॉलेज, और प्रेजेंटेशन हैज बिकम अ डेली रूटीन फॉर मी।
1: तो इस तरह से आपने इस चीज को टैकल किया, मतलब चूंकि आपको ये पता था कि भाई ये इंटरव्यू तो एक दिन की बात है, लेकिन एक्चुअल में अब हमारा जो पूरा कोर्स है, जो पूरी जर्नी है, वो इसी तरह से आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको पब्लिक फियर है, वो स्टेज पे जाते हैं तो जैसे आपने कहा ना कि कंपकपी आती है, हाथ पैर का कांपना, मुंह जबान का सूखना, और उसके बाद नजरें मिलाए तो फिर किससे मिलाए, फंबल होता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें। अच्छा, चूंकि आज हम बात आपसे अब विस्तार से करने वाले करियर काउंसलिंग को लेकर के, और जो आपने बताया, जिस तरह से बताया, मुझे ऐसा लगा काफी ज्यादा आपकी खुद की भी जर्नी इंटरेस्टिंग है। तो करियर काउंसलिंग की बात बात के बीच में मैं चाहूंगा कि अपने लाइफ के भी एग्जांपल्स आप कोट करते रहिएगा, ताकि हमारे श्रोताओं को पता चले कि आखिर रियल में भी आपने उन चीजों को फेस किया है और वो करते हैं। सो दोस्तों, फिलहाल हमारे साथ में आज मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर गौरव पांडे, जो कि नेशनल हेड है की अकाउंट्स एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के उस पार वापस से लौटेंगे। इस म्यूजिकल ब्रेक को आप एंजॉय करिए, और आने के बाद बहुत अहम सवाल है कि आखिर अपना करियर कोई कैसे चुने। सुनते रहिए गोंडा वाला एफएम रेडियो 11.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
1: वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने स्पेशल शो में, जिसका नाम है गौधुली। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थलित 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और हमारे साथ में आज गोंडा से ही मौजूद मिस्टर गौरव पांडे मौजूद हैं, जो कि नेशनल हेड हैं की अकाउंट्स एंड एक्सपोर्ट बिजनेस के। एक बार वापस से मैं आपका वेलकम करता हूं।
0: थैंक यू अदा।
1: और आज के इस स्पेशल शो में जिसमें हम करियर काउंसलिंग की बातें करने वाले हैं, ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बातचीत और चर्चा होनी भी चाहिए। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जैसे कि आपकी जर्नी में बड़ी वैरायटी नजर आई, ऐसा लगा कि आपने काफी बार चीजों को चेंज किया है और उसके बाद आज आप इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। करियर की जब बात आती है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं, 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, टीन एज होती है, उस टीन एज में बच्चा पहले तो खुद को ही समझ रहा होता है, एंड इतना बड़ा फैसला लेना कि भाई लाइफ में क्या करना है, कौन सा करियर ऑप्ट करे, लाइफ टाइम कौन सा उसके लिए सस्टेनेबल रहेगा, किसमें उसके लिए ज्यादा बेनिफिट्स हैं, कौन सा उसके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ये तमाम तरह के सवाल होते हैं। प्लस घर के लोगों का भी अपना सजेशन होता है कि बेटा तुम गवर्नमेंट जॉब क्रैक करो, तुम प्राइवेट में जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। सोसाइटी के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो गाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और मुझे लगता है वो चीज मेरे साथ भी हुई है, और शायद चूंकि आप भी गोंडा में उस टाइम थे ही, तो कुछ तो आपने फेस भी किया होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ये करियर ऑप्शंस जिस तरह से होते हैं, तो किस तरह से इसको सही तरीका होता ऑप्ट करने का।
0: सो, ये बात सही है कि जब आप टीनेज में होते हैं, आपके पास जानकारी पूरी नहीं होती, आपको ये आपको इनफैक्ट अगर आप देखें ना, तो उस समय के बच्चे को सब कुछ बनना होता है। उसको कभी पायलट बनना होता है, कभी उसे डॉक्टर बनना होता है, कभी उसे इंजीनियर बनना होता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन स्वाभाविक। और हम सब, आपने एकदम सही बोला कि हम लोग उस जर्नी से निकले हैं, हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता था
1: जी।
0: बट अगर हम ये देखें कि सही डिसीजन कैसे लें, तो ऑनेस्टली कोई डिसीजन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सही है या नहीं, वो तो आउटकम ही बताएगा, राइट। बट हम केयरफुली सिलेक्शन कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक्सप्लोर करते जाएं, आप अपने इनिशियल इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें, उस पर काम करने की कोशिश करें। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लग रहा है कि इफ दिस इज नॉट वर्किंग फॉर यू और दिस इज नॉट राइट, टेक अ टर्न। और शायद ये थोड़ा हार्श लगेगा, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि आपने आज जो सिलेक्शन किया वो सही हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं अदनान, तो मेरा बैकग्राउंड है, मैंने 10th में मेरा एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत था, देन मैंने PCM से अपना 12th किया, देन मैंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और डिफेंस स्टडी से करा, एंड देन उसके बाद मैंने मैनेजमेंट किया। तो आई केप्ट मूविंग हेयर एंड देयर, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। यस, वो ऐसा लग रहा है कि मतलब हेयर एंड देयर जा रहा है, बट रियलिटी है कि जब आप मल्टीपल एंगल्स एक्सप्लोर करते हैं, तो इस जर्नी में आपको एक इंडिकेशन मिलता ही मिलता है। एज अ स्टूडेंट यू विल गेट टू नो कि दिस इज वेयर माई इंटरेस्ट लाइज। इनिशियली जब मैंने अपना 12th कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने कोशिश करी कि क्या मैं आर्मी में एयरफोर्स में ट्राई कर सकता हूँ क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। सो आई वॉज ट्राइंग टू रोल आउट ऑल दी ऑप्शंस कि अच्छा ये हो सकता है बिकॉज ऑफ दी मेडिकल इश्यूज, ऐसे ठीक है आर्म फोर्सेस तो is out from the option. Now what is next? क्योंकि NCC graduation के साथ मैंने NCC करा था, उस time पे मुझे अच्छा लगता था कि जब मैं लोगों को lead करता था, लोगों को coach करता था, train करता था, तो मुझे लगा कि leadership एक ऐसी quality है जो मेरे अंदर है, शायद इसको मुझे use करना चाहिए। और management को देखता था तो मुझे लगा शायद यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ तो at some point of time I will have a large team to handle and all that, so I can use my leadership skills. तो आपको वो क्लूज अपने पिकअप करने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू कीप ट्राइंग। दिस इज ऑन द स्टूडेंट साइड। एक और साइड है, पेरेंट्स या आपके घर में जो बड़े लोग हैं, exactly. उनका क्या रोल है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपनी बात करूं अदनान, सो मेरे घर में बड़ी बहनें थी, फादर थे, बट टाइम इतनी तेजी से चेंज होता है ना कि आपके फादर शायद, अगर आज मैं बात करूं तो जब मेरी बिटिया बड़ी होगी, आई एम नॉट श्योर कि मैं उसको गाइड पूरी तरीके से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तब तक टाइम इतना चेंज हो चुका होगा, शायद मैं उस टाइम पे इक्विप्ड नहीं रहूंगा। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दे पाए कि यू ट्राई एंड फेल, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, वी विल एक्सप्लोर सम अदर रोड। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं और फेल नहीं हो रहे हैं, तो आपकी जर्नी डेफिनेटली अधूरी है। सो डोंट गो फॉर अ सेफ ऑप्शन। आप अपने इनिशियल इंटरेस्ट सेलेक्ट कीजिए, और आई वुड हाईली रिकमेंड कि पेरेंट्स और बड़े भाई बहन भी ये चीज नोटिस करें कि वो बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। क्या वो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, या वो अच्छा गाना गा रहा है, या शायद उसकी टेक्निकल नॉलेज थोड़ी बेटर है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल अदनान, आज भी मुझे लगता है कि अगर मैं इंजीनियर होता तो बहुत बेहतर होता।
1: ओके
0: क्योंकि बचपन से ही जब कोई मशीन खराब पड़ी होती थी ना, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था कि बिना खाए पिए चीजों को, और आई वुड नॉट से 100%, कुछ तो डिजास्टर्स भी हुए हैं, बट हाँ 90-95% आई वॉज देयर, आई कुड रिपेयर थिंग्स. तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता था. दोज वर क्यूज विच वी कुडंट पिक अप, राइट? एंड शायद एक इंजीनियर बनता तो अब बहुत अच्छा करता. ऐसा नहीं कि मैं अभी अच्छा नहीं कर रहा, बट शायद मैं बेहतर कर पाता. वो क्यूज थे. आई थिंक एज अ फैमिली मेंबर यू हैव टू पिक अप दोज क्यूज, ताकि आप अपने बच्चे को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को अच्छे से गाइड कर पाए, एंड देन लेट देम ट्राई, एंड इवन इफ इट फेल्स टेक अ टर्न एंड ट्राई समथिंग न्यू.
1: तो ये बात आपकी मुझे समझ में आई कि आपने कहा कि भाई एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी
0: है.
1: तो मुझे लगता है एक्सप्लोर करने के लिए पेरेंट्स को या जो गार्जियंस हैं, पढ़ाई के साथ साथ जैसा कि कहा कि उसको स्पोर्ट्स में भी जाने देना चाहिए. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्कूल कॉलेजेस में, एनुअल फंक्शन होते हैं, तो मतलब छोटी छोटे इवेंट पे जो बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है, मुझे लगता है वो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वहीं आपको ऑब्जर्व करना होता है.
0: Correct.
1: कि बच्चा डेली लाइफ में कौन सी चीजें हैं जिनको इजीली वो कर पा रहा है, या उसको करते हुए वो थक नहीं रहा है, उसको मजा आ रहा है, या और भी उसको करने की चाहत बढ़ती जा रही है.
0: Correct.
1: तो एग्जैक्टली इस तरह से पहचाना जा सकता है. अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपने पेरेंटिंग की बात की, तो अक्सर देखा जाता है कि सेफ साइड की बात की जाती है. मतलब अगर मैं अपने यहाँ गोंडा की बात भी करूँ या आसपास के एरिया की, भाई गवर्नमेंट जॉब ले लो और पूरी लाइफ जो है वो सेफ है. ये सेफ्टी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम एक करियर के रूप में देखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे.
0: अदान, मुझे लगता है कि आपको सेफ्टी से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए. तो व्हाट आई मीन टू से इज, आपने एक सेफ जॉब सेलेक्ट कर ली, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मुझे ग्राउंड ड्यूटी का ऑप्शन मिला था, दैट वाज द सेफेस्ट जॉब. आई वाज गेटिंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, पूरी लाइफ सेट हो जाती, दैट वुड हैव बीन द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर मी. बट वॉज दैट सस्टेनेबल? आंसर इज नो, क्योंकि शायद मैं खुश नहीं रहता. मुझे हमेशा ऐसा लगता कि सामने वाला फाइटर प्लेन उड़ा रहा है और मैं नीचे से बैठ के उसको गाइड कर रहा हूँ. तो वो ज्यादा जरूरी है. मतलब अल्टीमेटली वाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट द करियर, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम एक सस्टेनेबल, एक अच्छी लाइफ जिए, एक सैटिस्फैक्ट्री लाइफ जिए. जब सैटिस्फैक्शन ही नहीं होगा तो वो सेफ्टी लेके बियॉन्ड अ पॉइंट आप दुखी होके सेफ नहीं रह सकते. आप खुश होके अनसेफ, एक स्लाइटली अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ज्यादा बेटर रहोगे रादर देन अनहैप्पी एंड अ स्टेबल एनवायरनमेंट. तो दैट इज व्हाट आई फील, टू डोंट गो फॉर सेफ्टी, गो फॉर सस्टेनेबिलिटी.
1: तो यानी मान सकते हैं ऐसा कि पैसा और सैलरी ही सब कुछ नहीं करती है तय?
0: नो, डेफिनेटली
1: एक अच्छी लाइफ के लिए
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं आपको ये बता सकता हूँ अदनान, कि मेरे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं, दे आर डूइंग फार बेटर इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी साइड, बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सैटिस्फाइड. इफ दे आर नॉट सैटिस्फाइड, एंड इवन इफ यू आर एट अ सीईओ एंड और एट अ डायरेक्टर लेवल एंड यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद यू नो लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दोज? एंड आई कैन टेल यू, समबडी विद इन दिस सिटी is doing a farming and I'm talking about my own brother. He's a farmer, he's a teacher, and he's very, very satisfied because he's doing something what he likes to do. So I think that is what matters the most. Ultimately, जो भी हम कर रहे हैं हम satisfaction के लिए कर रहे हैं, और वो तभी आएगा जब आप कुछ ऐसा करो जिसमें आपको मजा आता है rather than being safe.
1: मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम satisfaction के लिए जाते हैं तो हमें लगता है हमारा करना सही है, लेकिन मतलब जो एक एनवायरनमेंट में हमने देखा है, बात चलती है कि यार फलाने इतना कमा रहा है हमको भी कमाना है, और अगर पड़ोसी में चाचा के घर पे कार है तो मेरे घर पे क्यों नहीं है. ठीक है, बुआ के यहाँ इतनी नई नई चीजें आई हैं, बताइए हमारे यहाँ नहीं आई. तो एक तो ये होता है कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है. अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि लोग कहते हैं, अब शायद ऐसा कह कह के लोगों ने एक दूसरे के मन में बैठाना शुरू कर दिया कि मनी इज एवरीथिंग, और जबकि अभी आपने जस्ट ये कहा कि नहीं, मनी इज नॉट एवरीथिंग. और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि ऐसे लोग जो ऑलरेडी उस पोजीशन पे हैं जहां आप जाना चाहते हो, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी उतनी सैलरी है जितनी आप चाहते हो, आपकी ड्रीम है, वहां पे पहुंचने के बावजूद भी उनको लगता है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ.
0: करेक्ट,
1: ये मैं कहाँ हूँ.
0: करेक्ट,
1: मेरी लाइफ कहाँ, वेयर इज माय लाइफ. तो लाइफ ढूंढना मुझे लगता है पैरेलल में बहुत जरूरी है.
0: बहुत,
1: ये जो फैंसी वर्ड्स हैं करियर का, करियर को चुनना और लेना, तो मुझे लगता है ये एक फीलिंग के साथ में होता है.
0: करेक्ट,
1: लाइफ हर चीज में होनी चाहिए क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है। हाँ, ये लाइफ नहीं है।
0: बिल्कुल, दिस कैन नॉट बी। बिल्कुल एकदम सही बोला अदनान आपने। इनफैक्ट आपसे बात करते टाइम मुझे याद आया, सो देयर इज अ बुक कॉल्ड ट्यूसडे विद मूरी। सो
1: ट्यूसडे विद मूरी,
0: ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल थिन बुक एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, सबको पढ़नी चाहिए। शायद ये ऐसी बुक है जो मैंने सबसे ज्यादा लोगों को गिफ्ट की है। इस बुक में एक कॉन्वर्सेशन है एक फिलोसफी के प्रोफेसर और एक स्टूडेंट की, एंड द पर्सन द प्रोफेसर इज ऑन डेथ बेड।
1: ओके,
0: सो आप अज्यूम करो कि कोई जब डेथ बेड पे होता है तो ही विल बी फुल ऑफ सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट, हताशा, भाई सब कुछ सब खत्म ही होने वाला है। व्हेन समबडी नोज कि ही इज अबाउट टू डाई इन फ्यू वीक्स और मंथ्स, नॉर्मली इंसान हताश होता है। मूरी एकदम अपोजिट है, ही इज फुल ऑफ एनर्जी, वेरी एक्साइटिंग, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाई ही इज हैप्पी, एंड ही दैट बुक विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सक्सेस एंड सैटिस्फैक्शन। सो वो बुक ये बताती है कि आप लाइफ को देख कैसे रहो, दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। अगर आप देख रहे हो कि आपका सक्सेस या सैटिस्फैक्शन पैसा है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो प्रॉब्लम करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको समझ में आएगा कि बॉस पैसा नहीं हो सकता। सो लाइक मूरी वॉज अ प्रोफेसर, ही हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट, तो ही वॉज सैटिस्फाइड दैट ही कुड हेल्प। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन मैं रोड क्रॉस कर रहा था ऑफिस से आते टाइम पे, एंड इट वॉज अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई ऑफिस टू होम, एंड इट वॉज फुल ऑफ ट्रैफिक, रेड सिग्नल, एंड एन एम्बुलेंस वॉज स्टक। बहुत छोटी सी घटना है, आई जस्ट रिक्वेस्टेड अ फ्यू पीपल, फोल्डेड माई हैंड कि भैया प्लीज साइड कर लो, गाड़ी निकाल जाने दो, एंड वेन द एम्बुलेंस पास्ड द अटेंडेंट, ही जस्ट फोल्डेड हैंड, उसने हाथ जोड़ के मुझे थैंक यू बोला, मैंने उसको सिर झुका के रिवर्ट किया, और उस पूरे दिन मुझे इतना अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। सो I'm saying that is satisfaction,
1: okay,
0: right?
1: Wow,
0: when you are touching people's life, that's satisfaction for me. For you, it may be you can help animals or anything. So, मुझे लगता है वो ढूंढना जरूरी है, rather than ये कह के कि एक settled career ले लेते हैं, पैसा कमाएंगे. That is not going to help you. So, the perspective of life is bigger. What you said कि ये life का part है, this cannot be life for sure.
1: वैसे गौरव एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि शायद मेरा भी अजम्पशन था कि भाई ये दिल्ली मुंबई वाले जो होते हैं, स्पेशली गुड़गांव वाले, ये लाइफ को भूल जाते हैं और सिर्फ सैलरी देखते हैं, लेकिन आज आपने हमारा ये अजम्पशन तोड़ा। एंड मुझे इस बात की खुशी है कि आप पैरेलल में मतलब ये प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं कि लाइफ का होना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने बहुत ही प्यारी बुक भी रिकमेंड की है, ट्यूजडे विद मूरी।
0: यस,
1: और मुझे लगता है कि हमारे अगर कोई लिसनर सुन रहे हैं तो उनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि गौरव हर बुक मांग के नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ बुक खरीद के पढ़ना चाहिए। तो अगर कोई गिफ्ट करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो यार खुद को गिफ्ट, मुझे लगता है खुद को करो गिफ्ट, ये बहुत जरूरी है। तो सक्सेस पे बात आप कर रहे थे और उसके बाद सेटिस्फेक्शन पे बात हो रही थी, चलिए ये भी जानने वाले हैं कि भाई ये सक्सेस क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है, और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो कौन सी स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है, किसी भी आप फील्ड में जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां उनकी जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि लैंग्वेज की जो बात हुई थी, इंग्लिश बहुत बड़ा कहीं ना कहीं वो है ना, हौवा है।
0: यस,
1: गोंडा वालों की भाषा में कहें तो ये हौवा है। तो इस हौवा को कैसे सही करना है, ये सारी चीजें हम आपसे जानने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जो है वो बहुत बड़े बड़े और बहुत अहम अहम सवाल है जिसका जवाब आज मिस्टर गौरव देने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये कहूंगा कि भाई आप इस म्यूजिकल ब्रेक को एंजॉय करिए, जाइएगा कहीं मत। आते हैं छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप सुन रहे हैं गोंडावाला FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
6: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। 88404594। अब सपने होंगे साकार।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने स्पेशल शो गोधुली में। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज हमारे साथ वाइब्रेंट पर्सनालिटी मौजूद है मिस्टर गौरव पांडे, नेशनल हेड की अकाउंट्स एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं और साथ ही साथ आपकी स्माइल के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आप हम इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं कि मैं अच्छे से क्वेश्चन पुट अप कर पा रहा हूँ। सो गौरव, एक सवाल और है जो बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि जो आपने अपनी जर्नी बताई उसमें नजर आया कि आप अलग अलग फील्ड्स में गए या आपने अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद उन स्किल्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता है कि वो स्किल्स किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी फील्ड में जाए लोगों के लिए जरूरी है। यानी अगर हम एक इन शॉर्ट कहें कि एक आम इंसान के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है किसी भी फील्ड में वो आगे बढ़ने के लिए, तो बेसिक्स स्किल्स कौन कौन सी, आपने क्या ऑब्जर्व किया है?
1: तो इफ यू आस्क मी वन कोर स्किल, अगर मुझे कोई एक कोर स्किल पिकअप करनी हो जो शायद करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन जनरल आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी,
1: तो मुझे लगता है कि वो टाइम है और उसका मैनेजमेंट है। तो देयर इज अ सेइंग दैट द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी इन द वर्ल्ड इज टाइम। सो बाकी सब कुछ कमा सकते हैं बट टाइम कमा नहीं सकते। यू हैव लिमिटेड टाइम इन योर लाइफ, इन योर डेली रूटीन, एंड द गुड पार्ट अबाउट टाइम इज दैट एवरीबॉडी हैज द सेम टाइम। यू ऑल्सो हैव 24 आवर्स, आई ऑल्सो हैव 24 आवर्स। अगर मैं और आप कम्पीट कर रहे हैं और इट्स अ आई मीन द लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट? तो आप वो अलग क्या करें कि आप दूसरों से बेहतर कैसे बन सकते हैं, दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू हियर।
0: एग्जैक्टली।
1: और सो आपका टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत हेल्प करता है। अब सवाल ये है कि हम सबने सुना है टाइम मैनेजमेंट, तो सभी को पता है कि टाइम मैनेजमेंट करना है।
0: एग्जैक्टली।
1: बट करना कैसे है? देर आर मेनी प्रिंसिपल्स, बट मैं बात करूंगा कि पिछले 14-15 सालों में मेरे लिए एक प्रिंसिपल जिसने हमेशा बहुत हेल्प किया है,
0: ओके,
1: इट्स अ 4 quadrant टाइम अलोकेशन। सो दिस कॉन्सेप्ट, बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ये, ओके, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, सो आई विल कीप कोटिंग बुक्स।
0: ओके।
1: उसका रीजन ये है कि क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी खुद की किताबों से बाहर निकलिए और बहुत अच्छी अच्छी किताबें दुनिया में हैं, उनको पढ़िए, क्योंकि उनसे बेहतर गाइड आपको कोई कर ही नहीं सकता। मतलब आप ये समझ लीजिए, सबसे सस्ता दूसरों के गलतियों से अगर आपको कोई सिखा सकता है तो वो किताबें ही सिखा सकती हैं। सो देयर इज अ बुक कॉल्ड ईट दैट फ्रॉग। अनदर बहुत छोटी सी किताब, और ये आपको टाइम मैनेजमेंट का बाइबल बोलते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है 4 quadrant। तो कोई काम है या कोई, यू टेक एनी वर्क, वेदर स्टडी या कोई, या आपको किसी आपकी माता जी ने आटा लाने के लिए बोला है, बहन ने कपड़े सिलवाने के लिए बोले हैं, पापा ने बिल भरने के लिए बोला है, या टीचर ने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बोला है, एवरीथिंग विल फिट इनटू दिस 4 quadrant। वो है क्या कि कोई काम अर्जेंट है और कोई काम इम्पोर्टेंट है, या कोई काम अर्जेंट तो है बट इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, और ना वो इम्पोर्टेंट है ना वो अर्जेंट है। तो ये 4 part है। मैं आपको थोड़े एग्जांपल से समझाता हूँ
0: जी,
1: कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ, अदनान आज आपको ना ये बिजली का बिल भरना है, इसकी लास्ट डेट है। अब ये काम इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, क्योंकि अगर आज आपने नहीं भरा तो आपको लेट पेमेंट फीस लगेगी।
0: एग्जैक्टली।
1: और ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर बिल नहीं भरा तो लाइट जाएगी,
0: राइट?
1: सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपको यही बोलता हूँ कि अदनान ये बिल भरना है, मंथ एंड तक भर देना, बट याद से भर देना, इट्स इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट अर्जेंट,
0: राइट?
1: तीसरा मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको बोलता कि अदनान ये ना कमरे की सफाई कर देना, एंड यू हैव अ यंगर ब्रदर, मैंने तो बहुत यूज किया है अपने छोटे भाई को, आप भी यूज कर सकते हो।
0: करता हूँ।
1: करते हो, आई एम श्योर वो ये सारे छोटे भाइयों का दर्द होगा, बड़े भाई उनसे बहुत काम करवाते हैं। तो
0: जी
1: मान लीजिए मैंने आपको बोला कमरे की सफाई करनी है, अदनान आई बाय एंड ऑफ द डे आई वांट दिस टू बी क्लीन, ना ये अर्जेंट है और आपके लिए तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, बिकॉज आपके पास एक हेल्पिंग हैंड है,
0: एक हेल्पिंग।
1: सो यू कैन डेलीगेट दिस वर्क टू समबडी। सो इफ इट इज अर्जेंट एंड इट इज इम्पोर्टेंट, डू इट इमीडिएटली। इफ इट इज अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, देन ऑल्सो यू हैव टू डू इट इमीडिएटली। बट इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, देन यू प्लान फॉर इट। अगर आपने एक अगर मैंने बोला है आपको कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, अगले हफ्ते सबमिट करना है, सो यू हैव 1 week का टाइम। इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, बट इट इज नॉट अर्जेंट। तो आप उसको प्लान करिए, आप ये प्लान कीजिए कि थर्सडे सेकेंड हाफ में मैं और कुछ नहीं करूंगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कमरा बंद करके प्रोजेक्ट बनाऊंगा। यू ब्लॉक योर टाइम, यू ब्लॉक योर कैलेंडर। सो अभी आपने क्या किया, जब आप ये करना शुरू करेंगे, आप हर चीज को इन 4 part में बांटने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। अभी जैसे मेरे लिए it is very easy. I can quickly pick up something and put it into one of the quadrant. और जैसे ही मुझे पता चलता है ये किस टाइप का काम है, मैं accordingly act करता हूँ. इससे होता क्या है अदनान कि मेरे पास टाइम बच जाता है. अब आप सोचिए कि अगर आपने ही खुद से सफाई शुरू कर दी होती, you would have spend at least half an hour, 45 minutes to clean the room.
0: बिल्कुल.
1: But you did not do it. आपने delegate कर दिया और आपने वो 45 मिनट बचा लिए. अब उसको आप यूज कर सकते हो अपने इम्पोर्टेंट वाले काम में, आप उसको यूज कर सकते हो अपने अर्जेंट वाले काम में. सो टेक्निकली अब आप 45 मिनट्स अहेड हैं अपने पियर से. तो ये मैं इनफैक्ट अपनी ऑफिस में भी ये बहुत करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी टीम है और बहुत सारे काम होते हैं
0: जी.
1: और एवरीथिंग आई इवेल्युएट एंड आई कीप पुशिंग इट टू वन ऑफ दी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है तो कर रहा हूँ, नहीं है तो इसको पुश. अगर ये इम्पोर्टेंट भी नहीं, अर्जेंट भी नहीं है तो somebody else will handle. This does not deserve my time. So start valuing your time. जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले पैसे की बात कर रहे थे दान, rather than value finding money, start increasing the value of your time. अगर आपके पास एक घंटा है and if you're one और आपको मान लीजिए एक फोन खरीदना है, और आपको या तो आप दुकान पे जाके खरीद सकते हो, शायद आपको 100 रुपए डिस्काउंट या 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो. 500 रुपए महंगा है बट घर पे बैठ के आ जाएगा एंड इट विल सेव माय वन आवर. योर इफ योर वैल्यू ऑफ योर टाइम इज मोर देन 1000 रुपीज, देन डोंट गो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए. सो टेक्निकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाइए और फिर देखिए आपकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पैसा तो फ्लो हो ही रहा है. सो दैट इज द रीजन आई सेड कि टाइम इज अ करेंसी, इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी. So that is how I manage my time and I highly recommend ki people should start doing it. And the second biggest skill is, so there are two school of thought. One people says do multitasking. Second people say do focus task. Mera manna hai ki aap focus task mein hamesha better result leke aate hain. But problem ye hai ki hamara focus bahut mushkil hota hai focus kar pana. Kyunki jaise hi aap books pe dhyan dete ho, aapko samajh mein aata hai ki wo aaj shaam 6 baj gaye hain, chaat ka thela lag gaya hoga, to udhar mere dost pahunch gaye honge, chai ki tapri pe pahunchna hai. So it will keep distracting, right? So it is very difficult to focus.
0: Exactly.
1: So there is a technique called Pomodoro. You will find this in the book. So it says 20 minutes aap focus rehke kaam kar lo, uske baad 5 minutes का ब्रेक ले लो एंड डू इट इन 4 parts एंड देन गो फॉर अ 30 minutes ब्रेक. जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि 20 मिनट तक काम कर लो, 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा. सो यू आर गिविंग कैरेट टू योर ओन माइंड कि देखो अगर तुमने 20 मिनट ईमानदारी से काम किया तो 5 मिनट का तुमको एकदम ब्रेक मिलेगा. तुमको सोशल मीडिया यूज करना है, दोस्तों से बात करनी है, व्हाटएवर यू वांट टू डू. एंड इफ यू डू इट इन 4 साइकल्स यू विल बी एबल टू डू 30 मिनट, यू विल बी एबल टू गेट 30 मिनट्स लॉन्ग ब्रेक. सो दिस इज अ वे टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड. सो दीज टू स्किल्स आर एक्चुअली अदान इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर करियर, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बींग. सो ये स्किल्स हैं जो मेरे पूरी लाइफ में, वेदर इट इज पर्सनल और प्रोफेशनल, ऑलवेज हेल्प एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद द लार्जर ऑडियंस सो दैट दे कैन आल्सो यूज इट.
0: क्या बात है, तो बड़ी स्किल्स के बारे में आपने बताया और मुझे लगता है कि हाँ ये हर किसी शख्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. चूंकि बहुत अच्छे से आपने बताया और आपने बुक भी कोट की कि कौन सी बुक से आपने इस चीज को सीखा. Yes. और मुझे भी ऐसा लगता है कि खुद की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए घर में जहाँ पर आप टाइम स्पेंड करें. अक्सर क्या होता है, लोगों को लगता है कि बुक पढ़ने में टाइम जाता है, लेकिन ये वही वाली मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि भाई दो लकड़हारे थे. एक जो था वो अपनी कुल्हाड़ी से बस काटता जाता था, एक होता था कि कुछ टाइम का वो धार देता था.
1: करेक्ट.
0: तो जो धार देने का वक्त होता था वो जाता तो था लेकिन उसमें वो 5 पेड़ काट लेता था, और जो धार नहीं देता था वो 5 से 4 पे आया, 4 से 3 पे आया, 3 से 2 पे. तो ये धार देना बहुत ज्यादा जरूरी है और बुक्स मुझे लगता है बहुत अहम रोल अदा करती है.
1: बिल्कुल.
0: एक बात मुझे और जाननी है, क्योंकि अभी आपकी बातों से निकल के आया है, मुझे ऐसा लगता है कि रिवॉर्ड एक सिस्टम है. सो रिवॉर्ड सिस्टम कितना ज्यादा मायने रखता है, अगर स्पेशली हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग पे बात कर रहे हैं. सो रिवॉर्ड सिस्टम किस तरह से काम करता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, स्पेशली हम बात करें, और पेरेंट्स को इसको लेकर के क्या करना चाहिए.
1: सो ये रियलिटी है अदनान की रिवॉर्ड स्टूडेंट नहीं, मेरा और आपके लिए भी उतना ही अच्छे से काम करता है. हमारे लिए मतलब हर इंसान के लिए रिवॉर्ड का डेफिनेशन चेंज होता रहता है. शायद मुझे और आपको कोई एक चॉकलेट पे कन्विंस नहीं कर सकता, बट समथिंग एल्स माइट एक्साइट अस कि ठीक है अच्छा ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, और मे बी इफ वी गेट अ ट्रिप टू लंडन और पेरिस वी माइट गेट एक्साइटेड.
0: सो
1: आई थिंक रिवॉर्ड इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल एंड बट इट शुड बी यूज्ड वेरी स्मार्टली. सो एक डिफरेंस होता है कि आप बच्चे को रिवॉर्ड कर रहे हो या ब्राइब कर रहे हो. सो इफ यू से फॉर एवरी स्मॉल थिंग, इफ यू से ये तुम करोगे तो वो मिलेगा, वो तुम करोगे वो मिलेगा, देन ही विल से कि अब मैं तभी कुछ करूंगा जब मुझे कुछ मिलेगा.
0: कुछ मिलेगा, एग्जैक्टली.
1: सो रिवॉर्ड शुड हैव इट्स ओन वैल्यू, बट इट मस्ट बी देयर इन लाइफ बिकॉज. सो जैसे जब मेरी मेरी 4-5 साल की बिटिया है, सो जब उसके कॉलेज में कुछ वो बहुत अच्छा करती है, उसने बुक्स अच्छे से रीड कर ली या कोई पोयम पढ़ के सुना दी बिना देखे बुक्स को, तो उसको स्टार मिलता है एंड शी गेट्स वेरी एक्साइटेड कि देखो पापा मुझे स्टार मिला है. एंड एज अ पेरेंट मी एंड माई वाइफ सेलिब्रेट्स इट, वी टॉक्स अबाउट इट, वी स्पेंड टाइम कि अरे ये तो बहुत सही चीज हो गया यार. टेक्निकली इट हैज नथिंग, राइट? इट हैज नो वैल्यू, बट वी मेड इट सो बिग फॉर हर दैट इट्स अ रिवॉर्ड फॉर हर. एंड next time when something is not right, she's not reading, then we can say ki dekho Umisha agar tum nahi karoge na next time ho sakta hai star kisi aur ko mil jaye, then she's like nahi nahi mujhe to ye star carry karna hai, right? So I think wo bahut zaruri hai aur wo aapke subconscious mind ko bahut impact karta hai. It is a simple science Adnan that your subconscious mind gets a signal ki boss this is something which is right thing to do, which is why I am getting this reward. But the frequency, the type of rewards are very, very critical to when you are selecting. It should not be ki acha theek hai aaj tumne poem achhi ki to tum iPhone le lo. That shouldn't be the
0: exactly.
1: is also something which parent needs to understand. Otherwise it becomes difficult for you in life kyunki agli baar usko iPhone se bhi upar kuch chahiye hoga, so you will be buying a Thar then.
0: Out of budget.
1: Yes. So but reward is very, very critical. I think If it is used well.
0: Exactly, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कोई और क्या हमें खुद अपने को रिवॉर्ड देते रहना चाहिए, जैसे कि होता ना पीठ थपथपाना.
1: Yes.
0: तो बहुत छोटी छोटी सी बात, आपने कहा कि 20 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक, तो ये बहुत छोटे छोटे से रिवॉर्ड हैं. कभी आपने कुछ अच्छा किया खुद के लिए, जाकर के आप मार्केट से कुछ अपने को एक चॉकलेट एक टॉफी भी दे सकते हैं. और मुझे लगता है वो खुद में जो सेलिब्रेट करते ना वो बहुत बढ़िया होता है. मुझे अभी तक याद है कि हम लोगों का कम नंबर आया था, तो मैं और मेरे फ्रेंड गए थे गुजिया खाने स्पेशली सेलिब्रेट किया था कि कम नंबर आया, पहली बार ऐसा हुआ. सो मतलब ये होता है कि आप रिवॉर्ड देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि बेहतर हो रहा है और कॉन्फिडेंट आप और भी ज्यादा फील करते हैं. सो ये रिवॉर्ड सिस्टम प्राइब ना हो जाए. बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई बच्चे को लालच दे दिया जाता है कि तुम हाई स्कूल या इंटर कर लो फर्स्ट डिविजन तो हम तुम्हें स्कूटी देंगे, तो ये एक अलग चीज है. तो ये इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए. अच्छा, क्वालिटी पे अगर हम बात करें गौरव, तो दो तरह से होता है. मान लीजिए जो मुझे सुनते हैं वो तो कहते हैं भाई आपकी बचपन से आवाज बड़ी अच्छी है.
1: हाँ.
0: चलिए मैं मान लेता हूँ कि बचपन से मेरी आवाज काफी बेस वाली है, लोगों को अच्छी लगती है. लेकिन जो कॉन्फिडेंस आज लोग देखते हैं कि मैं स्टेज पे हजारों के बीच में जाता हूँ, बोलता हूँ और परफॉर्म कर सकता हूँ, वो एक टाइम ऐसा था कि जब कोई भी इवेंट होता था मैं वहां पे जस्ट बैठ के देखता था. तो अगर वहां के वॉलंटियर कहते थे कि आप इस सीट से उठ करके दूसरी सीट पे जाकर के बैठ जाइए, तो उस वक्त ये आता ख्याल कि भी मुझे कुछ लोग तो देखेंगे.
1: हाँ.
0: अरे मैं कैसे उठूंगा, अच्छा मैं खड़ा होऊंगा तो किधर कोई देखेगा, कोई मेरे कपड़े से मुझे जज तो नहीं करेगा. मतलब आप अननेसेसरी सोच लिए कि वो थॉट जिसका कोई मतलब नहीं है.
1: करेक्ट.
0: उस लेवल से मैं आज यहाँ पे आया हूँ. तो मुझे भी ऐसा लगता है क्या कुछ चीजें खुद से क्रिएट की जा सकती हैं, या सब कुछ आपके जन्म से ही होता है, वही आप उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बताएं.
1: बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने अदनान, और आपको इसका जवाब मैं एक स्टोरी से देता हूँ. तो एक टेस्ट होता है DMIT जो आपको बताता है कि आप किस स्किल्स के साथ बॉर्न हुए हो. इट्स अ टेस्ट विच जो आपके फिंगरप्रिंट्स के एनालिसिस पे बेस्ड होता है. तो इस जब मैं ऑलमोस्ट 10-11 साल नौकरी कर चुका था, आई वाज डूइंग वेरी वेल, उस टाइम जस्ट प्रमोट करके मुझे नेशनल हेड बनाया गया था. बट मेरे अंदर हमेशा से था कि हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ टू मेक माई सेल्फ बेटर. तब मुझे DMIT टेस्ट के बारे में पता चला जो आपको बताता है कि आप कौन सी क्वालिटी के साथ पैदा हुए हो. मैंने ये टेस्ट करवाया और ये टेस्ट में आपकी क्वालिटी के साथ आपको एक रिकमेंडेशन भी देता है कि आपके पॉसिबल सक्सेस वाले करियर ऑप्शंस कौन से हैं. मुझे 40 करियर ऑप्शंस दिए गए जिसमें 39 करियर ऑप्शंस में या तो 5-star था या 4-star था. देयर वाज ओनली 1 करियर ऑप्शन जिसमें 1-star था, विच मींस कि इस करियर को आपको कतई ऑप्ट नहीं करना है,
0: नहीं करना है.
1: और वो करियर था मैनेजमेंट जो मैं कर रहा था.
0: सो
1: ये स्टोरी मैं उन्होंने आपको इसलिए बताई कि बेसिकली ये बताता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी सक्सेस गारंटी करेगा अगर आप उस क्वालिटी के साथ पैदा हुए हो. आपको शायद थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शायद थोड़े ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, बट somebody who did not born at all with the management quality has become the national head of one of the very renowned brand And I was the youngest national head.
0: Wow,
1: I was 32 when I became the national head. तो पॉइंट ये है कि आप अगर कुछ आपको कुछ करना है तो जरूरी नहीं है कि आप उस क्वालिटी के साथ पैदा ही हो तो ही होगा. आपका इंटरेस्ट है, आपको मजा आ रहा है काम करने में, इन सम टाइम यू विल रियलाइज कि ओके यू हैव बिकम एक्सपर्ट इनटू दैट फील्ड. सो दैट्स व्हाट इट इज.
0: वाओ, क्या बात है. मतलब आपने अपनी स्टोरी से बता दिया कि आखिर कुछ क्वालिटीज आपकी जन्म से होती है और कुछ को आप नर्चर करते हैं.
1: करेक्ट.
0: आप उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं. ये बहुत जरूरी है. अगर मैं जानना चाहूं कि यानी आपके अकॉर्डिंग, गौरव के अकॉर्डिंग, कि भाई उनकी लाइफ की अचीवमेंट कौन कौन सी है, तो वो क्या कोट करना चाहेंगे, किस किस चीज को अपनी लाइफ की अचीवमेंट बताना चाहेंगे?
1: तो अगर आप मुझसे प्रोफेशनली पूछेंगे तो मैं और ये मेरा फेवरेट आंसर है व्हेन आई अपीयर इनटू एनी इंटरव्यू, जब पूछा जाता है कि टेल मी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट यू हैव, तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि जितने भी आज तक की जर्नी में, 14-15 साल की जर्नी में, जितने भी लोगों ने मेरे अंडर काम किया है, ऑल ऑफ देम गॉट प्रमोटेड इन लेस देन 2 years.
0: वाओ, क्या बात है.
1: सो दैट इज द बिगेस्ट सैटिस्फैक्शन फॉर मी, दैट एज अ लीडर आई एम एबल टू ग्रूम एंड कोच पीपल हु आर वर्किंग अंडर मी एंड दे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव बिकम एज गुड एज दैट दे कैन रिप्लेस मी एंड आई कैन मूव फॉरवर्ड. तो मुझे लगता है प्रोफेशनली मेरे लिए बहुत सैटिस्फैक्टरी लगता है व्हेन पीपल टॉक अबाउट इट कि सर आपकी टीम में लोग बहुत खुश रहते हैं. सो दैट्स अ कॉमन फीडबैक आई रिसीव फ्रॉम मल्टीपल वर्टिकल हेड्स कि आपकी टीम बहुत खुश रहती है एंड दैट इज द रीजन वी परफॉर्म द वे वी डू. सो मुझे लगता है वो मेरी सबसे बड़ी प्रोफेशनल अचीवमेंट है. पर्सनली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है दैट आई एम दी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर माय फैमिली. व्हेन आई एम इन दी हाउस पीपल गेट टू नो कि हाँ ठीक है गौरव है घर
0: पे. क्या बात है, तो आप एक अच्छे एंटरटेनर भी हैं फैमिली के लिए.
1: सो या दैट इज हाउ इट इज.
0: क्या बात है, बड़ी शानदार तरीके से आपने इस चीज का आंसर किया. और ये सच है कि आपके लिए अचीवमेंट्स क्या है ये आपके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि अचीवमेंट्स और सक्सेस मुझे लगता है ये आप खुद इसको डिफाइन करते हैं कि है क्या.
1: True.
0: तो इसी के साथ लगे आज सोच रहे हैं हम, ये भी भाई जुड़ा सवाल है पूछ ले कि व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू.
1: हाँ, तो बड़ा रिलेटिव टर्म है अदानगे. सक्सेस सबके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है. मुझे लगता है कि सक्सेस इज समथिंग व्हेन यू लुक बैक एंड सी देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हुम यू हैव हेल्प्ड एंड दे आर डूइंग बेटर व्हाट दे वर डूइंग अर्लियर. If you can touch people's life, I think that is what success is to me. जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं अपनी success measure ही ऐसे करता हूँ कि मेरी team ने कैसा किया. How am I doing professionally and personally? Am I able to touch people's life in a positive way or not? If I am doing that, that gives me satisfaction. And for me, as I was saying some time back, कि मेरे लिए satisfaction ही success है. If I am satisfied what I am doing, even if I am not earning as much as my peer is earning, even if I am not having a bigger house, even if not having a fancy car, but if I am happy, if I am satisfied, if people know me for right reasons, I think that is what success is to me. So
0: क्या बात है भाई, तो ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात आपने कर दी और मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है कि शायद आज के इस कॉन्वर्जेशन के बाद, इस टॉक शो के बाद, मुझे भी काफी चीजों पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और मैं खुशनसीब हूँ कि आज आपसे मेरी बात भी हो रही है. एंड सच में मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आउटकम जब नजर आता है लोगों में.
1: Yes.
0: कि आपकी वजह से कितने लोग इम्पैक्ट हुए और अच्छे वे में इम्पैक्टेड हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है.
1: True.
0: और आपने अगर ऐसा किया तो ऑफकोर्स आप मेजर कर सकते हैं और सेलिब्रेट भी करना चाहिए भाई कि आपने इतने
1: Yes.
0: लोगों की लाइफ में एक अच्छा चीज लेकर के आए. और मुझे लगता है लीडरशिप क्वालिटी जो है वो सच में बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद से हटते हैं, आप एक ग्रुप के लिए सोचते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हैं, एक बड़े लार्ज पीपल ऑफ लोगों के लिए सोचते हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं. तो ये मुझे लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिटी की बात होती है कि भाई बस अपना देखो, अपने से मतलब है, बाकी दुनिया से हमें क्या लेने देना. तो इस तरह से मुझे लगता है सोसाइटी में भी अपने प्रॉब्लम्स आती हैं और आपके अंदर ये क्वालिटी जो है लीडरशिप क्वालिटी वो नहीं हो पाती है. और किसी भी संस्था के लिए अगर आपको हेड बनाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सबको लेकर के चलना है.
1: बिल्कुल.
0: और आपकी बड़ी प्रैक्टिकल बात मुझे लगी कि यार कि आपकी टीम के मेंबर्स आपका क्यों ही कहना मानेंगे, तो अब आपको देखना है कि हर बंदा कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस तरह से उसको उस ट्रैक पे लाया जा सकता है एक अच्छे वे में, ताकि उसकी भी ग्रोथ हो. क्योंकि यही होता ना कि स्टार्टिंग में चीजें नहीं समझ में आती है, शायद हम भी कहीं गए हों तो हम किसी और गुमान में हो, हम जॉब कर रहे हो, बट कोई ऐसी चीज हमारे टीम लीडर के साथ रही हो, कॉन्वर्जेशन या कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आया हो जिसके बाद से लगा हो कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा अब ध्यान देने की जरूरत है, मैं अब तक शायद बहुत ज्यादा लूज था और इस चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था. तो ये बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। एंड चूंकि आप इंडिया हेड हैं, जैसा कि अभी हमने अपने श्रोताओं से भी कहा कि नेशनल हेड हैं की अकाउंट्स एंड एक्सपोर्ट्स बिजनेस, सो ये आपका इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में जरा बताएं।
1: सदान, बेसिकली एज अ हेड ऑफ की अकाउंट्स एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, ये दो बहुत क्रिटिकल यूनिट हैं बाटा इंडिया के लिए। सो हमारे यहाँ मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स होती हैं, सो वी कॉल इट प्रॉफिट सेंटर्स। सो जैसे कि एक बिजनेस यूनिट है, जैसे आप जब किसी रिलायंस या डी मार्ट या मोर या शॉपर स्टॉप जाते हैं, और अगर आपको वहाँ बाटा का प्रोडक्ट दिखता है तो वो मेरी टीम की वजह से दिखता है। ओके, बेसिकली ये वो डिविजन है जो मेरी टीम हैंडल करती है। एक्सपोर्ट एक बिजनेस है जहाँ पे हम बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और मल्टीपल आइलैंड्स पे, जहाँ पे उनका खुद का प्रोडक्शन नहीं होता फुटवेयर का, वहाँ पे हम उनके लिए हम इंडिया में प्रोडक्शन करके और वहाँ पे अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करते हैं और वहाँ पे सेल करते हैं। तो ये दो बिजनेस यूनिट्स हैं। एज अ नेशनल हेड, मेरा काम ऑनेस्टली बिजनेस लाना तो नहीं ही रहता, क्योंकि उसके लिए मेरी टीम है और वो बहुत इक्विप्ड है करने में। मेरे लिए जो प्राइमरी रोल होता है कि मेरी जितनी भी, सो आई हैव अबाउट 9 पीपल हु आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग इनटू मी, एजीएम एंड डीजीएम लेवल पीपल, एंड देन द एंटायर टीम इज मच बिगर। 200 लोग हैं जो मेरी टीम में हायरार्की में काम करते हैं। मेरे लिए एज अ लीडर मेरा एक ही काम है, उन सबकी लाइफ आसान करना, प्रोफेशनली एंड पर्सनली बोथ। सो इफ समबडी इज गेटिंग स्टक, आई शुड बी देयर टू गाइड देम, कोच देम कि अब इस सिचुएशन से निकलना कैसा है, फॉर टू रीजंस। अगर मैं उनको सिचुएशन में नहीं डालूंगा, मैं ही सॉल्व करता रहूंगा, तो कभी इतने इक्विप्ड नहीं होंगे कि वो कल को वो नेशनल हेड बन पाए। तो वो एक रीजन है कि उनको सिचुएशन में डालना, उनको ये समझाना कि कैसे अब इस सिचुएशन को सॉल्व करके आपको कैसे निकलना है। सो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। सो एट अ लीडरशिप पोजीशन यू आर मोर टुवर्ड्स सॉल्विंग पीपल्स एंड बिजनेस प्रॉब्लम, सो दिस इज वन पार्ट। देन स्ट्रेटेजिकली डिजाइनिंग, सो वाइल वी आर सिटिंग इन 2024, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन 2030। सो एज अ लीडरशिप मुझे टीम को विजन देना है कि जब टीम, सो सपोज वी आर डूइंग 150 crores, आई एम सेइंग हाउ आर वी गोइंग टू डू 300। ऑन द फर्स्ट फेज लोगों को लगेगा पागल ही हो गए क्या, मतलब डबल कैसे हो जाएगा।
0: एग्जैक्टली।
1: एंड देन बट इट्स अ ब्यूटी अदनान, एंड इट्स अ मॉडल विच हैज वर्क्ड फॉर अस। ड्रीम सो बिग दैट इट इज ग्लोरी इवन टू फॉल एंड फेल। सो इतना बड़ा ड्रीम बनाओ कि उसको, दिस इज वन वर्टिकल आई हैव क्रिएटेड मायसेल्फ, इट वाज जीरो व्हेन आई जॉइंड, इट वाज जीरो, आई हैव क्रिएटेड दिस वर्टिकल। सो आई वाज टॉकिंग टू माय बिजनेस हेड दैट टाइम, एंड आई सेड आई वांट टू मेक दिस बिजनेस 100 करोर इन लेस देन 3 इयर्स। ही सेड प्रीटी एंबिशियस, राइट? आई सेड हां, इट इज एंबिशियस, बट दैट इज व्हाट माय विजन इज, वी विल डू इट। द टीम वाज कि सर कैसे ही करेंगे ये, आई सेड दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट एज अ टीम। वी स्टार्टेड बिल्डिंग, हमने प्लान बनाया, वी एक्टेड ऑन इट, नॉट एवरी प्लान वर्क्ड फॉर अस, बट जो लोगों को लग रहा था कि शायद ये हम शुरू करेंगे 25-30 करोड़ का वर्टिकल बनाएंगे पहले साल में, वी वेंट स्ट्रेट अवे, वेंट हेड टू 75 crores।
0: ओ क्या बात है।
1: वी कुडंट टच 100, बट आवर विजन वाज सो बिग, द टारगेट वाज सो हाई दैट टू चेज दैट टारगेट रादर देन रीचिंग 25-30, वी वेंट अप टू 70-75। सो दैट इज द लीडर्स जॉब, दैट क्रिएट अ विजन, गिव देम अ क्लियर गाइडेंस, दैट इज वॉट माई कोर जॉब इज। And then also making sure as a leader that the relationship not be transactional. So head of the department, I know that what is happening, ki mere kis employee ki behan ki shaadi hai, kis employee ki maa admit hai. So I make sure that I connect with them at a personal level. Because if you're only connecting them professionally and your relationship is transactional, you will never get loyalty. So people don't stay in my team and stay happy in my team because I groom them, coach them. I make sure that they get a comfortable life. I push them ki tumne 3 mahine se chutti kyun nahi li, I don't want to see you in office, just disappear. I don't know what you will be doing, but then you cannot be in office. So these kind of culture actually pushes them, that sometimes they don't even see it's a Saturday, Sunday, 9 o'clock in the night, they work if it is required. So as a leader, you have to create that environment where people feel safe. ये मेरा core responsibility होता है as a national head.
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया कि आपके डिजिग्नेशन पे आखिर आप कर क्या रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और बात करते करते मैंने ध्यान दिया कि अब चलने का वक्त भी आ गया है।
1: हाँ, पता ही नहीं चला कैसे।
0: और पता बिल्कुल नहीं चला, मुझे लगता है कि आपके तो 4-5 और इंटरव्यूज करने चाहिए एंड उसके बावजूद भी कम हो जाएगा। सो बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से कोर पॉइंट्स पे बात की, चूंकि आज का जो युवा है उसको चूंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा है बट क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने एक एक चीजों को बताया, जिस भी प्रश्न को हमने किया, जिस भी क्वेश्चन को किया, उसका आपने जो उत्तर दिया बहुत ही सहजता और सरलता के साथ में दिया। सो इसके लिए हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। एंड बस जाते जाते लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई गौरव का लाइफ मंत्रा क्या है?
1: ओके, सो नाउ दिस इज अ लिटिल डीपर वन यू हैव आस्क। I think Adan, my life's mantra is very similar to what I was talking some time back. Ki what is the purpose of my life? That is something which I have been exploring. So, अभी थोड़ी देर पहले हम exploration की बात कर रहे थे।
0: जी।
1: So, rather than career or success, I have been asking this question to myself that what is the purpose of my existence? And over a period of time, what I have realized that I become the most happy person when I affect somebody else in a positive way. So that is what my long-term vision and mantra is, that come back. It's been a long time. I have been out from the city. Now it's time that I come back. I create something which is beneficial for the society, beneficial for the people of Gonda, and I create a better place. 14 साल पहले गौरव को बाहर जाना पड़ा बिकॉज शायद उस टाइम पे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उतने ऑप्शंस नहीं थे। आई डोंट वॉन्ट कि आज 14 साल बाद दूसरे गौरव को भी शहर से बाहर इसलिए जाना पड़े क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाहर जाना में बुराई नहीं है, बाहर जाना चॉइस होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं होना चाहिए।
0: राइट।
1: तो मेरा, इफ यू आस्क मी व्हाट इज गोइंग टू बी माई मंत्रा इज दैट द सिटी हैज गिवन मी अ लॉट, इट्स टाइम टू पे बैक।
0: क्या बात है, तो भाई शहर ने बहुत कुछ दिया है और अब लौटाने का समय आ गया है। फिलहाल चलने का भी समय आ गया, लेकिन उससे पहले बस अब ये आज का जो एकदम लास्ट क्वेश्चन है कि भाई गोंडा एफएम में आप इस वक्त बैठे हुए हैं, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, जो कि गोंडा और देवी पाटन मंडल का पहला एफएम है। इस एफएम के आने के बाद आपको क्या उम्मीदें हैं कि गोंडा में किस तरह की वैल्यू एड करेगा और किस तरह का चेंज ला रहा होगा गोंडा एफएम?
1: सो ऑनेस्टली अदान, जब मैंने सुना कि ये एफएम गोंडा में आ रहा है, इट वाज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। और अगर आप इफेक्ट के बारे में पूछो तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि हमने अभी कितने सारे पॉडकास्ट देखे, हम आप बात कर रहे हैं और अभी बहुत सारे लोग और आएंगे। शायद मैं अपनी जर्नी या जो मेरे लाइफ की लर्निंग है कभी इतनी बड़ी ऑडियंस से शेयर ही नहीं कर पाता। अगर मुझे लगता है कि 45-50 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन में अगर एक चीज भी ऐसी है जो लोगों को हेल्प कर सकती है, I think your and my job is done, right? So, it is very, very critical to have a medium like this, जो बड़े एंड प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड आई थिंक जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, इंफॉर्मेशन का टाइम, इंफॉर्मेशन हैज बिकम अ की थिंग। और जिस तरीके से ज्ञानस्थली एफएम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज को लाके और लोगों से रूबरू करवा रहा है, मुझे लगता है कि you are doing a very good service to the society and to the people of Gonda. So it's a very, very good initiative. I can't thank enough to the management of Gyanasthali FM and to the team also. The kind of work all of you do, it's phenomenal. So congratulations to all of you and thank you for creating this.
0: थैंक यू सो मच। और मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा जो आप विजन लेकर के गोंडा में आ रहे हैं। बहुत सारे विशेष है और बहुत सारा साथ है, यानी जहां भी आपको लगता है गोंडा एफएम आपके साथ में है।
1: थैंक यू।
0: और ये कहीं ना कहीं साझी कोशिश होगी कि आप भी सोसाइटी के लिए करना चाह रहे हैं और हम भी सोसाइटी के लिए ही कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। सो गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि इतने बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाल करके उस फैमिली से थोड़ा सा टाइम चुरा करके आप लाए जिसके लिए आप कहते हैं कि भाई आपको बड़ा अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स आप एंजॉय करते हैं। सो थैंक यू सो मच टू यू। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक्स।
0: थैंक यू। और दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था आपको, अभी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद थे मिस्टर गौरव पांडे, जो कि नेशनल हेड हैं की अकाउंट्स एंड एक्सपोर्ट बिजनेस पाटा कंपनी से। सो आज का पॉडकास्ट, आज का टॉक शो आपको कैसा लगा, हमको कमेंट करके फटाफट से आइए और बताइए। और साथ ही जैसा कि गौरव जी ने बताया और हम भी कहते हैं, भाई स्माइल करते रहो यार, इसमें कौन सा टैक्स देना है ना। सो बाय बाय, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए गोंडावाला एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
10: फूल जब मांगते हैं परसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहां मिलती है।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840

0: 95-84। अब बारी है आपकी।
1: श्रोताओं, तो वक्त हो चला है भाई आपके इवनिंग वाले शो का, यानी कि गोंडा मैसेज मसाला विद आरजे बीना वाला। लेकिन है आज फिर से आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और जो लेके आई है कुछ खास, और खास वही है भाई, आज है बुधवार। बुधवार यानी वेडनेसडे, जिस दिन का बेसब्री से आपको भी इंतजार होता है, हमें भी होता है, मतलब जो होस्ट करता है उसको भी, क्योंकि आज के दिन भाई गेमिंग शेमिंग होती है, वो भी आप ही के द्वारा। उधर से आप दो टीमों में बढ़ जाते हैं, और आज होता है अंताक्षरी का सेगमेंट, जो बहुत खास होता है, और आप लोग के हुनर के साथ में एक कंपटीशन भी आप में बिल्डअप होता दिखता है हमें, और कभी लड़के जीतते हैं तो कभी लड़कियां जीतती हैं। खैर, उस ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज है 3 जून। वैसे मुझे लगता है 2 जून की रोटी तो आपने खा ली होगी, 3 जून की तैयारी पे आप जुटे हुए होंगे, चाय शाय हो गई होगी, और हमारी जो लेडीज हैं घर में सब्जी कटिंग पे लग गई होंगी बखूबी से। और इसके अलावा जहां भी कटिंग शटिंग नहीं हो रही होगी, वहां पे फिर पूछा जा रहा होगा, एक जी बताइए ना क्या बनाया आज खाने में। अच्छा, अगर आपने बता ही दिया तो जाके मार्केट से सब्जी भी ले आइए। और ये सबसे बड़ा सवाल होता है हर एक घर का कि भैया आज खाने में बनेगा क्या। हाँ, तो ये सवाल भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में चल रहे होंगे। लेकिन मेरे जहन में भी एक सवाल है कि आज जो 3 जून है, उस दिन कुछ खास है, क्योंकि हर दिन खास होता है, और हर दिन किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेलिब्रेट कर ही रहा होता है। दुनिया इतनी बड़ी है, लोग इतने सारे हैं, और इतना सारा सब कुछ है हमारे इर्द गिर्द, बस हम वजह ढूंढते हैं सेलिब्रेट करने की। लेकिन सेलिब्रेशन की कोई वजह नहीं होती जनाब, आप जब जहां से शुरुआत कर दें बस वहीं खुशियां हैं। छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कदम से आप अपनी खुशियों को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं उस ओर जो मैं आज आपसे साझा करना चाहती हूँ। तो भाई 3 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, और ये जो दिवस मनाया जाता है वो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मनाया जाने वाला दिन, जिसका उद्देश्य बहुत ही साफ है और बहुत ही सुलझा हुआ कि साइकिल को परिवहन के एक टिकाऊ और किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में माना जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं और इससे क्या रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं। और ये सब बताएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि एक नन्हा मुन्ना बालक जब बड़ा होता है, उसको सबसे ज्यादा रुचि किस चीज में आती है? पहले तो वो खिलौनों से प्यार करता है, लेकिन जब वो चलने लगता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए होती है? साइकिल ही चाहिए होती, भले ही वो पहिए वाली हो, इधर उधर से सपोर्ट वाली हो, लेकिन बच्चों को उनकी साइकिल बड़ी प्यारी होती है ना। हमको भी थी, आपको भी है, और मतलब थी अपने बचपन में, और आज जो भी नन्हे मुन्हे हैं उन सभी को होती है, और वो मांगते भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम परिवहन की बात करते हैं तो हमारी जो शुरुआती शिक्षा होती है परिवहन के चीज़ों से जुड़ाव रखने का या उससे लेकर के आगे बढ़ने का, तो वो पहली जो पहिया जो हमारी लाइफ में हमको आगे ले जाने की कोशिश करती है वो होती है हमारी साइकिल की। तो है ना, कितनी रोचक जानकारी, और आज कितना खास दिन है। जी हाँ, आज है विश्व साइकिल दिवस। चलिए बताते हैं इसकी खासियत क्या क्या है। रोजाना कम से कम 30 मिनट साइकिल चलाने से वजन तेजी से कम होता है, दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं, और जोड़ों पर दबाव डालने बिना पैर व कमर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। और कहते भी हैं कि अगर बच्चा छोटा है तो उसको कुछ ना करो, मतलब उसको आप एक्सरसाइज मत कराओ, आप योगा शोगा मत सिखाओ, बस उसको एक साइकिल दे दो और नियमित तौर पर सुबह उठकर उसको उसकी आदत डाल दो कि वो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा साइकिलिंग करे। साइकिलिंग करने से यहाँ तक कि जब पूरी तरह से आपके शरीर में खून का दौड़ा होता है तो हाइट भी बढ़ती है। हाँ, प्रोटीन पर उसके ध्यान देते रहिए, साइकिल पकड़ा दीजिए और उसके बाद देखिए उसकी हाइट कितने अच्छे से मतलब बड़ी होती है, मतलब उसकी हाइट कितनी जल्दी से इंक्रीज करती है और बढ़ता है बच्चा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तनाव दूर करने और पूरे दिन को ऊर्जावान रखने का एक शानदार तरीका होता है। आप अगर साइकिलिंग करते हैं सुबह रोजाना मात्र 30 मिनट। इसके अलावा कौन कौन से स्वास्थ्य लाभ होते हैं? हृदय और फेफड़े के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। साइकिल चलाना एक बेहतरीन व्यायाम है, नियमित साइकिलिंग करने से हृदय की गति बढ़ती है, फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार होता है और रक्त संचार बेहतर होता है। ये दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के जोखिम से आपको काफ़ी निजात देता है। वजन घटाने में मददगार होता है। यदि आप रोजाना 30 मिनट तक साइकिल चलाते हैं तो आप औसतन 200 से 300 तक कैलोरी बर्न कर सकते हैं। सोचिए 200 से 300 तक कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म तेज होते हैं और शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी कम करने में ये बहुत मददगार होती है। इसके अलावा मांसपेशी और जोड़ों की मजबूती होती है। भाई बोलते नहीं है जो लोग को घुटनों में बहुत जल्दी दर्द होता है, खास करके उन लोगों को तो ज़रूर ही साइकिलिंग करना चाहिए जो जिनको खड़े होकर पानी पीने की आदत होती है। इससे क्या होता है, हम जब खड़े होकर पानी पीते हैं, हमारे बाबा दादा भी कहते थे कि पानी जो है वो बैठ के ही पीना चाहिए। उसके पीछे का कारण मात्र इतना ही होता था दोस्तों कि अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारे घुटनों के मतलब जहाँ जहाँ जोड़ हैं, खास करके हमारे पाँव के घुटने, वहाँ पे हमें असर देखने को मिलेगा और उसमें दर्द बहुत जल्दी हम महसूस करने लगेंगे। कम उम्र में ही हमें घुटनों के दर्द वाली बीमारी हो जाएगी। तो अगर उससे भी आप बचना चाहते हो और अगर आपको खड़े होकर पानी पीने की आदत है तो भैया ये आदत भी डाल लीजिए साथ ही साथ में कि आप साइकिलिंग करना शुरू कर दीजिए और एक शानदार कम प्रभाव यानी कि लो इम्पैक्ट वाला वर्कआउट भी हो जाएगा। पैदल चलने से पैर, जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों की अच्छी कसरत होती है और वे मजबूत रहते हैं और साथ ही साथ में पैदल मारने से और मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से भी राहत मिलता है। खुले वातावरण में साइकिलिंग चलाने से कहीं ना कहीं मस्तिष्क में आपको एंड्रोफिन जैसे हार्मोन डेवलप होते हैं जैसे जो कि हमें फील गुड फील कराते हैं और इससे तनाव, डिप्रेशन और चिंता कम होती है जिससे आप मानसिक रूप से तरोताज़ा और खुश महसूस करते हैं, खुद को बेहतर शारीरिक संतुलन होता है। जब आप बोलते हैं ना जैसे कुछ लोग को जिम जाने की आदत होती है और उन लोगों में आप एक अलग ही लेवल की एनर्जी देखते होंगे। एनर्जी वो इसलिए होती है क्योंकि वो आपकी क्षमता को डेवलप करता है, इंक्रीज करता है। कहीं ना कहीं सेम आप साइकिलिंग करने के बाद भी फील करेंगे और बेहतर शारीरिक संतुलन से ये भी होगा कि आपको कहीं ना कहीं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ चलने फिरने वाली समस्याएं आती है ना, उससे आप बच जाएंगे, वो उसमें आपको मददगार होगी। और सबसे बड़ा फायदा तो है कि पर्यावरण और जेब के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होता है। ना तेल, ना कुछ ईंधन की भी कोई चिंता नहीं करनी है आपको, बस साइकिल आपकी अच्छी होनी चाहिए और जेब खर्ची तो बिल्कुल नहीं लगनी। आप कहीं से भी कहीं भी आ जा सकते हैं और दैनिक आवागमन के लिए साइकिल का उपयोग करने से पर्यावरण में शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता। इसके अलावा ईंधन, पेट्रोल, डीजल जैसे खर्चे आपके काफ़ी क्या होते ही नहीं है भाई, आपको लगाना ही नहीं है लागत। तो सोचिए साइकिलिंग कितनी अच्छी है और कितनी ज़रूरी भी है हमारे लिए, है ना। सोचिए अगर आप नहीं करते हैं और बच्चों को दिलाने से पहले खुद के लिए एक साइकिल दिला लीजिए खुद को और उम्र की थोड़ी चिंता कम करिए। क्योंकि एक और ख़ास बात मैं आपसे साझा कर दूं, जब आप कहीं बड़े देशों में खास करके अमेरिका वगैरह में जाएंगे तो वहाँ जो लोग पैदल चल रहे होते हैं या जो लोग साइकिल से चलते हैं उनको बड़ा आदमी माना जाता है। यकीन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। वहाँ पे आप नॉर्मल लोगों को कार्स में और इन सब चीज़ों में घूमते फिरते देखोगे और जो लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि उनको माना जाता है कि डॉक्टर ने उनको बोला है कि आप पैदल चलो, आप साइकिलिंग करो। सोचिए अमेरिका भी इस चीज़ के लिए कह रहा है, फिर भारत में रह के हम कह रहे हैं आपकी अपनी आकांक्षा करिए। तो अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए भाई साइकिलिंग करना शुरू ही कर दीजिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं कहना मुझे। अब चलते हैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, लेकिन उससे पहले स्वागत कर लेते हैं अपने लिसनर्स का जो कि हमसे जुड़ गए हैं। और हाँ, हम उन लिसनर्स की भी का भी इंतजार कर रहे हैं जिनको गेम स्टार्ट करना है, जिनके लिए हमें गेम हम स्टार्ट करेंगे 6:30 से। तब तक हम आपका इंतजार करेंगे और 6:30 के 6:40 तक, क्योंकि एक प्यारा सा गाना भी हम आपको सुनाएंगे, इसके बाद में एक अंताक्षरी वाला गाना सुनाएंगे, फिर आते हैं आपके गेम की ओर यानी कि अंताक्षरी की ही ओर। फिलहाल स्वागत करते हैं धर्मेंद्र मोहन भारती जी का आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, इनके गाना काफी पसंद आया, शुक्रिया। और कमल नयन जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही साथ में हमारी चंगू मंगू की जोड़ी भी आ चुकी है यानी नीना जी और नेहा जी भी बहराइच से आ चुकी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और ये क्या भाई, हम तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेडमिल पे हमारी नीना जी कसरत करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते हैं, आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं इस गाने के माध्यम से। और ये गाना है क्या, आइए सुनते हैं। विश्व साइकिल दिवस पर ये विशेष गाना आप सभी के लिए शो चल रहा है गुंडा मैसेज मसाला, आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के साथ में।

0: For more entertainment, log on and subscribe to.
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, एक बार फिर से आप सभी को का मैं स्वागत करूंगी। सबसे पहले तो हाँ जी, आपके अपने शो यानी कि इवनिंग वाले शो में आप सभी को शुभ संध्या। गोडा मैसेज मसाला विद आरजे बीना वाला, लेकिन आपकी आज आकांक्षा है फिलहाल के लिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे साथ में शो एंजॉय करिए। फिलहाल हमारे साथ में हमारे लिसनर्स बने हुए हैं और हमने ये जो अभी नगमा चलाया, चांदी की साइकिल सोने की सीट, भाई बिना पेट्रोल डीजल के फायदे ही फायदे अनेक। अभी आपको मैंने उससे साझा भी किया, रूबरू भी किया। आज है विश्व साइकिल दिवस और साइकिल कितने फायदेमंद होती है और हर किसी को पसंद होती है। आज के जमाने में तो फिलहाल मोटर बाइक सबको पसंद हो गई है, क्योंकि मतलब लेकिन उसमें खर्चा भी होता है और कहीं ना कहीं देखिए वो हमारे बचपन की यादें कितनी सारी जुड़ी हुई हैं। और आज भी अगर हम बीमार होते थोड़ा सा तो डॉक्टर हमसे कहते भैया साइकिल चलाया करिए, है ना। और अमेरिका का तो मैंने आपको बताया ही कि अमेरिका में जो लोग पैदल यात्रा करते हैं या साइकिल चलाते हुए पाए जाते हैं, उन्हें माना जाता है बड़े आदमी हैं, क्योंकि उन्हें ये माना जाता है वहाँ के, सोचिए कि जो लोग बीमार होते हैं डॉक्टर उनको फिर ये सलाह देते हैं, तभी वो लोग साइकिल चला रहे हैं या पैदल चले, अदरवाइज वहाँ कोई पैदल चलता ही नहीं है, ऐसा मानना है। फिलहाल बढ़ते हैं, हम कुछ और मैसेजेस हमारे पास में आ गए हैं, जुड़ गए हैं हमारे कुछ और लिसनर्स। लेकिन भाई आज है दिन बुधवार और बुधवार को होता है आपका अंताक्षरी का सेगमेंट, और अंताक्षरी में आप दोनों टीमों को चलिए हम विभाजित कर देते हैं। एक टीम होगी हमारी लड़कों की, एक होगी लड़कियों की, लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे हम 6:40 पे। तब तक हम एक और म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और फिर आएंगे एक अंताक्षरी वाले सॉन्ग के साथ में, और उसी दौरान आप लोग को अपनी अपनी कमर कस लेनी है। भाई जो भी सब्जी वब्जियों की तैयारियां कर रही है लेडीज लोग, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक ले लिया कर एक कॉल कर लीजिएगा, देखते हैं आज कौन जीतता है, लड़के जीतते हैं लड़कियां जीतती हैं। और जो भी हमारे भाई साहब लोग जा रहे हैं सब्जियां लाने के लिए, उनसे भी हम कहेंगे जा तो रहे हैं, रास्ते में ही फोन मिला के और अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करिएगा। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ गई है रीना शर्मा जी रुड़की उत्तराखंड से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है रीना जी। और इसी बीच में हमने जिन जिन का वेलकम किया था उसके बाद कुछ हमारे और प्यारे लिसनर्स आए हैं, तो पुनः से आप सभी का वेलकम कर लेते हैं साथ में। और धर्मेंद्र मोहन भारती जी आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से, कमल नैन जी हैं, गुड इवनिंग आकांक्षा मैम, गुड इवनिंग आप दोनों को, नीना जी हैं हाय बोलती हुई, और नेहा जी हैं बहराइच से, हेलो मैडम जी कैसन हो, अपन तो एकदम झकास बाड़े, अपन बतावा जाए का हाल चाल बा। हाँ जी, और चंगू मंगू जी की जोड़ी कंप्लीट होती है, और नीना जी का कहना भैया हमारा वजन बहुत तेजी से घट रहा है, का हमने तो सुना है जो बहुत ज्यादा ही करते हो उनका वजन बढ़ता है, आपका घट कैसे सकता है, हमको आपसे ये राज जानना है, हमको भी थोड़ा सा दुबला होना है सच में, हमें आपसे जानना है, मजाक है वैसे, और मुझे मालूम है आप मजाक कर रही हैं। और धर्मेंद्र मोहन भारती जी का कहना है कि साइकिल चलती ही जाती है, रुकती नहीं, पेट्रोल का खर्चा ही नहीं है इसमें, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं खुरासा से, आपका भी स्वागत है। अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग आकांक्षा जी बोला गया, शुभ संध्या आपको भी अनिल शास्त्री जी। अनिल वर्मा जी हैं सैदापुर से, वैसे सैदापुर से मंगाया डीजे मेरा गाना बजा दे, पता नहीं क्यों जब मैं आपका नाम पढ़ती हूँ विद सैदापुर तो मेरे को यही गाना याद आता है। शुभ संध्या इन्होंने सभी को बोला है, शुभ संध्या आपको भी। और इसी बीच हम देख रहे हैं हम सबके आपके हमारे हम सभी के प्यारे यानी के शनिवार वाले डॉक्टर लव और हर दिन वाले आप सभी के प्यारे आरजे मनु जी भी हाजिर हो चुके हैं, इन्होंने अपनी हाजिरी लगा दी है, बहुत बहुत हार्दिक वाला स्वागत और अभिनंदन है, गुड इवनिंग सर आपको भी, आपकी भी संध्या अति अति अति शुभ हो, बस इतना ही कहेंगे आपसे। फिलहाल चलते हैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, और ब्रेक के उस पार आते हैं फिर शुरुआत करेंगे हम अंताक्षरी की, और आज देखते हैं कि जीतता है कौन। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए जो कि है हमारी प्लेलिस्ट से, क्योंकि हमें चीची जी के गाने बेहद पसंद है, उम्मीद है आप सभी को भी पसंद आएंगे, एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: हाँ जी श्रोताओ, पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है गुंडा मैसेज मसाला में। हाँ जी, वक्त हो चला है 6:42। मैंने आपसे कहा था 6:40 पे मैं गेम स्टार्ट कर दूंगी। चलिए बढ़ते हैं गेम की ओर, लेकिन उससे पहले एक मैसेज आया हुआ है अनिल वर्मा जी का, सैदापुर से लिखते हैं, ना पेट्रोल का खर्चा, ना प्रदूषण की मार, साइकिल चलाओ यार, सेहत बनेगी बेमिसाल। आहा, क्या बात है, क्या स्लोगन भेजा है आपने। विश्व साइकिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ में इन्होंने भाई एक बात दस दी है, तो इन्होंने क्या गल दसी है, चलिए आपसे दस देते हैं हम भी, आप भी जान लीजिए। वैसे दस नहीं दी है, दस दी है, बता दी है। चलिए बताते हैं। तो इन्होंने कहा है कि वो चैन उतरना, चैन मतलब वो सोने वाला चैन नहीं, दिल के करार वाला चैन नहीं, चैन साइकिल की चैन यार, वो चैन उतरना, वो गिरना और फिर संभल जाना, कितना हसीन था साइकिल के साथ वो बचपन का जमाना। ओहो, ये यादें आज ताजा हो गई। देखा, हम यादों तक अगर आपको लेके ना जाए तो हमारा होना ही बेकार है, क्योंकि हमें खुद यादों से बड़ा प्यार है भाई हमारे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में सबसे कीमती क्या है, तो मेरे पास में यादों का तोहफा है, जो हमें हमारे अपनों से मिला हुआ है। और बस इसी तोहफे के साथ में जिंदगी खुशनुमा है भाई। जिंदगी में चाहे दर्द हो या खुशियां हो, बस खुशनुमा होनी चाहिए जिंदगी। और जिंदगी अगर मैं बोलूं, फिलहाल मैं ज़्यादा ही डिस्क्राइब कर देती हूँ, समटाइम्स आप पता नहीं वहाँ तक जा भी पाएँ या ना जा पाएँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आपने दर्द में सुखनवर होना सीख लिया है, यानी कि आपने खुश होना सीख लिया, तो समझ लीजिए आप इस दुनिया के वो इंसान हैं जिसने जिंदगी को जीना सीख लिया है। क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही है संघर्ष, और संघर्ष तभी होता है जब आप हर चपेट और मार सहते जाते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। यही तो जिंदगी है जनाब। उस्ताद बड़े बड़े कह गए, और आपकी अपनी आर्ज आकांक्षा भी कह रही है कि जो दर्द में मुस्कुराता है वही जिंदगी को असल में जी पाता है। और इसी बीच में दस्तक दे दी है हमारे शैलेंद्र रिझारिया जी ने, खजुराहो एमपी से, लिखते हैं गुड इवनिंग आकांक्षा जी, शुभ संध्या आपको शैलेंद्र जी। फिलहाल भाई हमारे प्यारे लिसनर्स तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि अंताक्षरी का वक्त हो गया है। और आज की अंताक्षरी शुरू होती है माँ से, माँ वर्ड से। कॉल उठाइए, फोन मिलाइए, कॉल इन नंबर वही है आपके स्टूडियो वाला, आपने ट्यून करके रखा रेडियो 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन, और स्टूडियो का नंबर सेम एज इट इज 6393316429, यानी कि 63 93 31 64 29। फिलहाल हम भी अपनी ओर से ये अंताक्षरी वाला गाना प्ले करते हैं, और देखते हैं आज पुरुष मंडली जीतेगी या फिर महिला मंडली, ये आपके कॉल्स पे डिपेंड करता है। गाने मैं बहुत इजी दूंगी, आपको क्लू भी बहुत इजी दूंगी, बस देखना है कि आज ताबड़तोड़ कॉल कौन करता है, लड़के या लड़कियां। फिलहाल एंजॉय करिए, और माँ वर्ड मैंने दे दिया है, मैं कॉल का इंतजार करती हूँ, तब तक ये ट्रैक आप सभी के लिए।

0: क्या बात है भाई, हमने इधर से आगाज किया उधर से कॉल भी आ गई है, देखते हैं हमारे साथ में कौन जुड़ा हुआ है। हेलो, प्लीज अपने रेडियो की वॉल्यूम को थोड़ा सा स्लो करें ताकि भाई साहब हम आपकी आवाज सुन पाए, हमारे प्यारे लिसनर से जान पाए कि आप हमें क्या सुनाने वाले हैं। देखते हैं इन्होंने वॉल्यूम कम किया या नहीं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, प्लीज अपने रेडियो प्लीज प्लीज प्लीज रेडियो की वॉल्यूम को स्लो करें स्लो करें स्लो करें। हाँ जी, तो माँ से एक पुरुष टीम यानी कि जिसको हमने टीम ए में रखा हुआ है, उनकी कॉल तो आई थी लेकिन उन्होंने रेडियो अपने ज़्यादा आवाज़ में कर रखा हुआ था इसलिए वो सुनाई नहीं दिया। फिलहाल इंतज़ार करते देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। और जो भी भैया बहनी जो भी हमको कॉल करी प्लीज अपने उन्हें के रेडियो के वॉल्यूम का स्लो कह के तब की हो। हाँ, और नंबर वही है 6393316429। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।

0: भाई हमारे पास में कॉल आ गई है, जरा देखते हैं हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छे हैं, बस आपकी दुआओं जैसे हैं। कहिए अपना नाम पहले दसिए ताकि हम बता सके अपने श्रोताओं को कि आप कौन बोल रहे हैं।
1: नाम बोले तो खजुराहो एमपी से शैलेंद्र कुमार आचार्य।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके बीच में दोस्तों दस्तक दे दी है एक पुरुष ने, यानी कि ये टीम ए अब घोषणा कर देती है आपकी अपनी आकांक्षा के भैया टीम ए जो है वो हमारे पुरुषों की होगी और देखते हैं ये हमें माँ से क्या सुनाने वाले हैं। प्लीज सर।
1: बहुत लंबा तो नहीं जाने वाला हूँ, 2 सेकंड का टाइम है मेरे पास।
0: अरे 2 सेकंड में आप 10 गाने सुना देंगे, हमको मालूम है।
1: अरे 2 लाइन सुना ले रहा हूँ क्योंकि बात गेम की है।
0: जी।
1: मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो इनसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिताने की भी पूरी कोशिश कर दी है पुरुष मंडली को। जी शुक्रिया। जी जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे खजुराहो से हमारे प्यारे शैलेंद्र रिझारिया जी। और अब हम नेक्स्ट कॉल की का इंतजार करेंगे साजन। साजन तो ना पे आके ठहरा है ये पल, तब तक आप एंजॉय करिए इस प्यारी सी अंताक्षरी को। और देखते हैं नेक्स्ट कॉल किस टीम की आती। भाई महिला टीम हमारी किधर को गई? फोन उठाओ, फोन मिलाओ। नेहा जी, नीना जी, कोई तो आओ वरना आज महिलाएं हार जाएंगी, क्योंकि लगातार पुरुष की ही कॉल आ रही है। जितने भी हमारे जेंट्स लिसनर हैं, लगातार 3 कॉल आई है और तीनों ही जेंट्स की थी।

हाँ जी श्रोताओं, नेक्स्ट वर्ड है ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना। जरा हमको कोई फोन मिला के सुना दे। गाना नंबर वही है 6393316429। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।

0: लग रहा है आज बिना आगाज किए ही हमारी महिलाएं हार जाएंगी, सारा का सारा पॉइंट हमारे पुरुष ही लेके जाएंगे। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो। हाँ मैं सविता शास्त्री बोल रही हूँ गोरखपुर से। माय
0: गॉड, थैंक यू सो मच आपने कॉल कर दिया, वरना तो आज तो ऐसा लग रहा है कि लोटिया डूबी जानी है।
1: हाँ तो क्या ना से आया है?
0: हाँ जी ना से।
1: अच्छा मैं सुनाती हूँ
0: जी।
1: नैना बरसे रिंग खेती

0: बस
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने कहीं ना कहीं आगाज करके हमको एक रिम झिम यानी कि फिर से माँ पे हम रुके हैं।
0: जी
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थी हमारे बीच में हमारी सविता शास्त्री जी, जो हमें सुनती हैं गोरखपुर से। भाई इन्होंने भी अपना हाथ धुल करके मतलब महिला टीम के लिए श्री गणेश कर दिया है। अब देखते हैं कि माँ से दोनों टीमों में से कौन पहले कॉल करके नंबर को इंक्रीज करवाता है, टीम ए या टीम बी। टीम ए यानी कि पुरुष मंडली और टीम बी यानी महिला मंडली। फिलहाल के लिए दोनों ही बराबरी पर है, तब तक के लिए एंजॉय करते हैं इसी ट्रैक को।

0: इस ट्रैक को फिर से आराम देते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट लिसनर की ओर, देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ
0: जी। नमस्कार अमित कुमार जी, ने भाई कमर कस ली है, हमें लग रहा है इस बार फिर से पुरुष मंडली ही जीत जाएगी। फिलहाल सुनाइए, माँ से क्या सुनाना चाहेंगे?
1: मैम माँ से तो सुनाऊंगा, लेकिन ये बताइए मैम, चाहे जितनी पहले कॉल कर दिया करे।
0: चाहे जितनी पहले मतलब?
1: ओके, मैं सुना रहा हूँ
0: जी।
1: मैंने प्यार तुझी से किया है, मैंने दिल भी तुझी को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं।
0: क्या बात है भाई, तुरुरुरुम करने में मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ में, थैंक यू सो मच भाई। 20 पॉइंट हो गए हैं कहीं ना कहीं हमारे पुरुष मंडली के। अभी देखते हैं, मैं दुनिया से अपना डर तुझे मैं प्यार कर रू। हाँ, तो रा पे आके हमारी टीम रुकी हुई है, मतलब ये गाना यहाँ पे रुका है। और जी हाँ, ये तो देखते हैं रा से नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं, हमारी महिला मंडली होती है या फिर से पुरुष मंडली ही बाजी मारती है। एंजॉय करते इस ट्रैक को फिलहाल।

0: हाँ जी, नेक्स्ट हमको फिर से कॉल आई है, देखते हैं कौन हमारे साथ में। हेलो,
1: मैं सविता बोल रही हूँ।
0: जी सविता जी, आज हमें लग रहा है महिलाएं सारी सो गई हैं, खाली किचन के बाहर हमारी
1: क्यों कोई गैस क्यों नहीं आ रही है, हार मान के ये नारियों की इज्जत का सवाल इसलिए मैं आ जा रही हूँ।
0: ओह माय गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लर्रा से आप प्रस्तुति दीजिए। और हमें लग रही बात ये है ना सविता जी, एक बात आपसे मुझे कहनी है। मुझे लग रहा है सब चाय पीने के बाद में अब बस सब्जियाँ काटने पे एकदम ताबड़तोड़ कटाई हो रही है।
1: सही बात है।
0: चलिए शुरू करिए।
1: टाइम जी तो है ना।
0: जी जी, जी।
1: क्या रासे है?
0: रासे रासे।
1: राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। दुख है क्या?
0: क्या बात है, क्या बात है भाई। हमने सुना है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, पहली दफा देख रहे हैं कि एक टीम को जिताने के लिए पूरा का पूरा पुरुष ही खड़ा है पीछे से, क्यों जी। चलिए इस गाने को हम ही कंप्लीट कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: जी
0: टेक केयर मैम। तो ये थी हमारी सविता जी, और इनका साथ इनके श्रीमान जी दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा सुन के हमें। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख है एक बदरी आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। यानी कि हाँ से अब आप लोगों को नेक्स्ट वर्ड हमने दे दिया है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट कॉल किसकी आती है, तब तक के लिए एंजॉय करते हैं इसी ट्रैक को फिर से।

0: मिस कॉल किसकी है, लेकिन हम बस यही कहेंगे कि आप सभी भी कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर वही है 6393316429। और टीम ए टीम बी दोनों बराबरी पर है 20-20 पॉइंट ले करके। और नेक्स्ट वर्ड है हा, देखते हैं हा से कौन हमें गाना सुनाना चाहता है। हेलो,
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार नमस्कार, आपका बहुत बहुत हार्दिक वाला स्वागत है। और आपका सपोर्ट देख के तो हमारा दिल गदगदा उठा है।
1: बिल्कुल होना चाहिए।
0: बेशक बेशक, बहुत मजा आया। वैसे पीछे से जब आप बुदबुदा रहे थे हमको बड़ा अच्छा लग रहा था। ये हमारे अनिल शास्त्री जी हैं, तो फरमाइए क्या सुनाना चाहते हैं। हाँ से
1: ये शब्द से सुनाना।
0: हाँ हाँ हाँ
1: हेलो।
0: हाँ जी, हाँ से।
1: हाँ से
0: जी। हाँ,
1: हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर अपनी सबसे दोस्ती, नहीं किसी से
0: बस दे दे प्यार दे। क्या बात है। फिलहाल मुझे लगता है कि जब गाने गाए जाए तो कम से कम उसका मुखड़ा पूरी तरह से पूरा किया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है आपको पूरा गाना गाना चाहिए।
1: एक्चुअली क्या ना, ये चित्रा वो है क्या बोलते हैं अंताक्षरी, अंताक्षरी में छोटा छोटा हो तो बहुत लोग पार्टिसिपेट करें तो अच्छा।
0: ओके, फिलहाल चलिए फिर आपके कहने पे हम मान लेते हैं और दा से नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर।
1: ओके
0: थैंक यू। तो फिर हम बढ़ते हैं दा वर्ड की ओर और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन होता है हमारा। भैया, महिला मंडली होती है या पुरुष मंडली होती है, भाई फोन उठाओ, फोन मिलाओ, फोन वही है और नंबर वही है 6393316429। क्या हमारी महिलाएं सो गई हैं, या फिर अभी वो खाना बनाने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, या फिर किसी कारण से वो सब्जियां काटने में लग गई हैं और हमने कहा और तुरंत एक और कॉल आई हम तक। देखते हैं कौन है हमारे साथ में जुड़ा हुआ। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, अगर हम गलत नहीं तो रेणु तिवारी जी।
2: जी
0: मैम, बहुत सही पहचान लिए हम। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दास एक प्यारा सा,
2: अपने तो अपनों को पहचानते हैं।
0: अरे अपने ही तो होते हैं,
2: दूसरा कौन पहचानेगा।
0: जो मारा है आपने हमारे दिल पे सीधे आके लगा। थैंक यू।
2: जो अपने होते हैं वही अपने को पहचानते हैं बिना
0: जी, जी जी जी। अभी आपने जो हमको मारा है ना वही हम आपसे कह रहे हैं कि सीधे आके हमारे दिल
2: क्यों पे मारेंगे। आप क्या किया है जो मारेंगे आपको।
0: क्या है
2: आप क्या ऐसा काम कर दी जो हमने मारेंगे आपको।
0: अरे अखियों से गोली मारते हैं ना, गोली गोली अखियों से।
2: नहीं नहीं, अगर अखियों से गोली चलने लगे तो बॉर्डर पे हम आप खड़े हो जाएं।
0: अरे
2: सैनिक की कोई काम नहीं होगा।
0: हमको तो लगा था हम ही इतने मुरहे हैं, हमसे भी उच्च कोटि के मुरहे हैं हमारे प्यारे लिसनर।
2: गोली बारूद की कोई काम नहीं होगी वहाँ।
0: बिल्कुल गोली बारूद की जरूरत। अच्छा सोचे फिर कितना प्यार होगा दुनिया में, कितना चैन अमन होगा।
2: न कोई मरेगा न कोई घायल होगा,
0: चारों तरफ केवल और केवल प्रेम की नदियाँ बह रही होंगी।
2: हाँ, बारूद नहीं होगा तो सब कुछ कायम होगा।
0: बेशक बेशक, बारूद नहीं होगा तो फिर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। फिलहाल चलते हैं दा की ओर, देखते हैं दा से आज आप क्या सुनाती हैं।
2: सुनाए, पहली बार आए हैं हम यहाँ पर आप।
0: तो पहली दफा हम भी आज शो कर रहे हैं और पहली बार ही सुनेंगे हम।
2: इस शो में पहली बार आए हैं।
0: अरे पहली दफा हम भी अंताक्षरी कर रहे हैं। मोहतरमा प्लीज दसिए, हम भी सुनते हैं आपसे दा।
2: दा से है?
0: जी।
2: दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना।
0: दाना दे? जी हाँ, गोली से हम आ गए हैं दाने पर और दाने के ना पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। तो ये थी हमारी रेणु तिवारी जी भाई, इन्होंने कॉल करके गाना सुना दिया है और एक पॉइंट इन्होंने जीत लिया है। मतलब तो फिर से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीम ए और टीम बी दोनों बराबरी की कगार पर है, यानी कि 30-30 पॉइंट लेकर दोनों ही बराबरी की कगार पर है। और फिर से किसी और की कॉल आ रही है, देखते हैं कौन है।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: मैं अमित बोल रहा हूँ मैम।
0: जी अमित कुमार जी, नेक्स्ट वर्ड क्या था।
2: ना।
0: क्या बात है, आप तो पूरी तैयारी के साथ आए हुए। चलिए सुना दीजिए फिर।
2: ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठी, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठी। ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठी। जी मैं
0: कर बैठे या बैठी
2: अब पता नहीं क्या है।
0: मजा आया लेकिन सुन के हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से अपनी टीम को विजयी बनाने की पूरी जद्दोजहद लगा दी है। थैंक यू। देखते भाई नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है। हेलो हेलो
3: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, पुनः से स्वागत।
3: अरे नमस्कार नमस्कार।
0: तो क्या है लास्ट वर्ड आपने सुना?
3: दीवाना
0: नहीं नहीं नहीं, ना वाला कंप्लीट हो गया। अमित जी ने गाना गा दिया है और पुरुषों की टीम 40 पर है, महिलाओं की टीम 30 पर है और आपने फिर से एक पुरुष का जो दारमदार है वो आपने उठा लिया है। और वैसे जो लास्ट वर्ड है वो है था, कर बैठे, करना था इनकार मगर इजहार तुम्ही से कर बैठे। था से हाँ
3: ठाढ़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाढ़े रहियो ठाढ़े रहियो ठाढ़े रहियो ठाढ़े रहियो रे, ठाढ़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाढ़े रहियो।
0: क्या बात है भाई, आप ठाढ़े रहेंगे हमें लग रहा है आज टीम जीत जाएगी आपकी।
3: अरे नहीं, मैं सबको सपोर्ट करूँ।
0: ओके शुक्रिया भाई, ऐसे भी लोग होते हैं जो सबको सपोर्ट करते हैं। और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉल पर हमारे साथ में कौन जुड़ गया है। कोई बात नहीं, कॉल डिसकनेक्ट हो गई किसी कारण से और मुझे लगता है पुनः से कॉल आएगी। और ठाढ़े रहियो बाके लाल रे। हाँ जी हेलो
4: हेलो
0: हेलो हेलो
5: हेलो
0: हेलो
5: हेलो, मेरा फोन खराब हो गया, मैं अपना पति देव का फोन नंबर।
0: ओहो हमारे साथ में सविता जी हैं भाई और आज हमारे फोन में पता नहीं क्या हो रहा है, पहले फोन आ रही है, लग रही है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, वो फोन का जादू है, फोन अपने मन से कॉल लगाना चाह रहा है। तो ये फोन बड़ी मुश्किल से लगा है लेकिन सविता जी का लग गया है। तो सविता जी ठाड़े रही हो बाकी लाल रे, तो आपको रा से गाना गाना है, प्लीज कुछ सुनाए। हाँ जी ओके, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई और इस तरह से आपने अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर ली है और कहीं ना कहीं टीम ए पहुंच गई है 40 पर, नहीं नहीं टीम बी पहुंच गई है 40 पर जो कि महिलाओं की टीम है और टीम ए है 50 पर जो कि है पुरुषों की टीम। अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ में और ये क्या सुनाते हैं। हेलो
6: हेलो।
0: हाँ जी
6: मैं अमित बोल रहा हूँ।
0: जी अमित जी आपका पुनः से स्वागत है, कहिए क्या सुनाएंगे आप, वर्ड क्या था?
6: ई से सुनाना है।
0: आए हाय क्या बात है भाई, सुनाइए सुनाइए।
6: सुना रहा हूँ देखता हूँ। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई दे। जी मैं
0: ओके तो भैया राम राम आपको फिलहाल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो ये थी हमारी टीम ए और टीम ई ने प्राप्त कर लिया है 60 पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है भाई, लगातार कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। हेलो
7: हेलो।
0: हाँ जी तो गाना क्या है?
7: तो गाना होगा।
0: हाँ जी रात से ही फिर से आपको गाना है। आगे जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, बहुत बहुत थैंक यू भाई। सविता जी का हुनर हमको देख के याद आ रहा है हमारा बचपन। हमसे भी हमारे पास खिलौने नहीं होते थे, हथियार नहीं होते थे, तो हम अपने हाथों से काम चला लिया करते थे। उसी तरह से आज सविता जी का फ़ोन थोड़ा सा ख़राब है, डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन इन्होंने अपना जो बोलते हैं ना कि एक तरह से बस अब जीतना है तो जीतना है, नहीं हाँ, तो अपने पति श्री का इन्होंने फ़ोन उठा लिया है और लग गई हैं पूरी तरह से अपनी टीम को विजयी बनाने की ओर। और टीम बी है हमारी 50 पॉइंट पे और टीम ए है हमारी 60 पॉइंट पे। और देखते हैं, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, और नेक्स्ट कॉल पे कौन होना। हेलो
8: हेलो, मैं सविता बोल रही हूँ। क्या है अक्षर रा ना
0: मून जितनी चाबी मिल रहा उतना चल खिलौना ना से
8: ना से
0: जी हाँ ना से
8: हाँ सुना रही हूँ।

0: जाएगा। थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच भाई, आपने तो इक्वल कर दिया दोनों ही टीमों को, टीम ए और टीम बी दोनों बराबरी पर पुनः से पहुंच गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे कौन है, नाम गुम जाए।

0: दूध मेरा तुझ से हो जाएंगे, खुद से भी हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो बस तुम जिंदगी।
1: ओहो क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारा सा नगमा आपने चुन लिया था भाई। तुम ही हो बस तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी,
2: थैंक यू।
1: चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ में। हेलो,
3: मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ।
1: जी अमित जी, आज आपने कमर कस ली है, बताइए कौन सा वर्ड है। क्या बात है, शुरू करिए।
3: हरे एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और होती मतलब अब हमें ता से नेक्स्ट वर्ड आप लोगों तक पहुंच गया है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि टीम ए और टीम बी दोनों की दोनों बराबरी पर है। बराबरी यानी के सेम पॉइंट, यानी कि 70 आपका भी है 70 उनका भी है, यानी कि टोटल अभी हमारे बीच में हुए 14 गाने और 14 टाइम आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट कॉल किसकी आती है। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, ता है नेक्स्ट वर्ड। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए इस प्यारी सी मेलोडियस वाली अंताक्षरी को।

0: भाई फिर से आ गई है कॉल और देखते हैं कौन है। हेलो,
1: हाय मैम।
0: हाँ जी, हाय, हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? आई एम वेरी वेरी वेरी फाइन। और आप लोग के साथ में मेरा मन कर रहा है मैं चाय और फाइन खाऊं पीऊं। क्या सोचना है आपका?
1: मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम ये कंटिन्यूटी बनी रहे जी, दोनों टक्कर में हो।
0: जी जी, पीछे से भी कॉल आ रही है महिलाओं की, हम आपको बता दें।
1: नहीं, मुझे मालूम है, महिलाओं की तरफ से मैं गाऊंगा, निश्चिंत रहिए।
0: नहीं नहीं, आपको तो आप पुरुष मंडली से ही गाएंगे, क्योंकि महिलाओं की भी कॉल आ रही है, पुरुषों की भी कॉल आ रही है, तो भाई आप अपने जेंडर में ही रहिए, इधर उधर मत जाइए, यकीन मानिए।
1: अरे कोई मतलब नहीं है, देखिए मैं दोनों तरफ से हूँ आपको।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, अयो न चोलबे।
1: अच्छा,
0: आई एम भांगला भालो बोलो बाशी, आई डोंट नो।
1: आपने नेम की?
0: जी।
1: आपने नाम की?
0: हमरा नाम बाड़े, आपको अच्छे से पता बाड़े, होई नाम हमरो बाड़े।
1: आकांक्षा अमी जानी सब नेम?
0: जी जी, प्लीज आप गाना कंप्लीट करिए वरना मैं हंस हंस के यही पागल हो जाऊंगी।
1: तो क्या मैं गाना गा दूं?
0: जी हाँ, गा ही दीजिए जनाब।
1: तो मैं गाना, आपने बोला किससे?
0: मैं भी भूल गई, आप भी भूल गए, चलिए भूल ही जाते हैं, वैसे था ता से।
1: ता से ना?
0: जी जी, ता ता तैया, ता ता थैया।
1: हाँ यार, ता
0: ता ता थैया
1: मतलब था। चले ठीक है, मैं ता से भी गा दूंगा, अगर कहेंगे तो ता से भी गा
0: दूंगा। ता ता ता
1: ता ना?
0: हाँ, ता ता
1: मतलब
0: नाता ता, नाता ता।
1: हाँ ठीक, तुम गा रहा हो
0: जी।
1: तुम बिन, ये सही है तो आगे बढ़ू?
0: बिल्कुल सही है, दौड़ा दीजिए।
1: तुम बिन जाओ कहा, तुम बिन जाओ कहा, के दुनिया में आके कुछ न पे चाहतनम, तुमको चाह के तुम बिन जाओ कहा, तुम

0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड के साथ में, यानी कि तुम बिन जाऊं कहां। तो मुझे लगता है आप लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग जाना कहां चाहते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ में। हाँ, मुझे मालूम है, इधर ही आएंगे, कॉल मिलाएंगे और मिला लीजिए, देखते हैं भाई कॉल आ भी गई है। हेलो हेलो, हाँ जी,
2: श्रद्धा बोल रहे हैं।
1: जी श्रद्धा जी, पुनः से आपका स्वागत है, और कहिए नेक्स्ट वर्ड आपको मालूम है।
2: Yes, ma'am, हाथ से सुनाना है।
1: ओ हो, क्या बात है भाई, इस बार तो पूरी तैयारी के साथ मानी श्रद्धा जी ने भी दस्तक दे दी है। प्लीज सॉन्ग को स्टार्ट करें।
2: ओके मैम।

0: यार हम क्या करें। थैंक यू मैम।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, श्रद्धा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास में आ गया है वो है रा। और अब हम चाहेंगे कि रा से आप सीधे ना गाएं, अब हम आपको देते हैं शब्द और शब्द होगा रात। देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो हेलो, कोई बात नहीं भाई, डिस्कनेक्ट हुई है कॉल। और अभी हम चढ़ते हैं फिर से अपनी अंताक्षरी की ओर, मतलब जो हम गाना सुन रहे थे उसी ओर पुनः से रुक करते हैं दोस्तों, और सुनाते हैं आपको वही गाना जो हम बार बार प्ले तो कर पा रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, और नेक्स्ट वर्ड है रात। अब शब्द खत्म हो गए, अक्षर खत्म हो गए, अब शब्द की बारी है और रात से देखते हैं कौन क्या गाता है। भाई हमसे कोई झूठ भी नहीं बुला सकता, हम ये गाना कम्प्लीट ही नहीं करेंगे आज। हेलो
2: मैम, अमित बोल रहा
1: हूँ। जी अमित जी, आपको पता है ना मैंने क्या चेंज किया है?
2: जी बिल्कुल पता है
1: जी, सुनाए प्लीज।
2: आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए।
1: चांद की कुर्बानी, आगे भी गाते यार, कितना बढ़िया गाना था। सॉरी
2: इसलिए नहीं गाते हैं पूरा।
1: अच्छा गाना अच्छा होता इसलिए आप पूरा नहीं गाते हैं, आप ज्यादा अच्छा
2: नहीं, मैं अच्छा नहीं, मैं नहीं गा पाता हूँ।
1: अरे नहीं, इंसान सभी अच्छा गाते हैं अपने हिसाब से, जो जहाँ जो भी करता है सब उसकी कोशिश उसके तरफ से 100% होती है, मतलब
2: अंताक्षरी के लिए मैं आ जाता हूँ।
1: जी जी, आपने बिल्कुल से 90 तक पहुँचा दिया है और 80 पर है हमारी गर्ल्स टीम। देखते हैं नेक्स्ट कौन आता है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ए से है और ए से आप कुछ भी सुना सकते हैं। ए के लिए मैं कोई वर्ड नहीं, मतलब कोई शब्द नहीं दूंगी। ए इज इनफ इन खुद में। हाँ जी, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि आ है, ई है, ए है, ये सब अपने ही आप में पूर्ण होते हैं। तो ए से आप कोई भी गाना सुना सकते हैं। फिलहाल के लिए एंजॉय करिए इस प्यारे से मेलोडी वाले अंताक्षरी को। और भाई देखिए उधर से कॉल भी आ गई है। हेलो
0: हेलो,
1: खिरखिर खिरखिर खिरखिर खिरखिर। हाँ जी सविता जी, बहुत दूर से बात कर रही हैं आप, ऐसा लग रहा है आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ए से हाँ, ए से जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिता दिया अपनी टीम को, मतलब जिताया नहीं, 90-90 हो गए दोनों। थैंक यू। तो ये थी हमारी सविता दुबे जी, उधर से आवाज़ नहीं आ रही थी, खिरखिर खिरखिर खिरखिर हो रही थी, लेकिन इन्होंने अगर अपना दायित्व तो समझ रखा है और पूरी तरह से जिताने पे तुली हुई हैं महिला मंडली को, तो हम क्यों पीछे रहेंगे, हमने भी मान लिया इनकी खिरखिर वाले गाने में इनका एक मैं और एक तू। फिलहाल बजा देते हैं ये गाना और नीना जी का कहना है आकांक्षा जी अब ना बजाइए झूठ बोले कौवा काटे, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलती। थैंक यू ये बताने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट कॉल पर कौन है हमारे साथ में। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
2: सुरेश कुमार
1: जी। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको मालूम है नेक्स्ट वर्ड क्या है?
2: ऐसे
1: था से आया है, तो था से आप क्या गाना चाहेंगे? था था था था था,
2: ठीक है, सॉरी जरा कस्टमर डील करने बाद में बताएंगे।
1: ओके शुक्रिया भाई, ऐसे होते हैं कुछ हमारे प्यारे लिसनर जिनको मालूम होता है कि हमें कैसे यहाँ से कल्टी मारना है। और देखते हैं नेक्स्ट हमारे साथ में कौन है। हेलो
3: हेलो मैम।
1: हाँ जी, पुनः से आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रद्धा जी कहिए क्या सुनाएंगी जी? हाँ जी हम तैयार है जी सुनने के लिए जी।
3: था से सुनाना है
1: जी? जी था से।
3: ओके मुझे तेरे हम तेरे
1: और इस तरह से कहीं ना कहीं श्रद्धा जी का नेटवर्क कोई इशू था, उन्होंने गाना तो गा लिया लेकिन कॉल भी डिसकनेक्ट हो गई साथ ही साथ। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ में। और टीम बी पहुंच गई है 100 पर और टीम ए है हमारी 80 पर। देखते हैं कि कौन हमारे साथ में। हेलो
4: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना शुभ नाम बताएं।
4: धर्मेंद्र मोहन
1: जी। धर्मेंद्र मोहन जी, आप को सुनाना है, मैं आपको वर्ड दूंगी, आप उस वर्ड से गाना गाइएगा। सुनाएंगे?
4: अरे कठिन मत दे देना।
1: नहीं कठिन नहीं देंगे, आप गा लेंगे, इसीलिए हमको पता है आपकी चॉइस पता है इसलिए। आप साथी से गाना गाएंगे।
4: हाँ?
1: साथी साथी साथी।

0: बस मैं इतने ही जानता हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमें मालूम था आप यही गाना सुनाओगे और आपकी पसंद मालूम थी इसलिए थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू
1: जी। तो अभी हम बढ़ेंगे ना जीना हाय राम जी, तो देखते हैं जी जी करते हुए कौन आता है कॉल पे नेक्स्ट और जी से हमें कौन सुनाता है गाना। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: मैं अमित जी।
1: जी अमित जी, दसिए जी क्या सुनाने वाले हैं जी।
2: जी जा से सुनाऊं?
1: हाँ जी, जी से, जी से, जी से अगर आपको नहीं आते तो जा से भी चलेगा।
2: हाँ जा से
1: सुना रहा हूँ
2: मैं।
1: हाँ जा से ही सुनाइए आप।
2: जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर।
1: आगे मेरा तो मन करे तो और सुने। और कम हो रहे हैं, काश मेरा गला सही होता तो हम जरूर गाते, लेकिन अभी बढ़ेंगे हम ओहो तू है मेरी किरण ना के साथ में और देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ कौन है। हेलो
3: हेलो, रेनू तिवारी।
1: जी रेनू जी, ना से गाना है?
3: ना से या जा से?
1: ना से।
3: ना से,
1: हाँ जी।
3: ना से ना ना करके प्यार है मैं कर गई।
1: अरे वाह,
3: तूने किया इकरार है मैं
1: मर गई। जी बहुत सुंदर था जी, बिल्कुल सही है, मुझे मजा आया। एक्चुअली मैं फन कर रही थी थोड़ा सा, और जब दोस्ती यारी की बात होती है तो उसमें थोड़ी शैतानी शरारत ऑटोमेटिक आ जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ में। हेलो
4: हेलो मैम।
1: जी हाँ, अपना शुभ नाम फिर से दसिए।
4: श्रद्धा
1: जी। श्रद्धा जी, आपको मालूम है क्या सुनाना है?
4: इसे गाना सुनाना है।
1: ओ, हो क्या बात है, इतना बढ़िया कान आप कहाँ से लाई हैं? जी आप पूरा सुन के आई हैं। हाँ जी, इसे ही सुनाना है।
4: ओके मैम।
1: क्या बात है भाई, आपने अपनी टीम को आगे कर दिया है पुरुषों से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हम चलेंगे भाई, हमारी आंखें तुम्हारी आंखें तो खा की ओर, और देखते हैं खा से कौन महानुभाव है जो भाई ये गाना हमको कंप्लीट करके देने वाले हैं। हेलो हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
5: मैम नमस्कार, मैं युगल किशोर वर्मा MP से।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है, आज तक आपका खाली नाम सुना था, आज पहली दफा आपकी आवाज सुन रहे हैं।
5: अच्छा अच्छा, मैम जाता हूँ स्टेज पे, कम आता हूँ मैं, शादी के बाद आता
1: हूँ। जी जी बहुत अच्छे से पता है। ये आपको पता है कि कौन सा वर्ड आया है सर?
5: वर्ड नहीं सुन पाया मैम, वर्ड बता दो।
1: मैं आपको सुझा देती हूँ, खा आया है, खा से खरगोश वाला खा।
5: खा खई के पान बनारसी वाला, जाए बंदिया कलिका ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल के सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: क्या बात है भाई, गंगा किनारे क्या आप हो या ना हो, लेकिन ये गाना आपने बड़ा ही सटीक, मतलब एक तरफ मैंने कहा नहीं आपने तुरंत से सुना भी दिया, मजा आ गया। थैंक यू,
5: धन्यवाद मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है मैम।
1: जी जी बेशक, पहली बार हमारी भी आपसे बात हो रही है और आपकी हमसे
5: बिना बिना मैम से होती रहती है बात अंताक्षरी में।
1: ओहो, हम तो भाई पहली दफा ही उनका शो कर रहे हैं और पहली दफा ही आपसे बात हो रही है अंताक्षरी वाला सेगमेंट विशेष करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
5: धन्यवाद मैम
1: जी। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं। हेलो
6: तो
1: हाँ जी अमित कुमार जी।
6: जी
1: आज कौन टीम जीतेगी पता नहीं है, लेकिन दोनों बराबरी पर है और आपकी कॉल आने के बाद में थोड़े से आगे हो जाएगी। जी हाँ, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी करते सबकी चाल, और नेक्स्ट वर्ड क्या था?
6: ला।
1: जी हाँ बिल्कुल, चलिए सुनाइए।
5: लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से, हाय रे पिया ने देख लिया तुझे धोखे से, माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें,
1: कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने कंप्लीट कर दिया, वही काफी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे अमित कुमार जी, और इन्होंने इस तरह से अपनी टीम को 130 पर पहुंचा दिया है। और नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ में भाई महिलाएं भी कम नहीं है, पूरी तरह से लगी हुई हैं। हेलो,
7: हेलो मैम।
1: हाँ जी, माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो, तो आपको वाह से गाना है, या तो वो से गाइए या तो वाह से गाइए।
7: वाह से सुनाते
1: जी।
7: बहराम जी जोड़ी क्या बनाए, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाए, भैया
1: आगे
7: और आगे तो नहीं आज
1: है। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई, टन टन टन। थैंक यू,
7: आपकी आवाज कितनी प्यारी है मैम।
1: थैंक यू सो मच डियर, थैंक्स अ लॉट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, शुक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे कौन है, लेकिन उससे पहले वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, और भाई और भाभी को बधाई हो, बधाई। तो भाई ई से आप लोगों को गाना है, और हम इंतजार करते हैं नेक्स्ट कॉलर की कॉल का। तब तक आप सुनिए ये वाला गाना जो हम बहुत देर से बजाना चाह रहे लेकिन बज नहीं पा रहा है, और नेहा जी आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। अगर आप फ़ोन मिलाएंगी तो हम आपकी आवाज़ सुन पाएंगे, इच्छुक है थोड़ा सा, बस यही कहेंगे फिलहाल ये गाना।
8: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी, खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट।

0: पूछना है, हसीनो फिर से एक कॉल आ गई है और एक क्या हम तो कहेंगे कि हमारे पास में कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ में है कौन। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: अरे नमस्कार मैम, अरे मैं वही हूँ।
0: अरे आप वही हैं, हम समझ पा रहे हैं आप वही हैं, अनिल बनर्जी जी। जी क्या गाना था
1: तो भी नहीं।
0: जी जी लास्ट वर्ड क्या था?
1: अब आपसे अपना बात करके हमको बुलवा दी,
0: हम खुद हम भुला गए।
1: अरे तो भुला हम हो गई,
0: तो चला जाए फिर कोनो और, हम आपका नवा शब्द दे।
1: हाँ एकदम दे दीजिए, कोई नया दे दीजिए।
0: हाँ कोई नया देते हैं। और आपको चूंकि आपकी कॉल कई दफा आई तो मैं आपसे चाहते कि आप काल पे हमें गाना सुनाए। काल काल काल,
1: तो अगर आप कहेंगे तो मैं, अगर आपको टाइम हो तो मैं पूरा सुना दूँ या तो कहीं बीच में जैसे आपने बोला था पहले।
0: नहीं मुखड़ा ही सुनाइए क्योंकि पीछे से कॉल आ रही है कई दफा।
1: इसीलिए बोला था मैं।
0: जी सुनाइए।
1: लेकिन आप हमें अच्छी लगी
0: जी,
1: और आप बहुत छोटी हैं, बच्ची हैं, कोई दिक्कत नहीं।
0: जी जी बेशक, शुक्रिया आपके आशीर्वाद।
1: प्यारी बिटिया, लेकिन प्यारी बिटिया
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और आशीर्वाद का।
1: बिल्कुल रहेगा हमेशा रहे।
0: जी जी
1: तो बताएं कौन सा सब्जी है।
0: वैसे तो मैंने काल बोला, काल ताल जो आपको लगे, ताल में जाना चाहेंगे आप, काल के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे वो आपकी मर्जी है।
1: काल मतलब
0: समय का चक्र। हाँ का का काल,
1: काल मतलब कैसे।
2: कभी तो आसमां से चाँद उतरे ना, काम आ जाए। कभी तो आसमां से चाँद उतरे और जाम हो जाए तुम्हारे नाम के एक शाम हो।

0: थैंक यू सो मच भाई, पता नहीं क्यों आपकी आवाज में कशिश सी हमें महसूस होती है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नहीं, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया, थोड़ा गला चोक हो गया।
0: नहीं, कशिश नहीं होती, वो बात ही कुछ और होती है। फिलहाल हमें थोड़ी बहुत परख है आवाजों की, इसलिए बोला, शुक्रिया।
1: लेकिन धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत
0: बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, और नेहा जी, अगर आपकी कॉल नहीं लग रही, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, दोबारा करिए, जरूर लगेगी इस बार। उदालक शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और हाँ जी, नेहा, नीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अब मैं क्या ही बोलूँ इस पर। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर। हाँ जी, हेलो,
2: ए से सुनाना है, ये
0: हो जाए। हाँ, ए से, ए ए ए, ये जो भी आपको लगे।
2: ओके, इश्क है क्या, एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द होता है किसको दिल नहीं देना, किसको दिल नहीं देना। थैंक यू मैम,
0: थैंक यू सो मच। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट कॉल की ओर, उससे पहले ही पता नहीं क्यों कॉल काट दी जाती है। भाई आप अगर कॉल करिए, थोड़ी देर रुके रहिए ताकि हम आपका कॉल पिक कर सकें, इतना ही खाली आपसे कहना है। ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कोई दर्द हो सह ले, ना किसी को दिल नहीं हो देना, मतलब ना से गाना है, और ना से हम देखेंगे कि कौन हमें गाना सुनाने वाला है। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मीरा मैम, सुरेश कुमार बोल रही है।
0: ना ना ना ना
1: ना ना ना,
0: जी हाँ, ना ना ना ना ना ना, बिल्कुल।
1: अरे ना से नल,
0: अरे ना से नल, नाक से नल की।
1: ना कोई उमंग है, ना कोई चरंग है, मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। और पूरा करें?
0: नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ में हमारे सुरेश कुमार जी, और काफ़ी देर से आप सभी की कॉल्स आ रही है, और देखते हैं कि इस दफ़ा कौन है जो कंप्लीट करेगा नेक्स्ट को, यानी कि ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी है क्या, एक कटी पतंग है, हाथ से। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगी आप सभी को, 33 हो चुका है और 40 तक मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी। देखते हैं नेक्स्ट कॉल किसकी है, बड़ी देर से इंतज़ार है जिसका। हेलो
3: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हैं आप?
3: अरे बढ़िया, आप बताइए।
0: आप अपना नाम बताइए पहले हमारे श्रोताओं को।
3: नेहा बोल रहे हैं।
0: जी हाँ, ये नेहा जी बहराइच से, बड़ी देर से परेशान थी, फोन नहीं लग रहा, फोन नहीं लग रहा है। फिलहाल फाइनली आपकी कॉल लग गई है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी टीम को जिताने की ओर फोकस करिए और हमें गाना सुनाइए। हाँ सिंह, हेलो,

0: ना जाने क्यों कुछ टेक्निकल इशू के चलते भाई कॉल डिस्कनेक्ट हुई और फिर से आ भी गई। हेलो
1: जी।
0: हाँ जी, तो हाथ से जल्दी से गाना सुना दीजिए क्योंकि आपकी कॉल लगती ही पता नहीं क्यों कॉल रिज्यूम दिखाता है हमको।
1: हाँ
0: हाँ जी।
1: हमें तुमसे प्यार कितना,
0: ये तो हमें भी नहीं पता है।
1: हम नहीं जानते,
0: बताएंगे भी नहीं,
1: मगर जी नहीं सकते तुम्हारे।
0: इतना शर्मा के कौन गाना सुनाता है जी?
1: शर्म आ जाती है आपकी आवाज सुन के।
0: अच्छा, अब आप, हम आपको क्या ही कहें, बहुत बहुत शुक्रिया वैसे। थैंक यू, टेक केयर।
1: थैंक यू,
0: थैंक्स अ लॉट। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, देखते हैं कौन हमारे साथ में। हेलो। हाँ जी, तो हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते और मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। फिलहाल दोनों टीमें हैं 150 पॉइंट पर, दो की दोनों, और देखते हैं अभी हमारे साथ में जुड़ गई हैं श्रद्धा जी, ये अपनी टीम को कहाँ लेके जाती हैं।
1: जज्बे की धार ना मोतियों का हार ना कोई सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम ही तो मेरे हो। ये गाने हम आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: ओह माय गॉड, भाई मैं लुका जाऊं फिर आके शो करूं? बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सेम सॉन्ग मेरी ओर से। आपकी स्माइल बहुत ही प्यारी है और आपने पूरे टीम को अपने बांध के रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है, कौन विजयी घोषणा, किसकी ओर रुझान बढ़ेगा, क्योंकि शेष मेरे पास 4 मिनट और है दोस्तों, और टीम बी हमारी पहुंच गई है 160 पर, और टीम ए के भी, ए की ओर से भी अमित कुमार जी आ चुके हैं, और प्लीज गाना सुनाएं।
2: हाल क्या है दिलों का न पूछो शर्म, तेरा यूं मुस्कुराना गजब जा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो शर्म।
0: माँ से बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन जुड़ गए हैं। हेलो।
3: हेलो, गुड इवनिंग।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, अपना शुभ नाम बताएं। 160 पर दोनों टीमें टिकी हुई हैं, इधर से एक कॉल आती है दूसरी उधर से। आशा मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत, बड़ी देर से आई लेकिन आ गई, यही काफी है हमारे लिए। तो हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, तो या से आप गाना सुना दीजिए।
3: या से जाने से जान जा रही है, याद आ रही है।
0: बहुत बहुत थैंक यू, याद आ रही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी। तो हाँ से अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है। भाई टीम बी है 170 पर, यानी महिला है 170 पर और पुरुष है हमारे 160 पर। हेलो हेलो
4: हेलो।
0: हाँ जी, हाँ से आपको गाना गाना है।
4: ओके मैम।
1: हुस्न है सुहाना, इश्क़ दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आगे दीवानी।

0: या से जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से आपने अपनी टीम को पहुंचा दिया है कहीं ना कहीं। हेलो भाई, इस तरह से टीम जो हमारी बी है वो पहुंच चुकी है 180 पर, और नेक्स्ट कॉल देखते हैं कि किसकी है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, फिर से एक बार हमारे बीच में है मौजूद हमारे अमित कुमार जी। 180 पर है लड़कियां और 160 पर है पुरुष, देखते हैं अब क्या होता है।
1: याद याद याद बस याद रह जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद याद याद बस याद रह जाती है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया है यानी मतलब कि हाँ से हमें अभी नेक्स्ट गाना देखते हैं और लास्ट मिनट में किसका कॉल आता है यही डिसाइड करेगा कि जीतता है कौन। फिलहाल लड़कियां 10 पॉइंट से आगे हैं, लड़के हैं 10 पॉइंट से पीछे, देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे कौन है। हेलो।
2: हेलो, हाँ नीना बोल रहे हैं।
0: ओह हो नीना जी, आपने तो अपनी महिला मंडली को जिता लिया। हाँ से पहले गाना सुना दीजिए उसके बाद।
2: हाँ से,
0: हाँ जी हाँ से।
2: हम तो

जी हाँ, हम भी नहीं, हमें मालूम था आप हमें ही डेडिकेट करेंगे। इससे पहले बता दें कि हमें व्हाइट रसगुल्ला बहुत पसंद है और ये गाना उस व्हाइट रसगुल्ले के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इस तरह से आज का जो ये गेमिंग सेशन है वो यहीं पे करती हूँ मैं समाप्त, क्योंकि मैंने घोषणा पहले की थी और अभी भी जो कॉल आ रही है वो महिलाओं की ही आ रही है। लगातार आशु जी की और श्रद्धा जी की कॉल आ रही है। शैलेंद्र रिझारिया जी भी कहीं ना कहीं कॉल कर रहे थे, लेकिन और साथ ही में सुरेश कुमार जी की भी कॉल आ रही थी, लेकिन तर तोबड़ कॉल आने की वजह से वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और इस तरह से हमारी जो महिला टीम है वो विजयी होती है पूरे के पूरे 20 पॉइंट से आगे जा करके। महिलाओं की जो बढ़त है वो लगातार बनी रही और इस तरह से आज की जो विजयी टीम है वो महिलाओं की है। मैं भूल भी गई कि कितना पॉइंट किसका है, लेकिन ये बात तो सही है कि महिलाएं जीत चुकी हैं 20 पॉइंट से आगे जा करके। तो भाई सेलिब्रेशन करिए, कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सभी को, कॉन्ग्रेट्स है। और इस कॉन्ग्रेचुलेशन वाले पल को मनाने के लिए मुझे लगता है एक गाना बजाना चाहिए, और गाना होगा वो जो अब हम आपको सुनाएंगे अपनी प्लेलिस्ट से। एंजॉय करिए इस ट्रैक को और तब तक एंजॉय करिए अपने सेलिब्रेशन को। महिलाएं विजयी हुई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से पूरी तरह से, दोनों ही टीमों ने कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट किया कि दोनों ही विजयी हुई, लेकिन कॉल्स और फोन के चलते आप तो समझते ही है ना कि जो लग गया, जो कनेक्ट हो गया और हमारे टेक्निकल बाबा ने जिसको सपोर्ट कर दिया वो जीत गया, जाहिर सी बात है। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को और फिर आते हैं हम आप सभी से बाय बोलने के लिए। फिलहाल एंजॉय करिए, आप सभी जीत गई हैं भाई महिलाओं।

और सभी महिलाओं के लिए विशेष करके ये गाना तो आप सभी को पता ही कौन सा है, लेकिन सभी चाहते हैं कि जब जो भी महिला जिसकी लाइफ में आए वो सातों जन्म उसका साथ निभाए। क्या ये सच है? मैं जानना चाहूंगी पुरुष लिसनर से, हमारे जो हमारे चैट बॉक्स में मौजूद हैं।

क्लास में एक लिसनर हैं जिन्होंने अपना नाम तो नहीं रखा, लेकिन ये महाराज बुलबुले की साइन के साथ में आते हैं। इनका कहना, मुझे पता होता तो मैं पहले ही कॉल कर देता, ये लोग हर रोज जीत जाती हैं। तो एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि पुरुष हमारे शुरुआत से जुड़े रहते हैं, एकदम से तत्पर रहते हैं, और महिलाएं आखिरी में आके बाजी मार जाती है, पता नहीं कैसे। मुझे भी आज बिलीव नहीं हो रहा है। फिलहाल ये गाना

दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। बज गए हैं 7:45, जो कि वक्त है गीत आपके नाम से का, यानी कि अपनी आपकी अपनी आरजे सिंपल जी का आने का। और अजय विक्रम यादव जी, आपका भी स्वागत है। और अभी हम चलते हैं, और इसमें मैंने कोई भी गलत बात नहीं की है मनी जी, आपको मैं बता दूं। मैंने 6:40 से गेम स्टार्ट किया, और मैंने कहा था कि 7:40 तक ही ये गेम चलेगा, बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं, वरना कॉल्स तो आप सभी की आ ही रही थी। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं आप सभी से भोजपुरिया शाम के 7 में। अपनी अपनी प्यारी वाली फरमाइशें लाइएगा, जिसमें कि ढंग की फरमाइशें जो मैं प्ले कर पाऊँ, और कुछ हम अपनी बातें रखेंगे, कुछ आप अपनी बातें रखेंगे। फिर से शाम को रंगीन बनाएंगे, उससे पहले कॉलर ट्यून गोंडा आपका अपना शो आपके साथ रहेगा, आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के साथ रहेगा। फिलहाल ये सफर बहुत मजेदार रहा आज का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।

भैया जाते जाते कॉलर्स के लिए, सभी कॉलर्स के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी के लिए गाना बजा देते हैं, और ये गाना मेरी प्लेलिस्ट का ये वाला। बाय बाय।

ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खास, बहुत प्यारी बात, जज्बात, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन उसके पहले दोस्तों, हम मोहब्बत में दरख्तों की तरह हैं, जहां लग जाएं मुद्दतों वहीं खड़े रहते हैं, ना धूप से शिकवा करते हैं ना मौसमों के बदलने से डरते हैं। जिसे अपना मान ले एक बार, फिर उम्र भर उसी के लिए जड़े रहते हैं। लोग छोड़ जाते हैं राहों में अक्सर, लोग छोड़ जाते हैं राहों में अक्सर, मगर हम वफा की मिट्टी में गड़े रहते हैं। सो ये लाइंस थी द ग्रेट सेन साहब की तरफ से। एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन इसके पहले, जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है। सो एंजॉय करते हैं दोस्तों हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मनीष शर्मा फ्रॉम कोरासा, गोंडा आशू मिश्रा फ्रॉम लखनऊ, उदालक शर्मा मनकापुर से, अनिल शास्त्री गोरखपुर से, अजय विक्रम यादव आपका भी स्वागत है, नीना एंड नेहा बहराइच से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, नागेश्वर धाकड़, सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, श्याम नाम की पगली मीन से, सुमित्रा जी आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके आरजे सिंपल। सो हमारे पास में पहली पहली पहली पहली फरमाइश है दोस्तों आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और उनको सुनना है गाना हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे, ओ माय गॉड। सो एंजॉय करते हैं ये तंबू में बंबू गाना, मींस मर्द मूवी का ये सुपर डुपर डुपर हिट गाना आशु जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी और कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: तंबू लंबू में ए लंबू तंबू में बंबू लगाए बैठे,
1: लंबू तंबू में बंबू लगाए बैठे।
2: हमने एंजॉय किया है मर्द का ये सुपर डुपर हिट गाना हमारी आशु जी की फरमाइश पे जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की। उदालक शर्मा को सुनना है गाना सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक। सो एंजॉय करते हैं मोहरा का ये गाना उदित नारायण की आवाज में हमारे उदालक शर्मा की फरमाइश पे जो की है मन का पुलिस। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

करो, बहुत प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि बस बेइंतहा प्यार करो। हमने एंजॉय किया है उदालक शर्मा की फरमाइश पर ये वाला गाना। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, आहा, अगली फरमाइश हमारे पास में है 3 Pink Bubbles की, और इन पिंक बबल्स को सुनना है गाना। का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के और उठाए लघुंगटा, चांद देख लें। सो हम 5 का ये सुपर डुपर हिट मिथुन दा का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हम एंजॉय करेंगे हमारे 3 Bubbles की फरमाइश पर। Stay tuned everyone. एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आनंद शर्मा फ्रॉम आवाज विकास गोंडा। स्टे ट्यून्ड एंड मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है।

0: स्वागत एंड इस्तकबाल करती है आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है। रफू चक्कर का गाना, किसी पे दिल लगा आ जाए तो क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है, बस वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।
1: पापा के

सो हमने एंजॉय किया है ये गाना जग्गू दादा की फरमाइश पर, और जग्गू दादा है एमपी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, बिना बिना बिना किसी देरी के। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की, और मुमताज अंसारी जी को सुनना है गाना तेरा नाम लिया तुझे याद किया। सो एंजॉय करते हैं ये फिर से सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, लेकिन इस बार मनहार जी की और अनुराधा जी की, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही रोमांटिक सी आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

याद किया। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। दिल से स्वागत है आपका केके गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है नेहा की बहराइच से। नेहा को बहराइच से सुनना है गाना जब भी मेट का आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उस्ताद राशिद खान का नेहा की फरमाइश पर जो की है बहराइच से।

आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। हमने एंजॉय किया है ये गाना नेहा की फरमाइश पर जो की है बहराइच से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, पढ़ेंगे पढ़ेंगे चलेंगे चलेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर का कहना है कि मैं रोया नहीं मुझे रुलाया गया, मैं पागल नहीं मुझे पागल बनाया गया, जानबूझकर ये जाल बिछाया गया, मुझे मोहब्बत के नाम पर आजमाया गया, मैं मरा नहीं मुझे जिंदा दफनाया गया, और मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं, मेरी भी कमी महसूस हो शायद, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं। ओह माय गॉड, इतना गहरा, आहां, इतना स्ट्रेट। सो ये लाइंस थी नागेश्वर धाकड़ की तरफ से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहम्मद मुशीब की, और मोहम्मद मुशीब को बाराबंकी से सुनना है गाना याद सताए तेरी नींद चुराई तूने। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। आहा, गोविंदा और करिश्मा कपूर का गाना, राजा बाबू मूवी का, उदित नारायण कविता जी की आवाज में, मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश।

और अब दिल ना लगे दिल भर हमने एंजॉय किया ये गाना मोहम्मद मुशीद जी की फरमाइश पर जो कि है बाराबंकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है शिवम दुबे की लखनऊ से, और शिवम दुबे को लखनऊ से सुनना है गाना दूसरी दुनिया। सो एंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ शिवम दुबे की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी दूसरी दुनिया हमारे शिवम दुबे की, जो कि हैं लखनऊ से, और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद दुनिया की सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं। उनकी भी आंखों से पर्दा उठ चुका है कि जो अच्छे होते हैं अक्सर वही ठगे जाते हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजन सिंह की, और उनको सुनना है गाना खर्च करोड़। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ राजन सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

है क्या है ये गाना राजन सिंह की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, चांदनी की, और चांदनी को सुनना है गाना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, क्यों, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। सो एंजॉय करते हैं चांदनी की फरमाइश पर ये वाला गाना, और चांदनी है गोंडा से। स्टे ट्यून।

जाता है। कुमार सानू और आशा जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है दिल का क्या कसूर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की और उनको सुनना है गाना ओ लाल दुपट्टे वाली। सो एंजॉय करते हैं मनीष शर्मा की फरमाइश पर ये गाना कुमार सानू और कविता जी और हाँ अलका याग्निक जी की भी आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है आनंद शर्मा की आवाज विकास गोंडा से। अभी तो हमने एंजॉय किया कुमार सानू कविता जी और अलका याग्निक जी की आवाज में गाना। अब एंजॉय करेंगे हम लोग वो परी कहां से लाऊं सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा आनंद शर्मा की फरमाइश पर जो कि है आवाज विकास गोंडा से।

कल्याणपुर जी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी आनंद शर्मा की आवाज विकास गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है ममता कसौदन की, उनको सुनना है गाना ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। इंजॉय करते हैं ये वाला गाना। इस फरमाइशी गीत की उस तरफ चलेंगे हम लोग आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो पेट पूजा करके आना, फिर काम दूजा मीन्स एंटरटेनमेंट करेंगे, और 9 से 9:30 की महफिल में जितने भी चांद सितारे लगाना चाहें, जो भी कलर बिखेरना चाहें, जो भी जज्बात बिखेरना चाहें बिखेरेंगे। एंजॉय करते हैं फिलहाल ही वाली फरमाइश, मींस ममता कसौदन जी की फरमाइश। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि सिंपल जिंदगी में तुम्हें ये गाना नहीं सुनना है, और अगर तुम्हें ये गाना सुनना है तो तुम जब भी सुनोगी तुम्हें शूट कर दिया जाएगा, तो मैं ये कहूँगी शूट मी नाउ, लेकिन मैं ये गाना तो ज़रूर सुनूंगी।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, धान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
6: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
5: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
7: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
5: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
9: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सो एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आपके अपने शो फरमाइशी में। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकमिंग योर शो एंड स्वागत है आपका तन्वी शुक्ला जी, गीता श्रीवास्तव जी फ्रॉम गोंडा स्टे ट्यून्ड एंड इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। इतना प्यारा गाना है कि मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ लेकिन मैं इतनी इमोशनल हो चुकी हूँ। मतलब सच में यार होते ना ऐसे गाने कि बेटी की विदाई हो रही है, पिताजी रो रहे हैं, बेटी रो रही है, परिवार रो रहा है, माँ रो रही है, बहन रो रहा है, भाई रो रहा है, रोना तो आएगा ही आएगा ना। सो चलिए अब इन फीलिंग्स को कहते हैं साइड में क्योंकि हमारे पास में है अगली फरमाइश मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना ऊंचा लंबा कद फॉरएवर। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की बप्पो को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो 91.6 FM गोंडा शहर की धड़कन स्टेडियम।

हमने एंजॉय किया है ये हाई बाय वाला हाई एनर्जी वाला ब्लॉकबस्टर सॉन्ग सिपर सिप मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से जय मिश्रा की फरमाइश पर नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की। नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना संडे की रात। अच्छा जी, क्या हुआ आपके साथ संडे की रात? इंजॉय करते कुमार सानू की आवाज में ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड।

संडे की रात थी, हमने एंजॉय किया है ये गाना नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। अच्छा जी, आराम भी नाम है जीवन का, थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक चलते ही नहीं रहना चाहिए।

मोहन की फरमाइश पर हमने इंजॉय किया है ये गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से। सो निशा की फरमाइश पर पटेल नगर गोंडा से इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा बीवी नंबर 1 मूवी का। स्टे ट्यून्ड।

हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आज मनु जी आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके आज सिंपल नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ, आज तो वीक ऑफ है। हाँ, मजे लिए जा रहे हैं, पल्ले बल्ले हो रहे हैं, की बातें हैं, पार्टी शार्टी चल रही है, अकेले अकेले चल रही है, बुलाया भी नहीं। हाँ, सो हमने एंजॉय किया, ये गाना एंजॉय करते हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है महामनु जी की, मीन्स हमारे आरजे मनु की, और उनको सुनना है मोहम्मद रफी जी की आवाज में नगमा। सो एंजॉय करते हैं हमारे

किस कब होते हैं ये जरूर बताना हमारे महामनु जी। और आपने स्टूडियो में बैठ के मुझे ऐसे मतलब रेडियो पे ऐसे मैसेज किया ना, तो मुझे यही ख्याल हुआ कि शायद आज आपका वीक ऑफ है और आप तो मज़े कर रहे हैं और मैं यहाँ शो कर रही हूँ अकेले अकेले और आप अकेले अकेले मज़े कर रहे हैं। मुझे क्या पता था कि आप बाहर मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओह माय गॉड, सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। सो दोस्तों हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है दोस्तों गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना तू नजम नजम सा मेरे होठों पे ठहर जा। सो एंजॉय करते हैं बरेली की बर्फी का ये गाना। इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि कल फिर इसी बुद्धि के साथ में मैं मन बुद्धि के साथ में फिर से आप सभी के बीच में आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल।

0: नफरत की हमारे शहर में लग न जाए आग, नफरत की हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और आज हम नहीं बोलते साहब, आज तो सिर्फ आप बोलते हैं और हम सुनते हैं। और अब आपके कार्यक्रम को प्रारंभ करने का समय हो चुका है और देखते हैं भाई आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कौन करता है। फिलहाल भाई इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग भाई, आपको भी शुभ संध्या। गीता बहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मनी शर्मा जी ने भाई स्वागत कर दिया है। जी हाँ, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। और फ़ोन नंबर आपका भाई है साहब 63 93 31 64 29, 6393316429। तो देर न करते हुए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि भाई इस समय हमको बढ़ाना पड़ जाता है 10-15 मिनट, क्योंकि सभी लोग को सुनना होता है। तो हम ये चाहेंगे कि अब विलंब के ही कारण कीजिए, विलंब करने का कोई कारण नहीं है। और आई लव गोंडा ये, हेलो सर जी, बिल्कुल आप, अगर आप गोंडा से प्यार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए भाई। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि जो है स्वर्ग से बढ़कर होनी चाहिए और है तो बहुत अच्छी बात है जी। तो सिलसिला प्रारंभ किया जाए और देखना यह है कि इस सिलसिले को कौन शुरू करता है, कौन प्रारंभ करता है, कार्यक्रम की आधारशिला कौन रखता है। जी हाँ, फोन आ चुका है, देखते हैं कौन हमारे

फोन स्वतः डिस्कनेक्ट हो गया भाई। जी हाँ, तो शुरुआत कीजिए आप। वैसे आज एक बहुत ही प्यारा सा गीत मेरे मन में आया और उसको सुना भी मैंने, मेरे नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, तुझसे ये कैसे रिश्ते। बहुत ही प्यारा गीत लगा और आज हमने भी भाई फरमाइश कर दी सिंपल मैम से कि ये गीत हमको भी सुनना है। और भाई अंताक्षरी में जरा हाल चाल बताइए, कौन जीता कौन हारा, जरा हम जानना चाहते हैं कि आज की अंताक्षरी किसके नाम रही और टीम ए या टीम बी, किसी न किसी ने तो एक बार बाजी मारी ही होगी, तो जरा बताइए बाजी किसने मारी। फिलहाल प्रतीक्षा है, कहीं से कोई भामाशाह आएगा। अब कहा जाता है फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टिपिकल, पहला कदम बहुत कठिन होता है, तो जो पहली कॉल होती है ना, वो इंसान सोचता है कि चलो कोई गा ले तब हम गए, तो पहले आप पहले आपके चक्कर में कभी कभी ट्रेन छूट जाती है, तो ट्रेन मत छोड़िए। जी हाँ, आपकी प्यारी सी आवाज़ सुनने के लिए हमें बेताब और आप की प्रतीक्षा है हमें।

0: और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो सर, मैं मोहनलाल श्रीवास्तव बोल रहा हूँ।
0: अरे चरण स्पर्श, बहुत दिन के बाद आपकी आवाज सुनाई पड़ी हमको।
1: अरे सर, हमारी तबीयत खराब हो गई थी, हमारा हार्ट अटैक हो गया था।
0: अरे अरे अरे, मतलब ये कैसे हुआ?
1: अब मैं ठीक हो गया हूँ थोड़ा।
0: मतलब स्वस्थ है बाप
1: जी? आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। आपको पेस मेकर मशीन लगाया गया है हमको।
0: अरे
1: हाँ, मगर ठीक हूँ, ठीक हूँ।
0: ईश्वर आपको सतायु करे और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे।
1: जय भी राके राम।
0: हाँ, ते ही भी रहिए।
1: जिंदगी में सर ये सब तो आता ही रहेगा सर।
0: जी जी बिल्कुल, निसंदेह। और जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो उसका सामना भी बड़ी साहस के साथ करते हैं, और आप उनमें से एक हैं।
1: तो एक छोटा सा मतलब एक गीत मैं सुनाए देता हूँ
0: जी।

नजर जब गई है मिल, जहाँ कदम तेरे वहाँ मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी

उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों के।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, बहुत दिन के बाद इतना सूदिंग सा गीत सुनने को मिला। और क्या आवाज है, वही आवाज है, ईश्वर आपको जो है वो दीर्घायु करे और हमारा मार्गदर्शन आप करते रहे।
0: थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
1: कोई बात नहीं, आप पूर्ण से आश्वस्त हो। रेडियो 89.6 एफएम परिवार आपके शीघ्र
0: याद आपकी आती थी तो फोन पर हमने कहा बात करते तो तबीयत ही नहीं ठीक थी। आप ठीक हुए हैं?
1: नहीं नहीं, आपको
0: गोंडा में नहीं हूँ सर, अभी मैं फैजाबाद में हूँ।
1: जी जी,
0: अयोध्या में बेटे का हमने घर बनवाया था, यही पर हूँ, बेटे के पास हूँ।
1: चलिए तो कल तो अयोध्या हम भी आ रहे हैं अपना TDT का पेपर देने।
0: आएंगे क्या अयोध्या? आएंगे
1: जी अयोध्या, कल
0: पेपर। अच्छा, तो
1: कल पेपर है
0: तो आइए फिर, आइए यहाँ।
1: अरे बस आपका दर्शन हो जाएगा।
0: आप फोन कीजिएगा देवकाली से। ये हमारा जो है ये अकबरपुर रोड पर है, देवकाली से 1 किलोमीटर।
1: जी जी,
0: आप फोन कीजिएगा।
1: ईश्वर ने चाहा तो आपसे मुलाकात कल होगी अयोध्या।
0: ओके ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।
1: प्रणाम आपको।
0: प्रणाम सर, प्रणाम सर।
1: जी हाँ भाई, तो ये आवाज हमने बहुत दिन के बाद सुनी और रीजन इसके पीछे ये था कि स्वास्थ्य नहीं ठीक था और भाई हम तो चिंता में थे। और विशाल बेदर्दी जी है, मनु सर क्या है ये TGT का पेपर? TGT मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मतलब जिन लोगों ने BEd कर रखा है वो लोग विषय विशेष से अपना पेपर देते हैं, तो वही है मतलब TGT एक प्रकार की वैकेंसी होती है जिसमें सरकारी अध्यापक चुने जाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। जी हाँ, फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कौन है मेरे साथ। हेलो,
2: हाँ नमस्कार।
1: अरे दादा प्रणाम,
2: खुश रहिए, कैसे हैं सर?
1: आशीर्वाद आपका दादा, आशीर्वाद।
2: तो मैं आज आपको रफी साहब का एक बड़ा प्यारा गीत सुनाऊंगा।
1: रफी साहब ने जितने भी गीत गाए सब प्यारे ही तो है।
2: नहीं, उसमें तो कोई बात नहीं की है, आप बोल रहे हैं।
1: आज मैंने भी एक गीत सुना रफी जी का, वो नन्हे से फरिश्ते।
2: नहीं, वो तो है बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आज एक अपने दिल की बात सुनाऊंगा।
1: अरे क्या बात है,
2: तो अगर आप इजाजत।
1: अरे नहीं नहीं, हम आपसे प्रार्थना करेंगे।
2: यह फिल्म मजहूर सुल्तानपुरी ने लिखा हुआ है
1: जी,
2: और गाना है आकाश दीप का।
1: ओहो क्या बात है, मैं अकेला यूं ही मजे में था।
2: अरे भाई, हमारे श्रीमती जी का नहीं है, आज ग्रुप बी मतलब महिलाओं की टीम जीती।
1: चलिए इसके लिए भाई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: नहीं, सपोर्ट मैंने भी थोड़ा बहुत किया।
1: मतलब आप पुरुष होकर महिला का सपोर्ट करते हैं ये?
2: अरे भाई देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि
1: नारी सशक्तिकरण,
2: गृह मंत्रालय क्या होता है
1: जी, वह हमने कहा ये नारी सशक्तिकरण की सबसे अच्छी मिसाल आपने पेश की।
2: एक्चुअली क्या है, सबसे पूजनीय नारी
1: जी,
2: तो भाई उनका अगर साथ ना दे तो किसका? तो मैं, मुझे दर्द दिल का पता नहीं।
1: मुझे आप किस लिए मिल गए, क्या बात है,
2: मैं आपके लिए ही गा रहा हूँ।
1: अरे साहब, अरे साहब ऐसा मत कीजिए जी, बिल्कुल।
2: अरे नहीं भाई, दिल की बात है
1: जी।
2: मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए? मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए? मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए? मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस
0: लिए मिल गए, यूं ही अपने अपने सफर में गुम।

मैं हूँ कहीं दूर, मैं कहीं दूर तुम कहीं दूर तुम।

मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, नाम चांद हो मिस शाह।

0: बंद हो किस शाम का, चराग हूँ किस बाम का, किस बाम का, मैं तो रास्ते कहूँ एक दिया मुझे आप इसलिए मिल गए, मैं के नहीं हुई मजे में था मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता था मुझे आप किस लिए मिल गए। धन्यवाद सर।
1: क्या बात है दादा, आपने गाना गाया नहीं है, इसको निभाया है, और हम दावा करते हैं कि गाते वक्त आपकी आंखें बंद रही होंगी।
0: सर क्या बात है, आपने बोला, मैं कोशिश किया हूँ
1: बहुत,
0: एक्चुअली खाना भी खा लिया हूँ।
1: नहीं नहीं खाना, तो नहीं नहीं खाना खाने से मतलब शेर शेर ही रहता है।
0: थैंक यू।
1: मुझे दर्द दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए, क्या बात है। और भाई
0: एकदम मैंने आपके लिए बोला सर।
1: अरे हमारे लिए नहीं, अरे मुझे दर्द
0: दिल की बात है, दिल की बात
1: नहीं तो हम आपको दिल का दर्द नहीं देंगे कभी।
0: अरे भाई मैंने दर्द की बात ही नहीं किया, आपने कुछ शेर का मतलब समझिए।
1: अच्छा, मुझे दर्द दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए, मतलब आप मिले तो
0: आपने मरहम लगाया।
1: अच्छा ये बात है ये तो इसके लिए तो भाई धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद।
0: इंशाल्लाह जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी आपकी।
1: जी जी बहुत बहुत प्रतीक्षारत हूँ मैं भी, और हमारे साथ
0: अरे मैं खुद हूँ
1: आपकी अर्धांगिनी, और हमारी भाभी जी जुड़ चुकी हैं, प्रणाम करते हैं आपको चरण स्पर्श, और शुभ संध्या आपको भी।
0: क्या उनसे भी सुनेंगे?
1: बिल्कुल सुनेंगे साहब, मतलब उनके स्वास्थ्य इतनी दुआएं की हैं कि जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो जी। और भाई मोहल्ला श्रीवास्तव ने लिख दिया है, मुझे दर्द दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए, और देखते हैं कौन है हमारे साथ भाई अब। हेलो,
2: हाँ नमस्कार।
1: ओ दर्द कुमार जी कैसे हैं आप?
2: हाँ ठीक है भैया,
1: मैं सही हूँ ना, आवाज मैंने सही पहचानी है?
2: हाँ सही है। और आप कैसे हैं
1: जी? आपका आशीर्वाद है।
2: बस ठीक है, आप ठीक ठाक लौट आए वहाँ से, अयोध्या से?
1: नहीं हमको कल जाना है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए भगवान आपको कल खुश रखे, कल कामयाबी दे। अरे हम आज ही जाएंगे अपने साथ।
1: अरे नहीं नहीं बस आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए।
2: हाँ ठीक ठीक, भगवान खुश रखे, आप कामयाब होंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप।
2: तो हाँ तो चलो बिना देने के कुछ
1: जी,
2: अभी भी दुकान, आप दुकान से है, दुकान से घर नहीं गए हैं?
1: जी जी
2: तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा हमने, बस इतनी खता है मेरी और खता क्या, तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा हमने, बस इतनी खता है मेरी और खता क्या, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आके इतना ही अरमान है, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आके इतना ही अरमान है, तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा हमने, बस इतनी खता है मेरी और खता क्या शीशा ये लता शीशा ये दिल में छुपा है ओ सितमगर तेरा प्यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार शीशा ए दिल में छुपा है ओ सितमगर तेरा प्यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा हमने बस इतनी खता है मेरी और खता क्या
0: थैंक यू सर
1: क्या बात है भाई और विशाल बेदित ने लिख दिया है कि दर्द कुमार जी के गाने से पहले ही हम लिख देते हैं बहुत अच्छा गाया कभी फर्क नहीं पड़ता है बहुत बढ़िया गाते हैं क्या बात है वो भाई मोहनलाल श्रीवास्तव ने लिखा वेरी नाइस सिंगिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग और तन्वी शुक्ला जी ने लिखा है कि भाई बहुत सुंदर दादाजी क्या बात है भाई महफिल लूट ले गए आप
2: चलो भगवान सबको खुश रखे मेरा आशीर्वाद इसमें निकल जाता है आप लोगों की दुआएं हैं
1: अरे नहीं वास्तव में आप बहुत अच्छा गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं
2: हाँ थैंक यू
1: अच्छा प्रणाम जी हाँ भाई तो ये हमारे दर्द कुमार जी वेरी नाइस सिंगिंग भाई मोहनलाल श्रीवास्तव ने लिखा है ब्यूटीफुल सॉन्ग जी बिल्कुल निसंदेह और अब देखते हैं कौन हमारे साथ दोबारा फिर फोन पर
3: हेलो
1: हेलो
3: जी सर नमस्ते
1: जी नमस्ते
3: कैसे हैं आप
1: ओहो पूरब दिशा बोल रही है जी हाँ जी हाँ जी हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये प्राची जी की आवाज़ है
3: जी बिल्कुल
1: बिल्कुल ना
3: जी मेरी ही आवाज़
1: जी और कैसी हैं आप
3: मैं बढ़िया आप कैसे हो
1: बस आपका आशीर्वाद
3: हाँ। वो तो हमेशा रहेगा
1: हमेशा बनाए रखिएगा हाँ
3: जी आपका मेरे पे मेरा आप पे
1: जी जी जी बिल्कुल हम दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं देते रहेंगे
3: जी
1: जी तो क्या सुनाने वाली हैं आप
3: आज मैं ये रातें ये मौसम
1: क्या बात है क्या बात है क्या गीत सुना आपने
3: सुनाऊं मैं
1: जी जी निसंदेह
3: जी रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंद

0: इतनी चल हवा गिराते ये मौसम नदी का किनारा, इतनी चल हवा। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, उस्मान खान ने लिख दिया, वाह वाह। और तन्वी जी लिखती है भाई, वाह नाइस, वेरी नाइस, मुझे बहुत पसंद है। और तन्वी जी ने भी तारीफ की है भाई, क्या बात है, गीत आपने बहुत अच्छा सुना और उतना ही बढ़िया निभाया भी।
0: थैंक यू सो मच।
1: क्या बात है, आपकी आवाज आवाज है।
0: थैंक यू सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। जी हाँ भाई, तो धर्मेंद्र मोहन जी भी आज हमको सुनाने वाले हैं। धर्मेंद्र मोहन जी की आवाज़ हमने सुनी नहीं है भाई, और हम चाहेंगे कि आज धर्मेंद्र मोहन जी सुनाएं अपने मेहमान पर एक एहसान कर। जी हाँ बिल्कुल सुनाएंगे आज धर्मेंद्र मोहन जी। उस्मान खान जी आदाब है, और कैसे हैं आप? जी हाँ शुभ संध्या आपको भी। और मोहनलाल श्रीवास्तव लिखते हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिंगिंग। जी हाँ वास्तव में बहुत ही शानदार गीत। और अब देखते हैं भाई, अब कौन आता है मैदान में।

0: भाई कभी हमने उस्मान खान जी को गाते हुए नहीं सुना, कभी तन्वी जी को गाते हुए नहीं सुना, तो आप लोग आइए। और धर्मेंद्र जी कह रहे हैं सर आज मैं सुन लूँगा आपकी आवाज़ में, गाने में सुनी नहीं है प्लीज़। नहीं नहीं धर्मेंद्र मोहन जी, मैं एकदम नहीं गाता हूँ और यकीन मानिए मैं गा भी नहीं पाता हूँ, और गाते तो आप लोग हैं, हम तो गुनगुना लेते हैं कभी साहब, तो आप गाइए, आज ये महफिल आपकी है साहब, हफ्ते में 6 दिन तो हम ही गाते हैं, एक दिन आपको गाने का मौका मिलता है, तो हम चाहते हैं धर्मेंद्र मोहन जी कि आप आज आप गाइए और साथ आपका हम दे देंगे, ये वादा है आपसे। आगाज आप कीजिए, अंजाम तक देखा जाएगा। जी हाँ हाँ क्या बात है। नमस्कार सर, गुड इवनिंग, आदाब है नेहा जी, और आज तो भाई देखते हैं नेहा जी क्या सुनाती हैं हमको। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अरे प्रणाम सर, पहले ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है।
1: हाँ पहले से बेहतर है,
0: मतलब अब तो कोई दिक्कत नहीं।
1: नहीं नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है।
0: चलिए मतलब हमारी जो है वो शुभकामनाएं प्रार्थनाएं रंग लाई।
1: बहुत हाँ बहुत रंग लाई है, और बहुत अच्छा लगा कि ये आप लोग किसी के स्वास्थ्य के लिए मतलब चिंता करके उनके कुशल से पूछा करते हैं।
0: जी हाँ, ये रेडियो 89.6 FM एक रेडियो नहीं है, ये एक परिवार है और हम एक परिवार के सदस्य है।
1: और आप कैसे हैं
0: जी? आपका आशीर्वाद
1: नहीं वो हमेशा बना रहेगा
0: जी, बनाए रखिएगा तो बहुत अच्छी है बात।
1: ठीक है, आज मैं विशेष तैयारी तो नहीं की, जो गाती रहती हूँ ऐसे गुनगुनाती हूँ उसी गाने को सुना दे रही हूँ
0: जी।
1: ठीक है, ये फिल्म रजनीगंधा का है
0: जी,
1: योगेश जी का लिखा हुआ है, उसे ही सुना रही हूँ। ठीक है शुरू करें
0: जी। निसंदेह निसंदेह।

0: रजनी गंदा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में आयू ही महके प्रीत प्यासी मेरे अनुरागी मन में। थैंक यू सर,
1: क्या बात
0: है, अच्छे से मैंने गा पाया।
1: नहीं, नहीं, आप जो गीत गाती हैं एकदम समझ लीजिए कि सुना नहीं होता है, और आपका कलेक्शन बड़ा शानदार होता है गीतों का, और उसको आप बहुत अच्छा निभाती हैं भाई। ये तो गीत हमने पहली बार सुना रजनीगंधा वाला।
0: जी जी
1: हाँ,
0: बहुत अच्छा गीत है, कभी इसे सुनिएगा रजनीगंधा का।
1: जी हम आज ही सुनेंगे, पहली बार तो मैंने सुना भाई। और तनवीर लिखते हैं सुपर मैम भाई, वास्तव में बहुत
0: जितना अच्छा मतलब था उतना मैं नहीं गा पाई हूँ तबियत की वजह से।
1: नहीं नहीं, आपने जो गाया उसको गाया नहीं, निभाया है।
0: जी जी
1: बहुत प्यारा, बहुत प्यारा भाई, क्या बात,
0: बहुत अच्छा है। एक बार सभी को सुनवा दीजिएगा जरूर।

0: गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं वो भी,
1: बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और उन्होंने आपके लिए भी तारीफ कर दी है, बहुत बहुत सुंदर सिंगर।
0: अच्छा, चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत अच्छा प्रणाम और चरण स्पर्श आपको,
0: खुश रहिए
1: जी। हाँ, हमारे साथ और कोई जुड़ चुके हैं भाई, देखते हैं कौन है हमारे साथ। तो जी हाँ भाई, अब इसके पश्चात जो है संदेश आया है नीना जी का, प्रणाम सर, आप करते हैं आपको जी भाई। नेहा जी के साथ आपने गाना गाया था, बहुत अच्छा गाना गीत आपने गाया था नीना जी, और हम चाहते हैं दोनों लोग आप मिलकर गाएं, या ना गाएं तो अकेले अकेले ही गाएं, लेकिन शानदार गाएं। और तंजीर लिखती हैं कि गंगाराम दादा ने जोड़ा है मुझे सर, बहुत पुराने लिसनर हैं, वो अब नहीं आ पाते क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, इसलिए नहीं आ पाते हैं। मैं उनकी बेटी की बेटी हूँ, वो मेरे नानू हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल, मतलब ये प्लेटफॉर्म ही आपके लिए है। और मुझे गाना नहीं आता सर, इसे देखिए, ये तो हम मान नहीं सकते कि गाना आता नहीं है। एवरीवन इज बाथरूम सिंगर, सब गाते हैं, ये कोई कह नहीं सकता कि हम नहीं गाते हैं। और उस्मान खान जी लिखते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तन्वी शुक्ला जी ने बहुत सारे स्टार्स दिए हमको, और दादाजी के नाम से फेमस है वो, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा है मैडम। और जी हाँ, हमारी बहन जी गीता श्रीवास्तव जी आ चुकी हैं, गुड इवनिंग आज सर, जी हाँ थैंक यू, और बहुत सुंदर गाना गाया मैम ने। और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
0: हेलो, नमस्कार सर
1: जी। अच्छा, नमस्कार।
0: कैसे हैं आप?
1: वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा।
0: सर हम आए थे, गलती हमारी नहीं है।
1: हाँ। मतलब आप आए, गोंडा इतना बड़ा है हमारा, स्टूडियो बहुत छोटा सा है।
0: हम आए डेढ़ घंटे थे, आई मीन सॉरी, शायद हाँ एक घंटे थे
1: जी, तो मतलब हमको सूचना नहीं प्राप्त हुई।
0: बिल्कुल सोचना नहीं पा, इनफैक्ट किसी को नहीं पता था कि हम आए हैं।
1: कुछ चीजों को सरप्राइज ही रखना चाहिए।
0: एक्चुअली सर सरप्राइज तो था, तो सरप्राइज ही रह गया, ओपन नहीं हुआ।
1: कोई बात नहीं भाई, जिससे मिलना था उससे मिल चुकी हूँ।
0: सर दरअसल सैटरडे को मौसम बहुत खूबसूरत था, संडे को बारिश होने लगी, मंडे को हम पहुँच पाए थे।
1: ओहो
0: जी, तो बात ऐसी है
1: तो मिला
0: सर, मम्मी का जी सर मम्मी का चेकअप करवाना था ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी हाँ, शुगर की जांच करवानी थी तो उन्हीं को लेकर गए थे।
1: अब वो स्वस्थ है
0: जी?
1: अब वो स्वस्थ है
0: जी? जी हाँ सर बिल्कुल स्वस्थ है, बट मतलब थोड़ा सा ये डर था कि कहीं शुगर बढ़ा ना हो, तो बस नॉर्मल है, रिपोर्ट एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
0: वो करेले के जूस का असर है ना सर?
1: नहीं बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको देखती होंगी तो उनका मतलब करेले वाला काम तो आप कर देती
0: होंगी।
1: मतलब मिठास है, मतलब कम असर करता होगा उधर जी।
0: हाँ मतलब दस जैसे पता लेकर जाते करेले का, हफ्ते में तो दो दिन तो पिलाते हैं, तो ऐसा मुँह बनाएंगे जैसे छोटा मासूम सा बच्चा बनाता है पीने से पहले
1: जी। बिल्कुल, और पूर्णिमा जी को लोग पूछ रहे भाई कौन है जी। हाँ पूर्णिमा जी है, मनीष शर्मा जी। तो पूर्णिमा जी हम आज क्या सुनने वाले हैं आपसे?
0: सर आज एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, और चूंकि मुझे भी बहुत पसंद है, मम्मी को भी बहुत पसंद है, तो आज मैं वो सुनाने वाली
1: हूँ जी।
0: जी तो लता जी का गाया हुआ है, लता जी और कुमार राठौर जी का, और वीर ज़ारा मूवी से है, तेरे लिए।
1: तेरे लिए हम है जी, क्या बात,
0: बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जी, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी आप
1: जी।
0: तो शुरू करें सर
1: जी? निसंदेह
0: जी।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, उस्मान खान जी ने पंक्ति की तारीफ कर दी है। वाह वाह, तेरे लिए नाइस लाइन। और गीता श्रीवास्तव ने लिखा है, वेरी नाइस सिंगिंग डियर पूर्णिमा। तन्वी जी ने वेदी पे पता नहीं कितने सारे वेदी लिखे हैं, और गुड इसके बाद नाइस और इसके बाद प्रणाम भी कहा है। आई लव गोंडा ने भी कहा है भाई, बहुत अच्छा लगा उनको। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत गाया आपने। ये श्री मोहनलाल श्रीवास्तव जी का संदेश आपके लिए।
0: सर मुझे ये सॉन्ग स्पेशली बहुत पसंद है, और इसकी हर एक लाइन मतलब जावेद अख्तर जी ने इतना खूबसूरत लिखा है।
1: जी, जी।
0: उन्होंने अपनी इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने को अगर लता जी ना गाती तो शायद ये गाना जिंदा ना होता।
1: क्या बात,
0: इतना खूबसूरत उन्होंने गाया था। और लता जी की आवाज इसमें मुझे एकदम अलग सी लगती है, जैसे लगता है कोई मासूम सा बच्चा गा रहा हो, ऐसा उन्होंने इस गीत को गाया है। मतलब बहुत ही टच करता है, दिल को एकदम से छूता है ये गीत।
1: उनकी आवाज में दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल,
0: साबरमती के संत ने कर दिया कमाल।
1: लगता है कोई छोटा सा बच्चा गा रहा है।
0: और उन्होंने ये भी बहुत खूबसूरत सा गाया था, सुजलाम शुक्लाम मलय जशीतलम श्यामलाम मातरम। तो कुछ गीत तो उन्होंने गाए थे, मतलब इतना मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे गीत बहुत खूबसूरत गाए हैं, लेकिन वीर ज़ारा का जब ये सॉन्ग प्ले होता है इतना बहुत ही वैसे मन कहता है बस बार बार इसी को सुनते रहता
1: है। लगता है 18 साल की कोई लड़की गा रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: लगता ही नहीं आवाज।
0: कितना सर कितनी खूबसूरत लाइन है ना कि जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब,
1: क्या बात
0: घेरे है फिर हमें यादें बेहिसाब। कितनी खूबसूरत लाइन है सर,
1: बहुत खूबसूरत लाइन, बहुत खूबसूरत
0: मन किया कि
1: खूबसूरत तरीके से आपने गाया भी।
0: सर गाया कितना खूबसूरत ये तो नहीं पता है, पसंद बहुत खूबसूरती से है।
1: सविता जी ने लिखा है, बहुत प्यारी आवाज।
0: थैंक यू सर। सर आप हमसे नाराज तो नहीं है?
1: अरे क्या बात करती हैं।
0: सर उस दिन हम जरूर आए थे, लेकिन टेस्ट के लिए आए थे, और चूंकि दो टेस्ट करवाने थे तो एक घंटे के अंतराल पे दूसरा भी करवाना था।
1: जी जी।
0: तो हम आपसे इसलिए नहीं मिल पाए, चूंकि हम नहीं चाहते थे कि हम आपको डिस्टर्ब करें, कहीं ना कहीं आप क्लास में थे।
1: जी जी, हो सकता है
0: तो। और बस इसीलिए, लेकिन सेकेंड टाइम जब आएंगे तो जरूर मिलवाएंगे आपसे।
1: जी जी, माता जी आपके दर्शन की इच्छा रहेगी।
0: सर हमारे दर्शन की नहीं, मम्मी के।
1: हाँ मम्मी के, माता जी के दर्शन।
0: सर हमसे तो आप मिल ही थे।
1: जी जी।
0: और सर एक बात और कहनी थी जो कि मैं कह दूँ।
1: जी जी कह दीजिए।
0: जी तो हम कह देते हैं कि मुझे भी गुजिया खानी होगी आपके हाथ की।
1: जी हाँ बिल्कुल, आप गुजिया मेरे हाथ की खाएंगे, फिर उसके बाद गुजिया नहीं खाएंगे, आपका गुजिया पर से विश्वास हो जाएगा। गुजिया
0: तो ऐसा भी होना चाहिए, खिलाना तो पड़ेगा आपको।
1: जी बिल्कुल खिलाएंगे।

0: करने के लिए तैयार रहिए।
1: जी सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा,
1: नमस्कार सर।
0: जी प्रणाम। नमस्कार
1: सर। प्लीज प्रणाम ना कहिए, हम छोटे हैं आपसे ना।
0: जी जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी। हाँ भाई, तन्वी लिखती हैं, लता तो लता जी थी, बहुत सुंदर गाती थी। और ममता कसौनत ने लिखा है नाइस सॉन्ग। जी हाँ, आवाज़ बहुत प्यारी है भाई, ये तो बात एकदम सही है। और जी, अब जो हम देख रहे थे कि भाई फ़ोन बहराइच से आ रहा था, और जी बिल्कुल तुरंत लगा दीजिए, नहीं तो फिर हम नहीं चाहते कोई प्यारी आवाज़ छूटे भाई। और अभी बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो बाकी हैं, और देखते हैं कौन हमारे साथ।
2: हेलो।
0: हेलो
2: जी, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार।
2: नेहा बोल रहे हैं।
0: अरे सलाम, कैसी हैं आप? आदाब।
2: जी अच्छे हैं, और आप कैसे हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का। और आप बताइए।
2: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आप लोगों की।
0: बहुत दिनों के बाद जो है वो माजरत चाहेंगे कहते हुए, लेकिन बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपको।
2: हाँ सर, थोड़ा बिजी हो जाते हैं बच्चों में, आई टाइम भी दोनों परेशान कर रहे थे, लेकिन हमने क्या अलाउ करते हैं।
0: कुछ परिवार के लिए मसरूफियत में से इंसान वक्त निकाल लेता है।
2: जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो किया है।
0: जी बिल्कुल, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो क्या सुनने वाले हैं आज हम?
2: सर दो तीन बार से आप कह रहे थे लप्पे आती नज़्म सुनाने के लिए, तो हमने सोचा आवाज वही सुना देते।
0: अरे क्या बात है, क्या बात।
2: जी सर।
0: जी नाज शरीफ सुनते हैं आपसे।
2: जी जी, तो शुरू करते हैं।
0: जी

बन के तमन मेरे मेरे दम से योगी मेरे बस के की सीमा।

मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह सी रहे पे चलाना मुझको। लपे आती है दुआ बनी के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्स

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, मैं जानता था कि इस नाच शरीफ को आप बहुत शानदार गाएंगी।
0: शुक्रिया सर।
1: जी हाँ, मुझे पता था इस बात को। मोहल्ला से बच्चों ने लिखा है शानदार सिंगिंग ब्यूटीफुल वॉइस। आई लव गोंडा लिखते हैं गुड बाई, और उस्मान खान ने लिखा है क्या बात है, वेरी वेरी नाइस लाइन। ममता कदम ने लिखते हैं क्या बात है भाई, गीता से बच्चों ने लिखा बहुत प्यारी आवाज भाई।

0: व्यवहार का तो थोड़ी सी इतनी तारीफ भी सुन लिया कीजिए, और हम लोग के दिन भी थोड़े से अच्छे हो जाया करें। तो संता ने लिखा है भाई नेहा जी बहुत सुंदर
1: जी, बहुत
0: शुक्रिया सभी का जी। और शनिवार को आपकी प्रतीक्षा पुनः रहेगी
1: जी, बिल्कुल इंशाल्लाह
0: जी। अच्छा, खुदा हाफिज
1: जी।
0: फी अमान अल्लाह जी। हाँ भाई, तो नेहा जी बहुत सुंदर, ममता कृष्ण जी लिखती है क्या आवाज है, क्या बात है भाई। और जी हाँ, अब देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
2: हेलो
3: हेलो
0: चरण स्पर्श
3: जी कहते हैं
0: जी। प्रणाम, आपका आशीर्वाद। मैं सोच रहा था कहीं ऐसा न हो कि हमारा कार्यक्रम गड़बड़ा जाए।
3: नहीं, गड़बड़ाने तो नहीं देंगे सर।
0: बस वही तो बात है,
3: अगर हम फुर्सत में होंगे तो बिल्कुल नहीं गड़बड़ाने देंगे।
0: नहीं, फुर्सत में हो या न हो, लेकिन 5 मिनट जो है वो रेडियो गणेश 9.6 एफएम के नाम कर दिया कीजिए।
3: अरे बिल्कुल सर, हम सोचे कि टाइम पूरा होने से पहले मैं आज अपनी बुआ को गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: अच्छा, वाह क्या बात है।
3: हाँ, तो वो मुझसे बार बार कहती है तुम नए फिल्मों के गाने गाती हो, मुझे पसंद है पुराने गाने
0: जी।
3: तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको पुराने गाने आज सुना दूंगी।
0: क्या बात
3: आज जो कि मेरा गला नहीं सही है, भारी है, क्योंकि मैं शाम को आई सो गई थी, तो मेरा भारी भारी आवाज आपको महसूस भी हो रहा होगा।
0: नहीं, आपकी आवाज में इतनी बेस है कि हमको भारी कभी लगा ही नहीं।
3: अरे तो निभा पाते हैं तब देखिए, तब पता चलेगा।
0: तो निभा तो ये तो गारंटी हम दे देंगे
3: सर। वो जो जजमेंट वो हम अपने आप से मतलब वो नहीं कर पाते हैं, न्याय नहीं हो पाता है, तो मुझे लगता है कि यार गड़बड़ हो गया।
0: रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल मोल, हीरे को अपनी कीमत थोड़ी पता होती है, जोहरी जानता है।
3: अरे ठीक है, देखते हैं
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं,
3: कितना क्रिस्टल क्लियर है ये भी पता चल जाएगा।
0: बिल्कुल
3: क्लियरिटी पता चलेगी अभी
0: जी।
3: तुम मुझे
0: हाय हाय
3: भुलाए।

0: सर आज हम गा नहीं पा रहे हैं, फिर आवाज बिल्कुल काम नहीं कर रहा है।
1: बहुत प्यारा गा रहे हैं आप। ये लता जी ने भी इस गीत को गाया है, पगला कहीं का फिल्म है ये
0: जी,
1: और दोनों
0: जी,
1: मेल और फीमेल दोनों वॉइस में है। लता जी वाला एकदम सही जा रही है, एकदम सही, बहुत प्यारा।
0: आवाज बिल्कुल साथ नहीं दे रहा
1: है। नहीं, साथ दे रही है, मैं कह रहा हूँ साथ दे रही है। आप चैट बॉक्स देख लीजिए, बहुत खूब शिल्पी जी, कायना जी ने भी आपको जी बहुत सुंदर आवाज, देखिए तो मुझे यूं भुला ना पाओगे, आप कंटिन्यू कीजिए।
0: चलिए ठीक। मेरे हाथों में तेरा चेहरा

जैसे कोई गुलाब होता है और सहारा

0: मुझे, आज हम क्षमा प्रार्थी हैं।
1: अब ये जान लीजिए शिल्पी जी, आपके गुरुदेव ने लिखा है बहुत खूबसूरत है, यानी दादा।
0: अरे नहीं बिल्कुल, मतलब हम अपना 10% भी नहीं दे पाए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, दिल को छू लेने वाला गीत, वेरी वेरी नाइस सिंगिंग। ये गीत मुझे बहुत पसंद है, ये मोहनलाल श्रीवास्तव जी का कहना है, कायनात जी ने भी तारीफ।
0: अरे गाना तो खूबसूरत है ये सर।
1: और आप बहुत सुंदर गा रही हैं, ये तन्वी शुक्ला जी का कहना है। मैं एक कुछ व्यक्ति के हाथ में मिडास टच होता है, वो मट्टी को छू ले तो सोना हो जाए, तो आपके हाथ में वो है, हम जानते हैं। आपके गाने से पहले बता देते हैं कि आप गा रही हैं, मतलब शानदार होने वाला है। देखिए उस्मान खान जी, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग सिलेक्शन, वाह क्या बात है। मतलब एक तरफ से इतनी सारी तारीफ और आपने कहा 10% नहीं दिया। अब हम सोच रहे हैं 10% में यह हाल है तो 100% में तो दुनिया झूम जाएगी।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर
1: जी, बहुत अच्छा लगा शिल्पी जी। प्रणाम जी। हाँ, धर्मेंद्र मोहन जी से गुजारिश जरूर है भाई कि धर्मेंद्र मोहन जी वो गीत सुना दे हमको भाई, और देखते हैं कौन हम ऐसा। तो हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: जी मोहम्मद पटेल ने कहा।
1: जी जी बताएं।
2: अरे बताए, हम जो है कोटा में लेटे हैं और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपका भाई।
1: जी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप।
2: हम बहुत अच्छा प्रोग्राम सुन, अभी जो आपने गाया है
1: जी
2: मुझे भुला न पाओगे, हम उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं भाई, बहुत अच्छा लगा हमको।
1: जी अरे वो बहुत अच्छा गाते हैं भाई शिल्पी जी।
2: एक जो ना सुनाया उनको वो आशीर्वाद देते हैं
1: जी,
2: और ये जो ये गाना सुना हमको बहुत पसंद आया, दोनों गाना
1: जी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा।
2: हाँ ठीक, नहीं तो हम जो है फोन मिलाने वाले, फोन मिला दे भाई, नहीं बर्दाश्त हुआ।
1: चलिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और इस कार्यक्रम की तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भाई नहीं बर्दाश्त हुआ, हमें बर्दाश्त है भाई, तो हमको शुक्रिया अदा करते भाई।
1: जी जी। और राजेश सिंह जी हमारे साथ हैं भाई, मालवीय नगर से, सन नमस्ते, बहुत बढ़िया गीत। और जी हाँ बहुत खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह आपको। और मोहनलाल जी कहते हैं काश में ये गीत डुएट गाने का मौका मिलता तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल आप आइए किसी दिन ओपन माइक में, बिल्कुल आपकी ये तमन्ना भी पूरी करेंगे। कायनात जी भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान, आसमान वाले ने चाहा। तो कल आपसे पुनः मुलाकात होगी यहीं पर ठीक 9:30, तब तक सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
3: जानता था कि उसकी सोच वाली बीवी माँ की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, इसलिए उसने हथियार डाल दिए थे। शादी के बाद जब मोहिनी पहली बार विलास के सामने आई तो नख से शिख तक स्वर्णाभूषणों से सजी मोहिनी के सुंदर सलोने चेहरे को विलास अपलक देखता ही रह गया। पास आया तो इतने सारे भारी भरकम आभूषण और इतनी भारी साड़ी में उसे देखकर उसे उलझन सी हुई। उफ, ये क्या बेवकूफी है, तुमसे किसने इतने सारे जेवर पहनने के लिए कहा था, ना चाहते हुए भी वो झल्ला उठा। मोहिनी कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुकाए उसके पास बैठी रही। अगली सुबह विलास की नींद चूड़ियों की खनखनाहट से खुली। जमींदार घराने की बहू पूर्ण श्रृंगार किए सामने खड़ी थी।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है संगिनी। अब तक आपने सुना, विलास एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ की इच्छा थी कि वो ऐसी बहू लेकर आए जिसका सुख वो भी कुछ दिन गांव में रह के उठा सके। अंततः उसकी शादी मोहिनी से हो गई। मोहिनी सिर्फ 12वीं पास थी। जब पहली बार वो विलास के सामने आई तो आभूषणों और भारी वस्त्रों से सजी लदी फंदी थी। विलास को ये सब बड़ा अटपटा सा लगा। अब आगे, सुबह तो मोहिनी के तन पर रात से भी अधिक आभूषण जड़े हुए थे। नीचे चलिए, माँ जी काफी देर से नाश्ते के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। लाज से बोझिल अपनी पलकों को ऊपर उठाते हुए मोहिनी ने कहा, तुमने फिर इतने सारे जेवर क्यों पहन लिए? बिना किसी भूमिका के विलास ने सीधा प्रश्न किया। माँ जी ने पहनाए हैं, आनंद के अतिरेक में डूबी मोहिनी ने बताया। मुझे उलझन होती है इनसे, उतारो इन्हें। विलास झल्ला उठा। ये माँ जी का आशीर्वाद है और मेरे सुहाग की निशानी। नववधू सहम उठी। तुम्हें जीवन सुहाग की निशानी के साथ नहीं, सुहाग के साथ गुजारना है, और तुम्हारे सुहाग को ये सब तामझाम पसंद नहीं है, अच्छी तरह समझ लो, विलास ने तेज स्वर में कहा और तौलिया उठाकर नहाने चला गया। विलास के मन में जीवन साथी के रूप में जीन्स टॉप पहनने वाली आधुनिका की छवि कैद थी। भारी भरकम साड़ी और आभूषणों में एक दिन में ही उसका मन घबरा उठा था। उधर मोहिनी उस माहौल से आई थी जहां सोने के गहने ही नारी की प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। अपनी हैसियत से वंचित होना दुख का स्वाभाविक कारण है। मोहिनी भला अपवाद कैसे हो सकती थी? सिसकियां भरते हुए वो पति की आज्ञा का पालन करने लगी। उसकी सिसकारियों की गूंज ललिता के कानों तक पहुंच गई थी। मन में अनेक आशंकाएं लिए जब वो विलास के कमरे में पहुंची, तब मोहिनी अपने शरीर का अंतिम आभूषण उतार रही थी। बहू, ये क्या अपशगुन है, सुहागन होकर श्रृंगारहीन? ललिता का स्वर कांप उठा।
1: माँ जी, ये इनकी आज्ञा है।
0: मोहिनी फफक उठी। असलियत जान ललिता ने विलास को खूब फटकारा और अपने हाथों से एक एक आभूषण पहनाकर बहू को किसी राजकुमारी की भांति सजा दिया। विलास की एक न सुनी। विलास का मन करता कि पत्नी को लेकर कहीं घूमने जाए, किंतु उसे घर में रहकर माँ जी की सेवा करने में ज्यादा आनंद आता। वो चाहता कि मोहिनी उसके साथ संगीत की तेज धुनों पर नाचे, लेकिन उसे घर के मंदिर में भजन गाने में ज्यादा आनंद मिलता। विलास की इच्छा मोहिनी को आधुनिका बनाने की थी, लेकिन उसे कर्तव्यों और परंपराओं का पालन करने में असीम शांति मिलती थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है संगिनी। अब तक आपने सुना, विलास एक उच्च शिक्षित लड़का था। वो एक अपने ही जैसी मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन माँ की जिद के आगे उसे एक साधारण कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी पड़ी। माँ तो बहुत खुश थी, पर विलास का मन नहीं मिल रहा था। अब आगे, विलास छुट्टियां खत्म होने से पहले ही दिल्ली लौट गया। माँ को बताया कि कंपनी उसे कुछ दिनों के लिए अमेरिका भेज रही है, इसलिए ट्रेनिंग करना जरूरी है। भोली भाली मोहिनी पति के मन की बात भांप न सकी। दिन सप्ताह करके 3 महीने बीत गए। ललिता रोज पूछती, विलास बहू क्या कोई चिट्ठी आई? विलास बहू इनकार में सिर हिला देती और कहती, माँ जी बहुत काम होगा, चिट्ठी लिखने का समय नहीं निकाल पाते होंगे शायद। एक दिन चिट्ठी भी आ गई। लिखा था कि अमेरिका की एक कंपनी में नौकरी मिल गई है, अगले सप्ताह वहां जा रहा हूं। सन्न रह गई ललिता। 4-6 महीने के लिए अमेरिका जाने की बात और थी, लेकिन वहां नौकरी करने का मतलब था कि बेटा अब वापस नहीं आएगा। विलास चला गया। विलास बहू ने घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली। तर्कों को व्यावहारिकता की कसौटी पर कसती हुई एक दिन मोहिनी बोली, जानती हैं माँ जी वो हमें छोड़कर क्यों चले गए? समय खराब था उसका। ललिता ठंडी सांस भरकर बोली, हीरे को पहचान न सका। हीरा तो कोयला होता है माँ जी, अगर उसे तराशा ना जाए तो ना पहचानने का दोष भला दूसरे पर कैसे लगाया जा सकता है? विलास बहू के चेहरे पर दर्द की रेखाएं उभर आई थीं। क्या मतलब? माँ बोली, माँ जी मुझ में बस एक ही कमी थी, समय के साथ ना चल सकी, उनके जरूरत के मुताबिक खुद को ना ढाल सकी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं। कहते कहते मोहिनी रुक गई। ललिता बहुत ध्यान से बहू की बात सुन रही थी। उसे चुप होता देख बोली, इसलिए क्या बहू? इस पूरे इलाके में लड़कियों के लिए एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है माँ जी, हमारे पास किस चीज की कमी है? अगर आप इजाजत दें तो पिताजी के नाम एक डिग्री कॉलेज यहाँ खोल दिया जाए। विलास बहू ने मन की इच्छा बताई। माँ बोली, मैं स्कूल खोलने की अनुमति एक शर्त पर दे सकती हूँ कि तुझे भी उसमें पढ़ना होगा। पर मैं कैसे माँ जी? मैं तो बहू की बात बीच में ही काटकर ललिता बोली, तुझे पढ़ना होगा बहू, और विलास से ज्यादा पढ़ना होगा। ये साबित करना होगा कि तो किसी मामले में उससे कम नहीं है। इतना कहते कहते ललिता की आंखों से आंसू टपकने लगे। उनके मन में एक ही बात की फांस थी कि उनका बेटा उनकी वजह से बहू को छोड़ गया है, उसे पढ़ा लिखा कर अब वो अपना प्रायश्चित करना चाहती थीं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है संगिनी। अब तक आपने सुना, विलास पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी हुई माँ की मर्जी से एक सीधी साधी लड़की मोहिनी से। चाह कर भी विलास उससे अपना मन न मिला सका और नौकरी का बहाना बनाकर उन दोनों को छोड़कर अमेरिका चला गया। बहू को ऐसा लगा कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए उसने अपनी सास से मिलकर गांव में लड़कियों के लिए

एक कॉलेज खोलने की योजना बनाई। अब आगे देखते ही देखते कॉलेज की बिल्डिंग बन गई और कॉलेज चालू भी हो गया। सत्र शुरू होते ही विलास बहू ने भी दाखिला ले लिया। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। प्रथम श्रेणी में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर विलास बहू उर्फ मोहिनी राय चौधरी अब उसी कॉलेज में लेक्चरर हो गई थी। फिर एक दिन विलास का नहीं, उसके वकील का पत्र आया। वो अमेरिका में अपनी एक सहयोगी नैंसी से शादी करना चाहता था, इसलिए उसे मोहिनी से तलाक चाहिए था। नोटिस देखते ही ललिता हाय हाय कर उठी। वो इस तरह दूसरी शादी करके तेरी तपस्या भंग नहीं कर सकता, कुछ कर, इस नोटिस का जवाब दे। वो बोली, माँ जी, कोर्ट के आदेश से जमीन जायदाद हासिल की जाती है, दाम्पत्य सुख नहीं। ललिता ने मुनीम को बुलाकर आदेश दिया, विलास को फोन करो कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर फौरन ना आया तो अंतिम दर्शन भी ना पाएगा। फिर एक दिन शाम को घर के सामने एक जीप आकर रुकी। ललिता दौड़कर बाहर आई। विलास जीप से नीचे उतरा, उन्हें देखते ही चौंक पड़ा। माँ, तुम तो ठीक हो, मुनीम जी कह रहे थे कि भीतर चल, फिर सब बताती हूँ। ललिता ने हुलस कर उसकी बाह थामी और भीतर लिवा गई। विलास अब तक असलियत समझ गया था। मोहिनी पर नजर पड़ते ही फट पड़ा, तो इसके कहने पर तुमने झूठा फोन करवाया था? मैंने परसों ही ईमेल कर दिया था कि माँ जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप अगर अपने घर आना चाहें तो आराम से आएं। मोहिनी ने धीमे स्वर में सफाई दी। ईमेल? विलास ने दांत भींचे, फिर बोला, जानती हो ईमेल क्या होता है? बहू अपने लैपटॉप पर दुनिया भर में ईमेल भेजती है। ललिता ने फौरन बहू का पक्ष लिया। विलास बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए चुप हो गया। सुबह उठकर जब नाश्ते के लिए पहुंचा तो माँ ने 2 प्लेटें फौरन लगा दी। मोहिनी नाश्ता नहीं करेगी क्या? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो कॉलेज गई है, चौधरी कृष्ण बिहारी राय गर्ल्स डिग्री कॉलेज। कभी नाम सुना है उसका? मोहिनी लेक्चरर है उसमें। ललिता का स्वर तेज हो गया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है संगिनी। अब तक आपने सुना विलास अपनी अनपढ़ बीवी को छोड़कर अमेरिका चला गया। यहाँ उसकी बीवी ने पढ़ाई करी, उसके पिता के नाम पे कॉलेज खोला और कॉलेज में लेक्चरर बन गई। जब वो लौट कर आया तो गांव घर की नई दशा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसकी माँ अब उसके नहीं, उसके बहू के पक्ष में खड़ी थी। अब आगे, इतने सालों में तूने पलटकर कभी नहीं देखा कि हम लोग जिंदा हैं या मुर्दा। जो काम तुझे करना चाहिए था वो बहू कर रही है। तेरे नाम का झूठा सिंदूर लगाकर वो तेरे पुरखों का नाम रोशन कर रही है। विलास तेज कदमों से चलता हुआ डिग्री कॉलेज के भवन के करीब पहुंचा। वहां जाकर उसने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शानदार कॉलेज, मोहिनी वहां की लेक्चरर और उसका इतना सम्मान। हर किसी के स्वर में मोहिनी के प्रति अपार श्रद्धा टपक रही थी। तस्वीर काफी कुछ साफ हो चुकी थी। शाम को विलास मोहिनी के पास गया और उससे माफी मांगने लगा, उससे खुद को अपनाने की गुजारिश करने लगा, लेकिन मोहिनी ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उन दोनों की बातचीत की आवाज मां तक पहुंची तो मां वहां चली आई। उनकी तो एक ही इच्छा थी कि बेटा बहू साथ रहें, खुशी खुशी रहें। सो उन्होंने कहा, विलास बहू माफ कर दो इसे। पर मोहिनी बोली, मां जो इन्होंने किया है अगर मैं करके आती तो भी क्या आप यही बोलती? माँ जी, मैं अपने साथ हुए अन्याय को तो सह सकती हूं, किंतु नारी होने के नाते दूसरी नारी के साथ अन्याय करने में सहभागिता नहीं कर सकती। बहू की बातों का अर्थ माँ जी की समझ में नहीं आया तो उन्होंने अर्थ भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा।

मोहिनी ने विलास पर एक उचटती हुई दृष्टि डाली, फिर बोली, आपके बेटे ने अब नैन्सी का हाथ थामा है और उसने बहुत विश्वास के साथ इन्हें आपके पास भेजा है। ऐसे में यदि मैं आपके बेटे की इच्छा पूर्ति करती हूँ तो क्या वो दूर बैठी उस नारी के साथ विश्वासघात नहीं होगा? यदि ऐसा हुआ तो फिर आपकी बहू और उस विदेशी बाला में क्या फर्क रह जाएगा? बस कर बेटा, बस कर, तू जो कर रही है, सोच रही है, यही सच है और बाकी सब झूठ। माँ जी पूरी शक्ति से बहू के सीने से लिपट गईं। उनकी आंखों से गिरने वाली एक एक बूंद सच्ची थी। विलास बहू के घर में विलास मेहमान हो चुका था। अतिथि के अधिकारों का अतिक्रमण करने का साहस उसमें शेष नहीं बचा था। पराए हो चुके अपने शरीर को घसीटते हुए वो कमरे से बाहर जाने लगा। माँ की सिसकियां उसे जल्द से जल्द यहां से दूर चले जाने का आदेश दे रही थीं।

जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सुरों के आंगन में जिन्होंने एक नया सवेरा जगाया, अपनी जादुई धुनों से हर एक पल को धड़काया। दिल देके देखो से शुरू हुआ वो सुरों का अनमोल सफर, हर गाने में झलकता था उनकी कड़ी मेहनत का असर। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज को सजाया, उषा जी ने भारतीय सिनेमा में अपना एक अलग मुकाम बनाया।
1: सपनों को सुरों में पिरोकर उन्होंने हर महफिल को सजाया, जिंदगी प्यार का गीत है गाकर जीने का सलीका सिखाया। पुरुषों के इस गढ़ में बनकर पहली बड़ी महिला संगीतकार, रूढ़ियों को तोड़कर उन्होंने पाया दुनिया भर का प्यार। आज भी गूंजती है उनकी धुनें बनकर यादों की वो बहार, संगीत की दुनिया हमेशा करेगी उनका दिल से आभार। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे कुमसुम,
1: जो कि हम लेकर के आए हैं आज रात के सफर में सुरों की मलिका उषा खन्ना। तो आइए आज शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन सा सफर उनके बहुत ही प्यारे से गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

शुरुआती दौर में उनका जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा, तो आइए कुछ बताते हैं उषा खन्ना के बारे में। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मनोहर खन्ना ग्वालियर राज्य के जल विभाग में सहायक अधीक्षक थे, जो खुद एक कवि, गीतकार और शास्त्रीय संगीत में भी माहिर थे। पिता से ही उनकी प्रेरणा मिली और कहा जाता है कि जो कोई प्रतिभा अगर हमें जन्मजात से मिली हो तो वो प्रतिभा हमारे रग रग में शामिल होती है। फिर आती है बात उनके संगीतकार की ट्रेनिंग की। दिलचस्प बात यह है कि उषा खन्ना जी ने संगीत की कोई औपचारिक या क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी। वह अपनी जन्मजात प्रतिभा से ही धुने बनाती थी। वह शुरुआत में सिंगर बनने आई थी, लेकिन एक दिग्गज संगीतकार ने उनसे कहा कि अगर वह लता जी और आशा जैसी नहीं गा सकती तो इरादा वो छोड़ दे। फिर क्या था, उसके बाद उन्होंने धुने बनाना शुरू कर दिया। दिग्गज संगीतकार ओपी नैयर जी ने उनकी प्रतिभा को देखकर फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया। मुखर्जी ने उन्हें परखने के लिए 1 साल तक रोज 2 धुने बनाने का टास्क दिया करते थे। फिर क्या था, उसके बाद मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने शमी कपूर और आशा पारे की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल दे के देखो से बतौर संगीतकार धमाकेदार डेब्यू किया। आइए सुनते हैं उनके प्यारे से गीतों को, उनकी प्यारी सी धुनों को।

कहते हैं ना, व्यक्तित्व में गंभीरता होती नहीं, लानी पड़ती है। और कई बार हमें खुद को गंभीर दिखाना जरूरी भी होता है। ऊषा खन्ना जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। करियर के शुरुआती दिनों में ऊषा खन्ना बहुत कम उम्र की दिखती थी, हमेशा वेस्टर्न फ्रॉक पहनती थी। फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्हें देखकर अक्सर कहते थे, ये बच्ची क्या संगीत बनाएगी। इस वजह से उन्हें मीटिंग्स में भी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। धीरे धीरे ऊषा खन्ना जी ने एक बड़ा फैसला किया, उन्होंने फ्रॉक पहनना पूरी तरह छोड़ दिया और साड़ी पहनना शुरू कर दिया, ताकि वे उम्र दराज और गंभीर दिखें और लोग उनके हुनर को हल्के में ना ले सकें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वो गंभीर रहने लगी, लोग उनकी बातों को हमेशा गंभीरता से लेने लगे। इसीलिए कहते हैं कि समय के साथ हमें हमारे व्यक्तित्व में, रहने सहने के रहने के तरीकों में कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। अच्छा, वो गाना तो आप सभी ने सुना होगा, फिल्म सौतन का गाना, शायद मेरी शादी का ख्याल। लेकिन इसके रिकॉर्डिंग के पीछे की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। पता है क्या है, रिकॉर्डिंग के दिन तय समय पर पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम स्टूडियो में बैठी थी, लेकिन किशोर कुमार साहब गायब थे। कुछ देर बाद खबर आई कि किशोर कुमार ने गाना गाने से मना कर दिया है, वे रिकॉर्डिंग पर नहीं आ रहे हैं। ऊषा खन्ना हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद किशोर कुमार खुद स्टूडियो में आए। दरअसल किशोर दा के पास किसी दूसरे कंपोजर की बेहद खराब धुन डेमो टेप के लिए आ गई थी और वो उसी काम में फंस गए थे, जिस कारण से वो लेट आए। लेकिन उनके लेट आने के बाद भी ऊषा खन्ना जी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और किशोर कुमार जी ने भी बड़ा दिल रखते हुए माफी मांग ली। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा हमारी गलती होने पर माफी मांग लेनी चाहिए। तो आइए, चलिए चलते हैं और सुनते हैं इन्हीं का एक बहुत ही बेहद प्यारा सा गीत।

को कहते हैं ना कि हर एक बात के पीछे, हर एक मुलाकात के पीछे कोई कहानी होती है। बिल्कुल, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ मशहूर गाने और उनके पीछे की रियल लाइफ स्टोरी, जो कि है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मुकेश दा ने इस गाने को गाया और संगीतकार प्रेम धवन जी ने इसको संगीत दिया। इस गाने के पीछे की कहानी, ये गाना 1960 के दशक के बदले और नए भारत आजादी के बाद के दौर का प्रतीक माना गया था। उषा खन्ना ने इस गाने के पश्चिमी मार्चिंग बैंड और भारतीय संगीत का एक फ्यूजन तैयार किया गया था। उस समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इतनी बड़ी संख्या में वाद्य यंत्र, बजाने वालों को संभालना और एक 18-19 साल की लड़की के लिए बहुत मुश्किल था। दिग्गज गायक मुकेश उषा खन्ना जी के जज्बे और उनकी कम उम्र में इतनी गंभीर देशभक्ति धुन बनाने की क्षमता से दंग रह गए थे। उन्होंने बिना किसी नखरे के उषा जी के निर्देशानुसार कई बार रीटेक देकर उसे रिकॉर्ड किया गया। ये गाना आज भी हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पूरे देश भर में गूंजता है। आइए सुनते हैं यही एक प्यारा सा गाना, छोड़ो कल की बातें।

तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है। फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये बहुत ही बेहतरीन गाना, जिसे हम जब उदास होते हैं तब सुनते हैं। कहते हैं ना कि गानों की खूबसूरती ऐसी होती है कि दर्द में भी ये हमें बहुत प्यारे लगते हैं। ये गाना हिंदी सिनेमा के सबसे दर्द भरे और रोमांटिक गानों में गिना जाता है। उषा खन्ना ने इस गाने की धुन बहुत धीमी और ठहराव वाली बनाई थी। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे रिकॉर्ड किया तो वह इस धुन की गहराई में इतने ज़्यादा खो गए कि उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम में ही उषा खन्ना जी से कहा, बेटा इस गाने में जो रूह तुमने डाली है मैं उसे गाते समय पूरी तरह महसूस कर पा रहा हूँ। रफ़ी साहब ने इस गाने को अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन गानों में से एक माना था। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही बेहतरीन गाना, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है।

उषा खन्ना जानती थीं कि फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उन्होंने अपनी धुनों के जरिए कई ऐसे गायकों को मौका दिया जो आगे चलकर बड़े स्टार बने, जिसमें सोनू निगम, पंकज उदास, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और हेमलता जैसे नाम शामिल हैं। मोहम्मद रफी का सम्मान हम सभी लोग आज भी बड़े दिल से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मोहम्मद रफी उनके संगीत बहुत बड़े प्रशंसक थे, उषा खन्ना उनकी फैन और मोहम्मद रफी उनके फैन। एक बार रिकॉर्डिंग के दौरान उषा खन्ना झिझक रही थी तो रवि साहब ने खुद उनसे कहा कि उषा तुम्हें हमसे नहीं बल्कि हमें तुमसे गाना सीखना है। बस फिर उसके बाद क्या था, गानों की तो लाइन लग गई और उसके बाद गाने भी उतने ही लोकप्रिय हुए। उनके इतने कुछ गाने हुए कि हर एक गाने के पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी शामिल हुआ करती थी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ये बहुत ही प्यारा सा गाना है जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। और उसके बाद आता है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जो कि थी सौतन, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, और उसके बाद में तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु और गुजराती फिल्मों में भी सुपरहिट संगीत तैयार किया था और उनकी आखिरी संगीतबद्ध, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे पुरानी और उनकी पसंदीदा फिल्मों में से यही कुछ गाने थे। आइए सुनते हैं उनके प्यारे से नगमों को एक बार फिर से।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, उषा खन्ना जी ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। उन्हें कई बड़े सम्मान भी मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार उन्हें साल 2019 में मिला। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिया गया और इससे सम्मानित किया गया, जिसमें कि उन्हें स्मृति चिन्ह भी दिया गया था। 2019 में उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड और साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उन्हें नामांकित भी किया गया। उनकी सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म थी सौतन, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी, जिसके सदाबहार गानों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नामांकित भी किया गया था। ऐसे बहुत से पुरस्कार, ऐसे बहुत से सम्मान उनके नाम हैं। कहते हैं ना कि जब हमारा काम ही हमारे लिए एक तरीके से पूजा बन जाता है और हम उसमें अपना पूरा पूरा योगदान देते हैं, तो वो सदियों तक याद किया जाता है। जैसे कि उषा मंगेशकर जी की धुनें हम आज भी याद करते हैं। तो आइए, चलिए सुनते हैं उन्हीं का एक बेहद प्यारा सा गीत।

कहते हैं हर एक खूबसूरत चीज के पीछे कुछ न कुछ ऐसी कहानी होती है। संगीत से जुड़ी दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी खूबसूरत यादें थी जो कि गानों को लेकर के, उनके लिरिक्स को लेकर के। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी याद जो कि शायद मेरी शादी का ख्याल सॉन्ग मूवी थी सौतन। इस गाने की धुन बेहद चुलबुली और आम बोलचाल जैसी थी। जब सावन कुमार ने इसके बोल लिखे तो कई लोगों को लगा कि यह साधारण सा गाना है, लेकिन उषा खन्ना ने इसमें ढोलक और एक खास कुकू की आवाज का ऐसा इस्तेमाल किया कि गाना बेहद अमर हो गया। मजेदार बात यह है कि रिकॉर्डिंग के समय किशोर कुमार मूड में ही नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उषा खन्ना की बेहतरीन और रिदमिक धुन को सुना तो वो इतने जोश में आ गए कि उन्होंने गाने में अपनी तरफ से मजेदार कॉमिक इमोशंस को जोड़ दिया। और फिर क्या था, ये गाना आज भी ब्लॉकबस्टर है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। इस प्यारी सी धुन को आइए सुनते हैं।

0: दोनों के इस सफर का अब समापन होने आया है। उषा जी के संगीत ने हर दिल को आज हर्षाया है। छोड़ो कल की बातें कहकर जो राह नई दिखलाई थी, उनकी मधुर विदाई की ये बेला अब करीब आई है। सुरों की इस महफिल को हम यहीं पर विराम देते हैं, संगीत की इस देवी को झुककर सादर प्रणाम करते हैं।
1: यादों में गूंजते रहेंगे सदा उनके बनाए ये तराने, पीढ़ियां गुनगुनाती रहेंगी उषा जी के ये अफसाने। जिंदगी प्यार का गीत है, यही सीख हमें निभाना है। दीपक बुझे पर लौ रहे, वैसे ही ये धुने अमर रहेंगी। उषा खन्ना जी की विरासत हर संगीत प्रेमी के दिल में रही। अच्छा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे रात के सफर में फिर से भूले बिसरे गीत के साथ। मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश।
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक नए संगीतकार एक नए धुन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।